फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.2 मेगाहर्ट्ज पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के छिंदवाड़ा केंद्र से। श्रोताओं, आज दिन गुरुवार है। शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 28वीं तिथि, तदनुसार 18 जून 2026। इस वक्त सुबह के 5:58 और 32 सेकंड हुए हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन प्रसारण सभा आरंभ होती है।

हम आकाशवाणी के छिंदवाड़ा केंद्र से बोल रहे हैं, FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 6:07 हुए हैं। लीजिए, प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और असम से लेकर गुजरात तक भारत एक अखंड राष्ट्र है। भारत में कितनी ही जातियों और धर्मों के लोग निवास करते हैं, लेकिन भारत माता की एकता की बात हो या उसकी रक्षा की बात हो, तो यहाँ ना तो कोई हिंदू है, ना ही मुसलमान, ना सिख, ना ही ईसाई है। सबसे पहले हम सब भारतीय हैं।

कांटों पर चलकर फूल खिलते हैं, विश्वास पर चलकर भगवान मिलते हैं। एक बात सदा याद रखना दोस्तों, सुख में सब मिलते हैं लेकिन दुख में सिर्फ भगवान मिलते हैं।

प्रभु की भक्ति हमें प्रभु की अनुभूति करा ही देती है। ईश्वर के पास ही वो शक्ति है जो हमें हर संकट से पार लगा सकती है। इसीलिए सांसारिकता का मोह छोड़कर प्रभु की भक्ति में लीन होने में ही हमारी भलाई है।

कैसे मान लूँ कि तू पल पल में शामिल नहीं, कैसे मान लूँ कि तू हर चीज़ में हाजिर नहीं, कैसे मान लूँ कि तुझे मेरी परवाह नहीं, कैसे मान लूँ कि तू दूर है पास नहीं।

तुम अपने आप को भगवान को अर्पित करो, यही सबसे उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे को जानता है वो भय, चिंता, शोक से सर्वदा मुक्त है।

वंदना, अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का ये कार्यक्रम। फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.2 मेगाहर्ट्ज पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के छिंदवाड़ा केंद्र से। लीजिए, अब प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान।

श्री रामचरित मानस की रचना प्रक्रिया में गोस्वामी तुलसीदास ने मानस रूपी एक अद्भुत रूपक की कल्पना की है। कहते हैं, जिनके पास श्रद्धा का पाथेय नहीं है और ना ही जिन्हें संत जनों का साथ प्राप्त है, जिनके हृदय में भगवत प्रीति नहीं है, ऐसे व्यक्तियों के लिए ये मानस सर्वथा अगम्य अप्राप्य है। यदि कोई कष्ट उठाकर इस सरोवर तक पहुंच भी जाए तो उसे अज्ञान का ज्वर धर दबाता है, जिसके कारण वो इस पवित्र सरोवर में स्नान से वंचित रह जाता है। जो इससे वंचित रहा, जिसने कभी इसके पवित्र जल का पान नहीं किया, वो सरोवर की निंदा के अतिरिक्त और क्या कर सकता है। लेकिन जिन पर प्रभु की अनुकंपा है, उन्हें यह व्याधि नहीं छू पाती। वे दैहिक, दैविक तथा भौतिक तापों में भी नहीं जलते। इस पवित्र सरोवर से राम कथा रूपी कविता निकली है। इस कविता रूपी नदी में प्रभु का यश रूपी जल प्रवाहित होता है। इस कीर्ति नदी का नाम है सरयू, जो सबके लिए सर्वदा मंगलकारिणी है। वेद मत और लोक मत इसके दो किनारे हैं।

श्री रामचरित मानस कान अभी आपने सुना। हम आकाशवाणी के छिंदवाड़ा केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए अब सुनते हैं चिंतन।

ये था चिंतन। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के छिंदवाड़ा केंद्र से। कुछ ही पलों में सुनिए हमारा अगला कार्यक्रम, कृपया प्रतीक्षा करें।

फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.2 मेगाहर्ट्ज पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के छिंदवाड़ा केंद्र से। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। अब से थोड़ी देर पश्चात यानी 6:50 पर सुनिए कार्यक्रम हेलो छिंदवाड़ा। भवदीय साप्ताहिक पत्रोत्तर का ये कार्यक्रम लेकर हम हाजिर होंगे। 7:20 पर आज प्रस्तुति होगी दीपांकर तिवारी की। प्रस्तुति सहयोगी होंगे दुर्गेश नामदेव। सदाबहार गीतों का नजराना लेकर हाजिर होंगे गीत गंगा में 7:35 पर।

प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग सुनिएगा 8:30 पर, जिसे हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। बजे जोड़ेंगे आपको विविध भारती सेवा के कार्यक्रमों से, जिन्हें हम मुंबई केंद्र से रिले करेंगे। भोपाल से दिन में 10:00 सुगम संगीत लेकर हाजिर होंगे 10:05 पर।

आरटी सुनिएगा 10:30 पर। बजे से पुनः आपको जोड़ेंगे विविध भारती सेवा के कार्यक्रमों से। सुबह आरंभ करेंगे युववाणी से 5:30 पर, जिसमें आज की बात का विषय होगा स्थानीय भोजन से सतत खान पान, जानेंगे आज का इतिहास, कल के आकर्षण और होगी प्यारी सी अमृतवाणी। शाम 6 बजे सुनिएगा सुगम संगीत। शाम 6:30 पर आनंद लीजिएगा फिल्म संगीत का। किसान भाई अपना कार्यक्रम किसान वाणी सुन सकेंगे 7:20 पर, जिसमें आज की बात का विषय होगा मक्का फसल की उन्नतशील खेती पर और चर्चा होगी गोखरू औषधि पौधे की खेती पर, जानेंगे आज के मौसम और बाजार भाव के बारे में। रात 8 बजे आनंद लीजिए कार्यक्रम शीर्षक गीत का। पर सुनिएगा कार्यक्रम सबरस। रात 9 बजे से आनंद लीजिए विविध भारती सेवा के कार्यक्रमों का। मुंबई से इन्हीं संक्षिप्त जानकारियों के साथ ही कार्यक्रम विवरण यहीं संपन्न होता है।

हम आकाशवाणी के छिंदवाड़ा केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम हेलो छिंदवाड़ा।

कार्यक्रम हेलो छिंदवाड़ा में आप सभी का स्वागत है। जिला जनसंपर्क कार्यालय से प्राप्त सूचनाओं के अनुसार सुरक्षित पर्यटन व स्वच्छ पर्यटन स्थल पर हुआ मंचन। विश्वविख्यात पर्यटन स्थल तामिया में सुरक्षित पर्यटन को बढ़ावा देने तथा वर्षा काल में संभावित खतरों को कम करने के उद्देश्य से आज पर्यटन समिति सदस्यों के लिए जागरूकता एवं प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में सुरक्षित पर्यटन, स्वच्छता, कचरा प्रबंधन तथा स्थानीय रोजगार के अवसरों पर विस्तार से चर्चा की गई।

मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद द्वारा संचालित जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत जिले के विकास खंड परासिया की ग्राम पंचायत बीजागोरा में बावड़ी उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम जिला समन्वयक श्री अखिलेश जैन एवं ब्लॉक समन्वयक श्री संजीव भावरकर के मार्गदर्शन तथा सेक्टर क्रमांक 2 के मेंटर श्री शंकर राम प्रजापति के नेतृत्व में संपन्न हुआ। कार्यक्रम के दौरान जन सहयोग से ग्राम की बावड़ी में श्रमदान कर साफ सफाई की गई।

परासिया रोड स्थित पूजा लान में आयोजित मैग्नेनी मध्य प्रदेश प्रदर्शनी 2026 का समापन गत दिवस भावपूर्ण वातावरण में हुआ। प्रदर्शनी के अंतिम दिन बड़ी संख्या में पहुंचे आगंतुकों ने हस्तशिल्प एवं हस्तकरघा उत्पादों की सराहना करते हुए कहा कि यह आयोजन कुछ और दिनों तक चलना चाहिए था। निर्धारित समय सीमा पूर्ण होने के कारण प्रदर्शनी का समापन किया गया। वहीं आयोजकों एवं शिल्पियों ने भविष्य में पुनः छिंदवाड़ा आने का आश्वासन दिया।

मृगनैनी प्रदर्शनी में प्रदेश के एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत विभिन्न जिलों के विशिष्ट उत्पाद आकर्षण का केंद्र रहे। इसमें बैतूल की बेल मेंटल कला, उज्जैन की बुटीक, सीहोर के खिलौने, भोपाल का जूट एवं जरी शिल्प एवं चंदेरी की प्रसिद्ध साड़ियां विशेष रूप से पसंद की गईं। आगंतुकों ने इन उत्पादों की गुणवत्ता, पारंपरिक कला और स्थानीय पहचान की सराहना की। इसी के साथ ही कार्यक्रम हेलो छिंदवाड़ा यहीं संपन्न होता है।

फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.2 मेगाहर्ट्ज पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के छिंदवाड़ा केंद्र से। लीजिए अब प्रस्तुत है समूह स्वर में।

इसी के साथ ही देश गान यहीं संपन्न होता है। FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के छिंदवाड़ा केंद्र से। कुछ ही पलों में सुनिए हिंदी में समाचार, जिसके लिए आपको लिए चलते हैं दिल्ली।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के अंतिम चरण में पेरिस पहुंच गए हैं। होटल पहुंचने पर प्रवासी भारतीय समुदाय ने श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वीवाटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप के क्षेत्र में यूरोप का सबसे बड़ा आयोजन है। श्री मोदी विशेष कार्यक्रम में भारतीय समुदाय के लोगों से बातचीत करेंगे। इससे पहले फ्रांस के एवियो में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान श्री मोदी ने विभिन्न सत्रों में हिस्सा लिया तथा कई विश्व नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि सम्मेलन में वैश्विक शासन, आर्थिक विकास और ग्लोबल साउथ के देशों से जुड़े मुद्दों पर भारत का पक्ष रखा गया। उन्होंने विकासशील देशों की आर्थिक मजबूती और वैश्विक संपर्क बढ़ाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में ईरान के साथ समझौते के दौरान नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर भी बल दिया।
1: मैरिटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सी फेरर दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सी फेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी।
0: G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुरक्षित, समावेशी और मानव केंद्रित विकास का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि AI की असली सफलता मशीनों की क्षमता में नहीं बल्कि आम लोगों को सशक्त बनाने में है। फ्रांस के एवियो में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान नेताओं ने संतुलित आर्थिक विकास, महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखला और बच्चों के लिए सुरक्षित डिजिटल वातावरण से जुड़ी 3 महत्वपूर्ण घोषणाएं अपनाई। बच्चों के लिए सुरक्षित डिजिटल माहौल संबंधी घोषणा का भारत सहित ब्राजील, मिस्र और दक्षिण अफ्रीका जैसे कई देशों ने समर्थन किया। इसमें ऑनलाइन सुरक्षा बढ़ाने, डीप फेक और बच्चों के शोषण जैसी चुनौतियों से निपटने पर जोर दिया गया। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता CETA इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होगा। इसके साथ ही दोगुने अंशदान से संबंधित सामाजिक सुरक्षा समझौता भी प्रभावी हो जाएगा। इससे भारत को ब्रिटेन के बाजार में 99% वस्तुओं पर तत्काल शुल्क मुक्त पहुंच मिलेगी। वस्त्र, चमड़ा, समुद्री उत्पाद, इंजीनियरिंग और प्रसंस्कृत खाद्य क्षेत्र को विशेष फायदा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये समझौता लागू होने के बाद भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार और निवेश को नई गति मिलेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और उड़ीसा के 5 दिन के दौरे पर रहेंगे। राष्ट्रपति आज मध्य प्रदेश के बैतूल में आध्यात्मिक जागृति के माध्यम से आदिवासी समाज के सशक्तिकरण पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे। झारखंड से राज्यसभा की 2 सीटों के लिए आज मतदान होगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा के बैद्यनाथ राम, कांग्रेस उम्मीदवार प्रणब झा और निर्दलीय उम्मीदवार परिसिमल नथवानी चुनाव लड़ रहे हैं। झारखंड विधानसभा में मतदान सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। मतगणना शाम 5 बजे शुरू होगी और उसके बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ प्रो लीग हॉकी मैच में भारतीय पुरुष टीम ने मौजूदा विश्व चैंपियन जर्मनी को 3-1 से हरा दिया। भारत की ओर से मनदीप सिंह, शिलानंद लाकड़ा और नीलकांत शर्मा ने गोल किए। ये मनप्रीत सिंह का 413वां अंतर्राष्ट्रीय मैच था। उन्होंने भारत के लिए सबसे अधिक मैच खेलने का कीर्तिमान बनाया। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने नीदरलैंड्स को 95 रन से हरा दिया है। स्मृति मंधाना को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। टूर्नामेंट में अब भारत का मैच 21 जून को दक्षिण अफ्रीका से होगा। आयुष मंत्रालय ने कहा है कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाले योग संगम कार्यक्रम के लिए देश भर में 1,70,000 से अधिक आयोजकों ने पंजीकरण कराया है। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा कि योग संगम स्वास्थ्य के माध्यम से एकता का उत्सव है। इसके तहत देश भर में हजारों स्थानों पर लोग एक साथ योग करेंगे। मंत्रालय ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य योग को जन जन तक पहुंचाना और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना है।

0: इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मेगाहर्ट्ज पर आइए सुनते हैं कुछ जरूरी संदेश।
2: The Grand Vitara at just rupees 8,999 per month. Yes, rupees 8,999 per month. And not just that, enjoy all at an effective price starting at rupees 9.82 lakhs. Step into a world of refining performance and intelligent design. Six airbags as standard, premium comfort, advanced hybrid technology crafted to stand apart. This month, make it yours. Experience grand in every drive with a Grand Vitara. Visit a near Nexa showroom today.
3: Nexa.
4: वात रोग, उदर रोग, मूत्र रोग, चर्म रोग, मानसिक रोग, श्वास रोग, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, स्त्री रोग के इलाज हेतु विभिन्न पंचकर्म विधियों व आयुर्वेदिक दवा का प्रयोग आज ही संपर्क करें डॉक्टर निधि जैन, आदिवासी संग्रहालय के सामने छिंदवाड़ा। कॉल करें 9794543985।
5: कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से।
6: अनजान ऐप से बचें।
7: RBI कहता है
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपने
2: बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: Most TVs keep you tied to the city, but you deserve the freedom to explore. Introducing the Maruti Suzuki e-Vitara. With its massive 61 kilowatt-hour battery and a range of 543 kilometer, the horizon is finally yours. Own it for rupees 10.99 lakh with a battery EMI of just rupees 3.99 per kilometer. Backed by India's largest charging network, India Goes Electric.
4: मुझे अपनी मम्मी के जन्मदिन पर आकाशवाणी से बधाई देना है, क्या करूं?
5: नो टेंशन, इसके लिए कुकड़ा हिल्स आकाशवाणी कार्यालय छिंदवाड़ा में संपर्क करो। और हाँ, अगर शादी या शादी की सालगिरह, त्योहारों की शुभकामना या किसी विशेष अवसरों पर किसी को बधाई देना चाहते हो तो भी आप आकाशवाणी कार्यालय छिंदवाड़ा में संपर्क कर सकते हैं।
4: अच्छा, मेरे चाचा बर्तनों की दुकान खोल रहे हैं, उसके लिए भी?
5: हाँ हाँ, अपने प्रतिष्ठान के शुभारंभ पर भी आप बधाई दे सकते हैं या जानकारी दे सकते हैं। तो विज्ञापन के लिए संपर्क करें
4: कुकड़ा हिल्स आकाशवाणी कार्यालय छिंदवाड़ा।
5: हाँ,
6: प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल है शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग। और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbharatiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbharatiarchives.co.in।
7: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
8: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
7: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
8: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
7: बुकिंग है तो संपर्क करें 8

0: अर्थात 0001-4242 पर।
1: 8700-001-4242।
2: हम आकाशवाणी के छिंदवाड़ा केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। कुछ ही पलों में सुनिए प्रादेशिक समाचार भोपाल से।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं शरद बाघेला। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति आज से प्रदेश के 5 दिवसीय प्रवास पर। प्रधानमंत्री आज पेरिस में फ्रांस के राष्ट्रपति से करेंगे मुलाकात। महाराणा प्रताप का जीवन वीरता शौर्य पराक्रम का प्रतीक, कहा मुख्यमंत्री ने। और भारत ने पुरुष क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को और महिला T20 क्रिकेट मैच में नीदरलैंड को हराया। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से प्रदेश में 5 दिवसीय दौरा कर रही हैं। आज सुबह मुख्यमंत्री मोहन यादव सहित राज्य मंत्रिमंडल के सदस्य उनका इंदौर विमानतल पर स्वागत करेंगे। इसके पश्चात वे बैतूल जाएंगी। वहां वे ब्रह्म कुमारी संस्थान द्वारा आयोजित एम्पावरमेंट ऑफ ट्राइबल सोसाइटी बाय स्पिरिचुअल अवेकनिंग कार्यक्रम में शामिल होंगी। इस कार्यक्रम के बाद वे ओंकारेश्वर पहुंचकर मंदिर में दर्शन एवं आरती में सम्मिलित होंगी। 19 जून को राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मू अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस के अवसर पर ओंकारेश्वर में कार्यक्रम में शामिल होंगी। 20 जून को राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मू जबलपुर पहुंचेंगी और 21 जून वहां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगी। इसके पश्चात रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर के 36वें दीक्षांत समारोह में सहभागिता करेंगी। 22 जून को राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मू कूनो नेशनल पार्क का भ्रमण करेंगी और इसके बाद वे ग्वालियर पहुंचकर नई दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पेरिस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के साथ वीवा टेक 2026 सम्मेलन में भाग लेंगे। वे भारत की तकनीकी प्रगति और नवाचार को दुनिया के सामने रखेंगे। पेरिस में प्रधानमंत्री भारतीय समुदाय के एक विशेष कार्यक्रम को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री की इस यात्रा से भारत फ्रांस संबंधों को और मजबूती मिलने की उम्मीद है। इससे पहले G7 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री ने कई विश्व नेताओं से मुलाकात की और वैश्विक दक्षिण के मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता CETA इस साल 15 जुलाई से लागू होगा। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि इस समझौते से भारतीय निर्यात को बड़ा लाभ मिलेगा। भारत को ब्रिटेन के बाजार में 99% वस्तुओं पर तत्काल शुल्क मुक्त पहुंच मिलेगी। इससे वस्त्र, चमड़ा, समुद्री उत्पाद, इंजीनियरिंग और प्रसंस्कृत खाद्य क्षेत्र को विशेष फायदा होगा। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook के साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का जीवन वीरता शौर्य पराक्रम त्याग का प्रतीक है। उनका नाम स्मरण करते ही मन श्रद्धा से भर जाता है। महाराणा प्रताप ने तमाम कठिनाइयों के बीच भी राष्ट्र प्रथम को सर्वोपरि रखा। समाज का हर वर्ग, देश की अस्मिता और आत्मसम्मान के लिए महाराणा प्रताप को एक आदर्श व्यक्तित्व के रूप में देखता है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव कल वीर

0: शिरोमणि महाराणा प्रताप की 486वीं जयंती के अवसर पर भोपाल के महाराणा प्रताप नगर में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने समाज के प्रतिभाशाली डॉक्टर, युवा खिलाड़ियों और समाज सेवियों को मंच से सम्मानित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा,
1: यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विरासत से विकास की ओर जब बढ़ने की बात आएगी तो हमारे लिए भौतिक अधोसंरचनाएं जीवन उपयोगी आवश्यक वस्तुओं के लिए, लेकिन गौरवशाली अतीत के लिए भी हमारी सरकार काम कर रही है। ऐसे कामों के सिलसिले में हमने कमिटमेंट किया था कि महाराणा प्रताप जयंती पे छुट्टी होगी तो पूरे देश में एकमात्र राज्य मध्य प्रदेश है जो महाराणा प्रताप की जयंती के अवसर पर अपने उस अवकाश को भी निभा रहा है, लेकिन अवकाश के साथ साथ उनके जीवन के सभी पक्षों को आने वाली पीढ़ी को जानने के लिए भी हम पाठ्यक्रम में भी महाराणा प्रताप को जोड़ने वाले हैं, ताकि स्कूल एजुकेशन के माध्यम से उनके जीवन के सभी पक्षों से भविष्य की पीढ़ी को भी सीखने को मिले।
0: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि सिंहस्थ 2028 के भव्य आयोजन के लिए हजारों करोड़ के विकास कार्य तेजी से पूर्ण किए जा रहे हैं। उज्जैन, इंदौर और आसपास के सभी जिलों में विकास को गति मिल रही है। इंदौर उज्जैन मेट्रोपॉलिटन में धार, नागदा और रतलाम को भी शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव कल उज्जैन जिले के नागदा में बालाजी धाम में श्री राम दरबार प्राण प्रतिष्ठा व ध्वज पूजा कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। डॉक्टर यादव का श्री बालाजी धाम में भव्य स्वागत किया गया। कार्यक्रम में कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत विशेष रूप से उपस्थित थे। संयुक्त राष्ट्र की संस्था यूएन वुमेन द्वारा संचालित सेफ सिटीज एंड सेफ पब्लिक स्पेसेस फॉर वुमेन परियोजना में जबलपुर शहर को शामिल किया गया है। जबलपुर का चयन देश के एकमात्र शहर के रूप में किया गया है। विश्व के चुनिंदा 65 शहरों में संचालित इस महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत जबलपुर में महिलाओं के लिए सुरक्षित और सुविधाजनक सर्वसाधारण सार्वजनिक वातावरण विकसित करने की दिशा में कार्य योजना तैयार की जाएगी। इस उपलब्धि पर कल मानस भवन में बैठक आयोजित की गई। बैठक में महिला जनप्रतिनिधियों ने अपने अपने क्षेत्रों से जुड़े अनुभव और सुझाव साझा किए। इन सुझावों के आधार पर शहर के लिए एक विस्तृत मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य महिलाओं, छात्राओं और कामकाजी युवतियों के लिए सार्वजनिक स्थलों को अधिक सुरक्षित और सुविधाजनक बनाना है। भारत ने लखनऊ में खेले गए दूसरे एकदिवसीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 170 रनों से हरा दिया। इसके साथ ही भारत ने 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है। श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मुकाबला शनिवार को चेन्नई में खेला जाएगा। वहीं महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप ए मुकाबले में कल रात भारत ने नीदरलैंड को 95 रनों से हरा दिया। लीड्स में पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय महिला टीम ने नीदरलैंड को 209 रनों का विशाल लक्ष्य दिया। जवाब में नीदरलैंड की टीम 114 रन पर सिमट गई। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ प्रो लीग हॉकी मुकाबले में कल भारतीय पुरुष टीम ने मौजूदा विश्व चैंपियन जर्मनी को 3-1 से हराकर शानदार जीत दर्ज की है। आज अगले मुकाबले में भारत का सामना जर्मनी से होगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शिवपुरी जिले में प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 19 जून को विकासखंड कोलारस के ग्राम पचावली और 20 जून को जिला मुख्यालय शिवपुरी स्थित मानस भवन में प्राकृतिक खेती कार्यशालाओं का आयोजन किया जाएगा। क्षेत्रीय सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी आज आगरमालवा स्थित नमो उपवन में वृक्षारोपण करेंगे और साथ ही जिले में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। नर्मदापुरम जिले में स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर मतदाता सूची को अपडेट करने का काम जारी है। इसके तहत नए मतदाताओं के नाम जोड़े जा रहे हैं, जबकि मृत या दोहरी प्रविष्टि वाले नाम हटाने और अन्य त्रुटियों को सुधारने की कार्रवाई की जा रही है। इंदौर जिले के चंद्रावतीगंज में आगामी 20 जून को केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर इंदौर उज्जैन ग्रीनफील्ड कॉरिडोर का भूमि पूजन करेंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव उपस्थित रहेंगे। कटनी जिले में आयोजित जनकल्याण शिविरों के माध्यम से शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक पहुंचाया जा रहा है। शिविर में अब तक 13,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 12,156 का निराकरण किया जा चुका है। श्योपुर जिले में प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना अंतर्गत छात्रों के लिए संचालित मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम में रसोइयों के लिए कुकिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से प्रदेश के 5

दिवसीय प्रवास पर। प्रधानमंत्री आज पेरिस में फ्रांस के राष्ट्रपति से करेंगे मुलाकात। महाराणा प्रताप का जीवन वीरता शौर्य पराक्रम का प्रतीक, कहा मुख्यमंत्री ने। और भारत ने पुरुष क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को तो वहीं महिला टी20 क्रिकेट मैच में नीदरलैंड को हराया। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर होगा। दीजिए अनुमति, नमस्कार।

हम आकाशवाणी के छिंदवाड़ा केंद्र से बोल रहे हैं, FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। लीजिए, प्रस्तुत है साप्ताहिक पत्रोत्तर का कार्यक्रम भवदीये। आज प्रस्तुति है दीपांकर तिवारी की और प्रस्तुति सहयोग है दुर्गेश नामदेव का।

0: श्रोताओं, समय जीवन का सबसे मूल्यवान धन है, जो एक बार चला जाए तो वापस नहीं आता। समय न किसी का इंतजार करता है और न किसी के लिए रुकता है। जो व्यक्ति समय का सम्मान करता है, समय भी उसे सम्मान और सफलता देता है।
1: बहुत ही सही बात कही आपने, और इन्हीं बातों के साथ एक दो बातें और हम कहना चाहेंगे कि जैसे अब 21 जून आ रहा है, तो ये विश्व योग दिवस है और हम सभी के पास मौका है योग से जुड़ने का, अपने जीवन में योग को अपनाने का। इस बार विश्व योग दिवस पे हम सभी श्रोताओं से अनुरोध करते हैं कि आप योग से जुड़िए, अपने आप को स्वस्थ रखिए, मस्त रखिए। इन्हीं बातों के साथ शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम भवदीय, और आज के भवदीय कार्यक्रम के साथ मैं हूं दीपांकर तिवारी,
0: और मैं हूं आपका अपना रेडियो मित्र दुर्गेश नामदेव।
1: तो श्रोताओं, स्वीकार कीजिए हम दोनों का प्यार भरा
0: नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: तो दीपांकर जी, आज के इस नए अंक में हमें बहुत सारे पत्र और व्हाट्सएप संदेश प्राप्त हुए हैं।
1: तो दुर्गेश जी, सबसे पहले किसका संदेश ले रहे हैं आप? दुर्गेश जी, मैं देख रहा हूं कि आपके हाथ में बहुत ही सुंदर सा पत्र है, तो हम संदेशों को छोड़ते हैं, पहले ये पत्र अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं।
0: बिल्कुल, उगता हुआ सूर्य का चित्र सामने, हम समझ चुके हैं कि भाई ये पत्र किसका है।
1: जी, मैं बता सकता हूं कि ये पत्र हमारे गुलाबरा के श्रोता राजू निखाड़े जी का है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। खुशियों की स्वर्णिम सुप्रभात के साथ इन्होंने लिखा कि 1 जून से 9 जून तक आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने पर श्रोताओं के विचारों के साथ उद्घोषक भाई बहनों ने जो खूबसूरत प्रस्तुतियां दी है, सभी को धन्यवाद तो बनता ही है।
1: बिल्कुल, धन्यवाद बनता है, और सबसे ज़्यादा जो आभार हम प्रकट करना चाहते हैं वो है हमारे श्रोताओं का। उन्होंने अपना बहुमूल्य समय हमें प्रदान किया, हमारे स्टूडियोज़ में आए, अपने विचार जो है हमारे अन्य श्रोताओं के समक्ष रखा। इसके लिए हम अपने सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं।
0: बिल्कुल, आगे लिखते हैं कि शब्द चित्र के अंतर्गत जो वार्ता सुनाई गई, एक एक शब्दों ने पुरानी यादों को पुनः ताज़ा कर दिया। इसके साथ ही आगे लिखते हैं, 8 जून को आकाशवाणी की वर्षगांठ संध्या 6:45 पर दीपांकर जी यानी आपने प्रातःकाल की सिग्नेचर ट्यून से रात्रि जय हिंद तक सभी कार्यक्रमों की रूपरेखा, संगीतमय प्रस्तुति, लाजवाब प्रस्तुति के लिए धन्यवाद कहते हैं आपको। कुछ अच्छे कार्यक्रम जिनमें प्रमुख रूप से 6 जून की कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम प्रस्तुति काफी पसंद आई, 9 जून रात्रि कार्यक्रम आपके मित ये गीत, 11 जून का गीत गंगा, 12 जून को गीत गंगा में जो गीत सुनाए गए वे इन्हें बहुत ही अच्छे लगे, इसके लिए ये आभार व्यक्त करते हैं।
1: राजू निखाड़े जी, आपने इतना अच्छा और इतना खूबसूरत सा संदेश हमें लिखकर भेजा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और हम चाहेंगे कि भविष्य में भी आप इसी तरह इतने ही खूबसूरत से पत्रों को और संदेशों को आकाशवाणी छिंदवाड़ा तक पहुँचाते रहें। दुर्गेश जी, अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और शामिल करते हैं ये व्हाट्सएप संदेश जिसे लिख भेजा है हमारे मुकाम तुमड़ी हनुमान मंदिर के पास तहसील पराशिया के श्रोता। तो हमारे तुमड़ी के सभी श्रोताओं को हम धन्यवाद कहते हैं ये संदेश भेजने के लिए, और अब मैं पढ़ लेता हूँ कि इन्होंने क्या लिखा है। दुर्गेश जी, अपने संदेश में इन्होंने लिखा है कि 10 जून का युववाणी कार्यक्रम बहुत पसंद आया, इस दिन तरुणों की पसंद और अमृतवाणी बहुत ही अलग थे और ये कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा। 11 जून को इन्हें फिल्म संगीत के साथ साथ युववाणी और संजवाती कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा। 12 जून का वंदन

0: कार्यक्रम मैंने बहुत पसंद आया, और ये अपने कार्यक्रमों में किसान वाणी और युव वाणी कार्यक्रम की बहुत अधिक तारीफ करते हैं। इनका कहना है कि पूरे सप्ताह सबसे अच्छा कार्यक्रम हमें युव वाणी लगा। इसके साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं और समसामयिक घटनाओं पर इन्हें जो वह साक्षात्कार हमने प्रसारित किया, ये साक्षात्कार पर आधारित विविधा इन्हें बहुत पसंद आया, जिसमें समसामयिक विशेषज्ञ अनर्घ्य जैन से अमोल शेंडी जी ने बात की थी। इसके पश्चात इनका कहना है कि कुछ बातें कुछ गीत इस सप्ताह भी लाजवाब रहा।
1: आपका प्यार और विश्वास ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है, इसके लिए आपको आभार कहते हैं। तो दीपांकर जी, अगले व्हाट्सएप संदेश की बारी।
0: स्वागत है आपका। किसका व्हाट्सएप संदेश ले रहे हैं दुर्गेश जी?
1: ये हैं हमारे नियमित श्रोता मित्र, ताजनगर छिंदवाड़ा से गफार बाबू, रुखसाना बेगम, आयरा इनाया, राहुल पाल, फूल सिंह मक्कड़, हरेश विश्वकर्मा, नॉर्थ चांदामेटा से आप हैं मोहम्मद अशफाक, अब्दुल सत्तार, अब्दुल रजाक और हुमा शायमा जी।
0: गफ़ार बाबू और इनके सभी श्रोता हमारे बहुत पुराने श्रोता हैं, नियमित श्रोता हैं, बहुत अच्छे संदेश लिखकर भेजते हैं। इस सप्ताह इन्होंने क्या लिख भेजा है?
1: इनका कहना है 11 जून को भवदीय की प्रस्तुति बहुत ही अच्छी रही। शीर्षक संगीत की भी तारीफ लिखते हैं, गीतों का चयन बहुत अच्छा था। 12 जून को गीत गंगा, युववाणी, किसानवाणी, अनुरोध। 13 जून को गीत गंगा, कुछ बातें कुछ गीत, बहुत अच्छा लगा। युववाणी भी पसंद आया। 14 जून को गीत गंगा, हेलो आकाशवाणी, किसानवाणी कार्यक्रम आपकी पसंद। 15 जून को विविधा, गीत गंगा, युववाणी, तरुणों की पसंद, किसानवाणी कार्यक्रम। 16 जून को सभी कार्यक्रम बहुत पसंद आए, जिसमें आपके मीत ये गीत। 17 जून को सबरस कार्यक्रम, फिल्म संगीत, गीत गंगा और ये सभी गीतों को सुनकर मन प्रफुल्लित उठा, ऐसा लिखते
0: और
1: हैं।
0: आपका इतना अच्छा संदेश पढ़कर हमारा मन भी प्रफुल्लित हो गया गफ्फार बाबू, और हम चाहेंगे कि इसी तरह अच्छे अच्छे प्रफुल्लित करने वाले संदेश आप हमें भेजते रहें। और अब कार्यक्रम में एक और पत्र वाला संदेश जो है हम शामिल करते हैं, जिसे लिख भेजा हमारे भमोड़ी कॉलरी के श्रोता इसरी लाल वर्मा जेम्स जी ने। इन्हीं के साथ हैं शाइनी वर्मा जेम्स, जय वर्मा, महिमा, यश वर्मा, शांति, सुमन जी, बेबी, तक्षिका, और इन्हीं के साथ हैं रोशनी जी। इन्होंने लिखा है कि हर सप्ताह की भांति इस सप्ताह भी आकाशवाणी द्वारा बहुत ही अच्छे अच्छे कार्यक्रमों का प्रसारण किया गया। विगत सप्ताह का भवदीय कार्यक्रम बहुत ही अच्छा था, साथ ही हेलो आकाशवाणी इन्हें बहुत पसंद आया। इनका कहना है कि सप्ताह भर की गीत गंगा, किसान वाणी, युव वाणी, फिल्म संगीत, सभी कार्यक्रम एक से बढ़कर एक रहे, और आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने पर जो कार्यक्रम प्रसारित किए गए, ये कार्यक्रम भी इन्हें बेहद पसंद आए।
1: समय निकालकर आपने हमें व्हाट्सएप संदेश पहुंचाया, इसके लिए कहते हैं हम आपको शुक्रिया। यूं ही व्हाट्सएप संदेश हम तक पहुंचाते रहें।
0: दुर्गेश जी, अब मैं देख रहा हूँ कि एक और संदेश पढ़ने को आप आतुर हो रहे हैं। किसका संदेश है ये?
1: ये हैं हमारे नियमित श्रोता मित्र देवेंद्र बख्शी, मुफी भाई, राजू देवंशी, अरविंद साइमन, महतू शाह धुर्वे, उमेश सिंह ठाकुर, राम मंदिर के पास परासिया से।
0: देवेंद्र बख्शी जी का स्वागत है हमारे आज के भवदीय में। क्या लिख भेजा इन्होंने?
1: इनका कहना है विगत सप्ताह का भवदीय की प्रस्तुति बहुत ही लाजवाब रही। 12 तारीख को कार्यक्रम रामचरितमानस गान की प्रस्तुति, 13 को कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत, 14 को कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी, 15 को कार्यक्रम विविधा, 16 को कार्यक्रम शब्द चित्र, 17 को कार्यक्रम गीत गंगा और फिल्म संगीत ने मन मोह लिया।
0: और आपके इतने अच्छे अच्छे जब संदेश हमें प्राप्त होते हैं, हमारा भी मन आप इन संदेशों के माध्यम से मोह लेते हैं। हम चाहेंगे कि इसी तरह मनमोहक से संदेश आप आगे आने वाले सप्ताह में भी हमें भेजें, और उसे पढ़कर हम भी प्रसन्न हो जाएं। इतने प्यारे संदेश आप हमें पहुंचाएं। देवेंद्र बख्शी जी, आपने हमें संदेश भेजा, इसके लिए आपका धन्यवाद। और दुर्गेश जी, अब हमारे न्यूटन के जो श्रोता हैं हरिराम साहू जी, इनका संदेश हम लेते हैं अपने कार्यक्रम में।
1: स्वागत है।
0: इन्हीं के साथ हैं काजल साहू, गगन, चंद्र प्रकाश साहू, मास्टर प्रिंस, मास्टर यूवी, मास्टर वेदांश, कुमारी वैष्णवी, करण देव बरखे और सलीम अंसारी जी। इनका कहना है कि सप्ताह भर के सभी कार्यक्रम बहुत पसंद आए, और इसके साथ साथ इनका कहना है कि विगत सप्ताह का भवदीय और किसानवाणी कार्यक्रम बहुत पसंद आया। शीर्षक गीत इनका कहना है कि जो आंखों पर केंद्रित था, ये सप्ताह के सबसे अच्छे कार्यक्रमों में से था। हर सप्ताह की भांति इस सप्ताह भी हेलो आकाशवाणी बहुत ही लाजवाब और उच्च कोटि का रहा। विविधा में अनर्घ्य जैन द्वारा जो प्रतियोगी परीक्षाओं के संबंध में जानकारी दी गई, ये जानकारी इन्हें बहुत अच्छी लगी। इसके साथ साथ इनका कहना है कि 16 जून का चिंतन और शब्द चित्र कार्यक्रम लाजवाब रहा।
1: आपका स्नेह भरा पत्र हमें प्राप्त हुआ, इसके लिए हम कहते हैं हार्दिक धन्यवाद। अब लेते हैं अगला व्हाट्सएप संदेश। ये है हमारे श्रोता मुकाम बमनी लाला पोस्ट परसोली से सतीश रघुवंशी, शिवम रघुवंशी, सत्यम साहू, शिवराम चौरे, अजय वर्मा, सखाराम साहू, बीरपाल यादव और दोस्त।
0: सतीश रघुवंशी जी हमारे बहुत पुराने श्रोता हैं, बहुत ही अच्छे श्रोता हैं, हमारी तारीफ भी बहुत अधिक करते हैं, और जब कभी कोई कमी रह जाती है कार्यक्रमों में तो खिंचाई भी बहुत दिल से करते हैं। इस सप्ताह इन्होंने क्या लिख भेजा है?
1: इनका कहना है 11 तारीख का भवदीय कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा, साथ ही सप्ताह भर का गीत गंगा भी अच्छा लगा। 12 तारीख का अनुरोध कार्यक्रम, 13 तारीख को कुछ बातें कुछ गीत, मेरी पसंद।

0: 14 तारीख का हेलो आकाशवाणी, 15 तारीख का आपकी पसंद, 16 को आपके मीतिये गीत, 17 तारीख का वंदना और गीत गंगा, ये सभी कार्यक्रम अच्छे लगे।
1: इतने सारे कार्यक्रमों को आपने पसंद किया, अपना बहुमूल्य समय हमें प्रदान किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और लेते हैं ये एक प्यारा सा संदेश जिसे लिख भेजा हमारे तहसील अमरवाड़ा क्षेत्र के श्रोता किरण रामनाथ साहू, श्रीजी साहू, दीप शिखा, दीपक, माधवी, अनय, अमन, गुलशन, इन्हीं के साथ हैं रश्मि, माधव जी और अभिक और अनय साहू जी।
0: रामनाथ जी का इस बार क्या कहना है?
1: इनका कहना है कि भवदीय कार्यक्रम में जो श्रोताओं के पत्र लिए गए और उसका जिस तरह से जवाब दिया गया, ये कार्यक्रम इन्हें बहुत अच्छा लगा। और इनका कहना है कि इस तरह की प्रस्तुति हमेशा ही सराहनीय होती है। साथ ही इनका कहना है कि किसानवाणी कार्यक्रम में, फोन इन कार्यक्रम में विशेषज्ञ सुश्री हेमलता अहिरवार जी ने जो मिट्टी के परीक्षण और मृदा स्वास्थ्य के संबंध में जानकारियां प्रदान की, बहुत ही अच्छा रहा। इससे किसानों की बहुत सारी समस्याएं निराकरण होगा और इस तरह के और भी कार्यक्रम प्रस्तुत करने का इन्होंने हमसे अनुरोध किया है। तो निश्चित तौर पर हम इस तरह के ज्ञानवर्धक कार्यक्रम आगे भी प्रसारित करते रहेंगे, क्योंकि हमारा लक्ष्य यही है कि किसान भाइयों की खेती में जितना भी हो सके हम उतना सहयोग करें, उन्हें आधुनिकतम यंत्रों से अवगत कराएं और जो भी नवाचार कृषि के क्षेत्र में हो रहे हैं उसे अपनाने के लिए जो है विशेषज्ञों से उनकी भेंटवार्ता भी करवाएं। तो इन सभी सभी चीजें आपको पसंद आई, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: सभी कार्यक्रमों से जुड़ने के लिए आपको कहते हैं हम धन्यवाद और प्रतिक्रिया के लिए तो हम विशेष आपको धन्यवाद करते हैं। अगला व्हाट्सएप संदेश सतीश शिव, कविता शिव, प्रियांश शिव, आराध्य शिव, वार्ड नंबर 15 परासिया से।
1: सतीश शिव और इनके परिवार के सभी सदस्यों का स्वागत है आकाशवाणी छिंदवाड़ा के कार्यक्रम भवदीय में। सतीश शिव जी ने क्या लिख भेजा है आज के संदेश में?
0: पिछले सप्ताह का कार्यक्रम भवदीय में मुझे और मेरे परिवार को बहुत ही अच्छा लगा। 12 तारीख को युववाणी कार्यक्रम, 13 को कुछ बातें कुछ गीत, 14 को हेलो आकाशवाणी कार्यक्रम, 15 को कार्यक्रम विविधा, 16 को शब्द चित्र कार्यक्रम, 17 को गीत गंगा और सबरस कार्यक्रम मेरे दोस्तों को बहुत पसंद आया।
1: सतीश शिव जी, आपको इतने सारे कार्यक्रम पसंद आए और उसके पश्चात आपने हमें इतना अच्छा संदेश लिखकर भेजा, इतनी अच्छी हमारी, इतनी सारी हमारी तारीफें की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम प्रयास करेंगे कि इसी तरह अच्छे अच्छे कार्यक्रम आगे भी आपको सुनवाते रहें। दुर्गेश जी, इसी मीठे से संदेश के बाद हम लेते हैं एक पत्र जिसे लिख भेजा है हमारे न्यूटन चिखली परासिया के श्रोता अनिल वाघ, संगीता वाघ, रविंद्र वाघ, वंदना वाघ, अंकेश वाघ, अनुवेश वाघ, रितिका वाघ, रितिक वाघ, अंकु और इन्हीं के साथ हैं सिंकी वाघ।
0: क्या कहना है सप्ताह?
1: इनका कहना है कि पिछले सप्ताह भौदीय कार्यक्रम की प्रस्तुति शानदार रही, शीर्षक गीत लाजवाब रहा, बहुत पसंद आया। इसके पश्चात इनका कहना है कि यशुदास पर जो गीत गंगा प्रसारित की गई 12 जून को वो बहुत अच्छी रही, इस सप्ताह अनुरोध बहुत अच्छा रहा, कुछ बातें कुछ गीत की प्रस्तुति लाजवाब रही, साथ ही रक्तदान पर जो कार्यक्रम प्रसारित किया गया बालसभा में ये बहुत ही अच्छा लगा। आगे इनका कहना है कि विविधा में अनर्घ जैन जी द्वारा जो जानकारियां दी गई ये युवाओं के बहुत काम आएगी और उन्हें अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं में इस तरह से काफ़ी मदद प्राप्त होगी। आगे इनका कहना है शब्द चित्र में रणजीत सिंह परिहार द्वारा पर्यावरण पर जो वार्ता की गई ये वार्ता इन्हें बेहद पसंद आई। इसके साथ साथ इनका कहना है कि पूरे सप्ताह फिल्म गीत और गीत गंगा इन्हें बहुत अच्छे लगे और सभी उद्घोषकों की प्रस्तुति लाजवाब थी।
0: आपके शब्दों ने हमारा उत्साह बढ़ाया, आपको कहते हैं हम धन्यवाद। और लेते हैं कार्यक्रम में अगला व्हाट्सएप संदेश। ये है हमारे श्रोता मित्र देवीराम इनवाती और दामिनी इनवाती जी।
1: ये हमारे तामिया क्षेत्र के श्रोता हैं दुर्गेश जी।
0: बिल्कुल, ग्राम आलीवाड़ा से।
1: जी, तो ग्राम आलीवाड़ा के सभी श्रोताओं का स्वागत है।
0: दिनांक 11 जून का कार्यक्रम वंदना, चिंतन, भवदीय और शीर्षक संगीत बहुत ही अच्छा लगा। 12 जून का चिंतन, किसानवाणी अनुरोध, 13 जून का चिंतन, युववाणी और मेरी पसंद कार्यक्रम, 14 जून का वंदना, हेलो आकाशवाणी, 15 जून का किसानवाणी और आपकी पसंद, 16 जून का शब्द चित्र कार्यक्रम गीत गंगा और आपके मीतिये गीत, 17 जून का वंदना, चिंतन, गीत गंगा और फिल्म संगीत अच्छे लगे।
1: तो दामिनी इनवाती जी, आपको हमारे इतने सारे कार्यक्रम पसंद आए और उस पर आपने इतनी अच्छी प्रतिक्रिया हमें लिखकर भेजी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाहेंगे कि इसी तरह आप आकाशवाणी छिंदवाड़ा के कार्यक्रम से जुड़े रहें और प्रेम और स्नेह आकाशवाणी छिंदवाड़ा से बनाए रखें। और दुर्गेश जी, एक और बहुत ही सुंदर और बहुत ही खूबसूरत सा संदेश मेरे पास में है। अलग अलग तरह की स्याही का प्रयोग किया गया है लिखने के लिए, बहुत ही सुंदर लग रहा है देखने में, लाल कलर, हरे कलर और अन्य भी रंगों से संदेश को लिखा गया है,
0: यानी रंगों से सराबोर है
1: जी। हम इसे तो इंद्रधनुषी पत्र भी कह सकते हैं। ये है हमारे जाटा छापर चौकी लाइन के श्रोता मोहनलाल देवांगन, रेखा देवांगन, अर्चना देवांगन, रुखसाना बेगम, विवेक बंदेवार, सूरज, आश्रित आर्य, ममता

0: भन्नारे, अब्दुल जी इन्हीं के साथ हैं, होरीलाल रोतिया, दया शंकर शाहू, महेश मर्सकोले और जगदीश यादव। रावनवाड़ा के भी बहुत सारे श्रोता हैं, उनके नाम है शेख मुनव्वर, शकीना बेगम और इन्हीं के साथ हैं नजमा बेगम जी।
1: बड़ा श्रोता संघ है।
0: जी बहुत बड़ा है और बहुत पुराने, बहुत ही अच्छे संदेश हमें लिखकर भेजते हैं। इन्हें फिल्म संगीत के सभी कार्यक्रम बहुत पसंद आए हैं। इनका कहना है कि गीत गंगा जैसी प्रस्तुति दी जाती है जो सभी श्रोताओं का, गीत गंगा जो कार्यक्रम है इसमें उद्घोषकों द्वारा जो प्रस्तुति दी जाती है वो हम सभी श्रोताओं का मन मोह लेती है। साथ ही हेलो आकाशवाणी के अंतर्गत जो श्रोताओं से सीधा संवाद होता है वो अपनी यादें और आकाशवाणी से जुड़ाव की कहानियाँ जो बताते हैं ये हमें बहुत अच्छा लगता है। कई श्रोताओं से जो आकाशवाणी के उद्घोषक बात करते हैं जिसमें उनकी दिनचर्या की जानकारी ली जाती है, तो इनका कहना है कि इस तरह के संवाद हमें बेहद पसंद आते हैं और हेलो आकाशवाणी इनका सबसे पसंदीदा कार्यक्रम है, ऐसा भी इन्होंने लिखा है।
1: चलिए, आप जैसे जागरूक श्रोताओं का यूं ही साथ बना रहे, आपको कहते हैं हम धन्यवाद। अगला व्हाट्सएप संदेश परसराम डहरिया अंबाड़ा से, केशव कैथवास भड़कुई से, सुरेश दियावार, संतराम कुशवाहा, शंकर राम प्रजापति, दिलीप प्रजापति, सफात खान, प्रभाकर कावड़कर, योगेश डहरिया, हर्षिता डहरिया, सुनील डहरिया, रेखा डहरिया, अम्बाड़ा बस स्टॉप, तहसील परासिया, जिला छिंदवाड़ा से।
0: परासराम डेहरिया जी हमारे बहुत ही पुराने श्रोता हैं, बहुत ही नियमित श्रोता हैं, हमारे सभी कार्यक्रम सुनते हैं। हमारे जो साहित्य जगत के कार्यक्रम हैं जैसे शब्द चित्र, जो संगीत के कार्यक्रम हैं सुरताल, ये इन्हें बहुत पसंद आते हैं। इस सप्ताह इन्होंने क्या लिख भेजा है दुर्गेश जी?
1: 11 तारीख का भव्य कार्यक्रम, 12 तारीख का गीत गंगा, 13 तारीख को वंदना देशगान, कुछ बातें कुछ गीत, 14 तारीख को बाल सभा, 15 को विविधा, 16 तारीख को शब्द चित्र, 17 को देशगान, गीत गंगा और फिल्म संगीत बहुत ही अच्छे लगे।
0: इतने सारे कार्यक्रमों को आपने पसंद किया और अपना बहुमूल्य समय आकाशवाणी को प्रदान किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बहुत ही छोटा सा संदेश मैं ले लेता हूँ दुर्गेश जी।
1: स्वागत है।
0: भेजने वाले हमारे नियमित श्रोता लकी इवनाती, नीतीश गोमनेकर, मनीष थानवर, विनोद दुबे, सुरेश इवनाती जी, इन्हीं के साथ हैं तेजीलाल मरकाम जी। ये सभी श्रोता हैं टीवी टावर के पास चांदामेटा से। इन्होंने लिखा है कि 11 जून को भवदीय कार्यक्रम लाजवाब रहा, 12 जून को युववाणी, 13 जून को कुछ बातें कुछ गीत में विषय का चयन जो है बहुत ही अच्छा रहा और दो विषयों का चयन किया गया, इस कारण ये कार्यक्रम और भी अच्छा लग गया। आगे इनका कहना है कि इसके बाद हेलो आकाशवाणी बहुत ही शानदार रहा। सुबह सुबह 16 जून को विविधा कार्यक्रम में जो समसामयिक खबरों के बारे में जानकारी दी गई, ये जानकारी इन्हें बेहद पसंद आई। और इसके साथ इनका कहना है 15 जून को इन्हें विविधा कार्यक्रम में जो समसामयिक विषयों पर जानकारी दी गई बहुत पसंद आई। 16 जून को इन्हें पर्यावरण पर केंद्रित जो शब्द चित्र कार्यक्रम था ये बेहद पसंद आया।
1: और हमें आपका ये बहुमूल्य विचार काफी पसंद आया, आपको कहते हैं हम धन्यवाद। यूं ही समीक्षा और प्रतिक्रिया करते रहें। अब बारी हमारे नियमित श्रोता मित्र की। ये हैं न्यूटन चिकली नंबर 11 से देवी शंकर गुप्ता, उमा गुप्ता, देवेश गुप्ता, प्रिया गुप्ता, विष्णु गुप्ता, पप्पू गुप्ता, अर्पिता गुप्ता और आपके साथ है मुनिया।
0: देवीशंकर गुप्ता जी हमारे नियमित और प्रबुद्ध श्रोता हैं, क्या लिख भेजा इन्होंने?
1: दिनांक 11 को हेलो किसान वाणी कार्यक्रम की प्रस्तुति बहुत ही जानकारी से परिपूर्ण लगी इन्हें। 11 तारीख का ही शीर्षक संगीत बहुत पसंद आया, 13 को कुछ बातें कुछ गीत, शक्ति रूपा मेरी पसंद कार्यक्रम, गीतों का चयन काफी अच्छा लगा इन्हें, 14 को बाल सभा, 15 को विविधा जानकारी पूर्ण लगा, संजवाती की प्रस्तुति काफी अच्छी लगी, 17 को चिंतन और फिल्म संगीत की प्रस्तुति बहुत ही अच्छी लगी इन्हें।
0: तो इतने सारे कार्यक्रमों को आपने पसंद किया और बहुत ही अच्छा और छोटा सा सार्थक संदेश हमें लिखकर भेजा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस छोटे से संदेश के बाद दुर्गेश जी हम एक बहुत बड़ा और विस्तारित संदेश लेने वाले हैं अपने कार्यक्रम में।
1: किनका है?
0: ये है हमारे नियमित श्रोता सुरेश कस्तूरे, राजेश कुमार कस्तूरे, शांतनु कस्तूरे, विक्रम कस्तूरे, श्याम कस्तूरे, राम कस्तूरे, पार्थ कस्तूरे, राघव जोशी, अनुराधा कस्तूरे, स्वाति कस्तूरे, रेणुका कस्तूरे और इन्हीं के साथ हैं श्रुति कस्तूरे जी वार्ड नंबर 11 उमरेड से। इनका कहना है कि पिछले सप्ताह आकाशवाणी छिंदवाड़ा द्वारा विभिन्न विषयों पर अलग अलग तरह के कार्यक्रम प्रसारित किए गए जिसमें विषयों का चयन बहुत ही अच्छा रहा। जहां हमें पर्यावरण पर आधारित कार्यक्रम सुनाया गया वहीं पर योग पर आधारित कार्यक्रम भी सुनवाया गया और इसके साथ साथ संगीत पर केंद्रित कार्यक्रम भी सुनवाए गए। इसके पश्चात सप्ताह भर फिल्म संगीत के सभी कार्यक्रम लाजवाब रहे लेकिन इन्होंने शीर्षक संगीत की बहुत अधिक तारीफ की। इनका कहना है कि विषय का चयन बहुत ही अच्छा रहा और उद्घोषक द्वारा प्रस्तुति बहुत ही बेहतर दी गई और कार्यक्रम में जो गाने शामिल किए गए गाने भी बहुत ही लाजवाब रहे। इसके साथ साथ इनका कहना है कि हेलो छिंदवाड़ा कार्यक्रम हमें बेहद पसंद आता है क्योंकि इसमें छिंदवाड़ा अंचल की सभी प्रमुख खबरें, जो प्रमुख गतिविधियां की जाती हैं वो इन्हें पता चल जाती हैं।
1: काफी विस्तारित संदेश लग रहा है और ऐसा लगता है कि सप्ताह भर कार्यक्रम सुनते हैं।
0: जी बिल्कुल, इन्होंने सप्ताह भर के सभी कार्यक्रमों को सुना है और मुझे और ये पढ़कर ऐसा लगता है कि शायद कोई भी कार्यक्रम इन्होंने नहीं छोड़ा है।
1: आपको कहते हैं हम धन्यवाद और लेते हैं कार्यक्रम में अगला व्हाट्सएप संदेश। ये हमारी नियमित श्रोता मित्र

0: शिवपुरी से प्रमिला यादव, सौरव यादव, अंजलि यादव, हर्षिता यादव और सभी यादव परिवार।
1: प्रमिला यादव जी का स्वागत है हमारे कार्यक्रम भवदीय में।
0: कहते हैं कि आपके सारे कार्यक्रम बड़े ही लगन से सुनते हैं। प्रातःकालीन प्रसारण सभा में सुबह 6 बजे से मैं रेडियो चालू कर लेती हूँ।
1: बहुत ही अच्छी बात है प्रमिला जी, हम चाहेंगे कि आप इसी तरह अपने दिन की शुरुआत रेडियो से करें। बहुत ही स्वस्थ मनोरंजन का माध्यम है रेडियो, और इसी तरह आप रेडियो से जुड़ी रहें और अपनी प्रतिक्रियाएं हम तक यूं ही पहुंचाती रहें। संदेश भेजने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दुर्गेश जी, अब लेते हैं कार्यक्रम का अंतिम संदेश। दुर्गेश जी, अब घड़ी इशारा कर रही कि हम कार्यक्रम को यहीं समेट लें, लेकिन उससे पहले एक और संदेश हम कार्यक्रम में शामिल कर लेते हैं।
0: बिल्कुल स्वागत है।
1: ये संदेश हमें लिख भेजा है हमारे नियमित और प्रबुद्ध श्रोता लक्ष्मण प्रसाद डेहरिया, सूरज नारायण डेहरिया, अभिषेक डेहरिया, निखिल डेहरिया, पूजा डेहरिया, स्वाति डेहरिया, रुचि डेहरिया, पल्लवी डेहरिया और संदीप डेहरिया जी ने, गीतांजलि कॉलोनी छिंदवाड़ा से। इनका कहना है कि 11 जून को प्रस्तुत भवदीय कार्यक्रम की प्रस्तुति लाजवाब रही। ये कार्यक्रम बहुत ही प्रभावशाली रहा। 15 जून को इन्हें एल्बम गीत और युवाणी कार्यक्रम अच्छा लगा। 13 जून को कुछ बातें कुछ गीत में जो चर्चा की गई, ये विषय इन्हें बहुत पसंद आए। इसके साथ ही 14 जून को बालसभा कार्यक्रम में सुनो और गुणों पर पोषण आहार पर चर्चा की गई, ये चर्चा अच्छी लगी। साथ ही हेलो आकाशवाणी कार्यक्रम शानदार लगा। 15 जून को इन्हें विविधा कार्यक्रम बहुत ही अच्छा लगा। 16 जून को शब्द चित्र में पर्यावरण पर आधारित जो वार्ता प्रस्तुत की गई, इनका कहना है कि ये बहुत ही अच्छी ज्ञानवर्धक वार्ता थी और इसमें जो संस्मरण और सुझाव दिए गए वो भी बहुत ही अच्छे रहे।
0: तो श्रोताओं, हमारे कार्यक्रम से जुड़े रहने और आपकी अपनी प्रतिक्रिया भेजने के लिए आपको कहते हैं हम धन्यवाद। आपके शब्दों ने हमारा उत्साह बढ़ाया, आपका हार्दिक अभिनंदन है और धन्यवाद है।
1: तो दुर्गेश जी, इसी पत्र और संदेश के साथ अपने कार्यक्रम को यहीं समेट लेते हैं और बता देते हैं श्रोताओं को अपने कार्यक्रम का पता।
0: कार्यक्रम भवदीय द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी कुकड़ा हिल्स छिंदवाड़ा, हमारा पिन कोड है 480001।
1: और श्रोताओं, व्हाट्सएप के माध्यम से भी हम जुड़ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8602-262-263, यानी कि 8602-262-263। तो इस पते पर और इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें रहेगा आपके ढेर सारे पत्रों और संदेशों का इंतजार।
0: तो दीपांकर जी, आज के कार्यक्रम को यहीं समेटते हैं और कहते हैं हमारे श्रोताओं को नमस्कार।

भावदीय, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। आज प्रस्तुति थी दीपांका तिवारी की और प्रस्तुति सहयोग था दुर्गेश नामदेव का। FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के छिंदवाड़ा केंद्र से। और अब श्रोताओं, आपके इंतजार में है सदाबहार फिल्मी नगमों का कार्यक्रम गीत गंगा। गीत गंगा की पहली पेशकश में हम आपको सुना रहे हैं मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ों में। फिल्म का नाम है ये रात फिर ना आएगी। लीजिए सुनिए ये प्यारा सा गीत।

टेलीलॉ के ऐप, वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।

गीत गंगा में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। गीत गंगा की अगली पेशकश में सुनिए लता मंगेशकर को फिल्म गाइड के इस प्यारे से गीत में। इस गाने को बोल दिए हैं शैलेंद्र ने और सुरों से सजाया है SD बर्मन ने।

यह आकाशवाणी छिंदवाड़ा और इस वक्त आनंद ले रहे हैं सदाबहार गीतों का गीत गंगा में। आइए आप सुनते हैं आनंद बख्शी का लिखा गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। फिल्म का नाम है राजा और रंक। इस गाने की धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

मोहम्मद रफ़ी के गाए इसी खूबसूरत गीत के साथ ही गीत गंगा यहीं संपन्न होती है। एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के छिंदवाड़ा केंद्र से। कुछ ही पलों में सुनिए समाचार प्रभात दिल्ली से।

0: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
1: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती।

0: और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। हर घर सूर्य घर।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ पेरिस में विवेटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। श्री मोदी फ्रांस की राजधानी में प्रवासी भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और उड़ीसा के 5 दिन के दौरे पर रहेंगे। झारखंड से राज्यसभा की 2 और मिजोरम की 1 सीट के लिए आज मतदान होगा। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होगा। पश्चिम एशिया संघर्ष समाप्त करने के लिए अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ 14 सूत्रीय शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। और पुरुष क्रिकेट में भारत ने दूसरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में अफगानिस्तान को 170 रन से हराकर श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बनाई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के अंतिम चरण में पेरिस पहुंच गए हैं। होटल पहुंचने पर प्रवासी भारतीय समुदाय ने श्री मोदी का स्वागत किया।
2: हम बहुत खुश हैं कि मोदी जी हमारे घर आए, हमारे पेरिस में आए।
3: मोदी जी हमारी शान है, हमको ये अभिमान है।
1: प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वीवा टेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप के क्षेत्र में यूरोप का सबसे बड़ा आयोजन है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी विशेष कार्यक्रम में भारतीय समुदाय के लोगों से बातचीत करेंगे।
4: आज प्रधानमंत्री द्विपक्षीय व्यापार और नवाचार साझेदारी को और मजबूत करने के उद्देश्य से एक बेहद व्यस्त कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। वह फ्रांस और यूरोप के शीर्ष व्यापारिक नेताओं के साथ एक विशेष गोलमेज बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसका मुख्य फोकस भारत के बढ़ते औद्योगिक और तकनीकी क्षेत्रों में रणनीतिक निवेश को बढ़ावा देना है। इस दौरे का मुख्य आकर्षण विवाटेक सम्मेलन है, जो यूरोप का सबसे बड़ा प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप इवेंट है। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ इस शिखर सम्मेलन में कई उच्च स्तरीय सत्रों में भाग लेंगे। इसके बाद वह एक बहुप्रतीक्षित मुख्य भाषण देंगे, जिसमें भारत के तेजी से बढ़ते वैश्विक डिजिटल कदमों को रेखांकित किया जाएगा। यह गहन राजनीतिक यात्रा एक बड़े सामुदायिक संपर्क कार्यक्रम के साथ संपन्न होगी। प्रधानमंत्री एक शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल होंगे, जिसमें भारत की समृद्ध विरासत और संस्कृति को प्रदर्शित किया जाएगा। महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस, फ्रांस।
1: G7 के संपर्क सत्र में प्रधानमंत्री मोदी ने कल G7 देशों, भारत और ग्लोबल साउथ की ताकतों को मिलाकर संपर्क और व्यापार को बढ़ाने की रूपरेखा का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि विकासशील देशों पर पश्चिमी एशिया संकट का दीर्घकालिक असर पड़ेगा। शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री ने अमरीका, ब्रिटेन, यूक्रेन, जर्मनी, संयुक्त अरब अमीरात, कनाडा, यूरोपीय परिषद और यूरोपीय आयोग के नेताओं से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में ईरान के साथ समझौते के दौरान वहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर भी बल दिया।
5: मैरिटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सी फेरर दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सी फेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी।
1: G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुरक्षित, समावेशी और मानव केंद्रित विकास का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि AI की असली सफलता मशीनों की क्षमता में नहीं बल्कि आम लोगों को सशक्त बनाने में है। फ्रांस के एवियो में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान नेताओं ने संतुलित आर्थिक विकास, महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखला और बच्चों के लिए सुरक्षित डिजिटल वातावरण से जुड़ी 3 महत्वपूर्ण घोषणाएं अपनाई। बच्चों के लिए सुरक्षित डिजिटल माहौल संबंधी घोषणा का भारत सहित ब्राजील, मिस्र और दक्षिण अफ्रीका जैसे कई देशों ने समर्थन किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और उड़ीसा के 5 दिन के दौरे पर रहेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति आज मध्य प्रदेश के बैतूल में आध्यात्मिक जागृति के माध्यम से आदिवासी समाज के सशक्तिकरण पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे।
6: 19 जून को राष्ट्रपति अंतर्राष्ट्रीय सीकल सेल अनीमिया दिवस के कार्यक्रम में शामिल होंगी। इसके बाद वे पश्चिम बंगाल के कलाईकुंडा के लिए प्रस्थान करेंगी। वहीं 21

0: उनको राष्ट्रपति मुर्मू जबलपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगी और रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के 36वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। इसके बाद राष्ट्रपति कूनो नेशनल पार्क का भ्रमण करेंगी और 22 जून को दिल्ली लौट आएंगी। राष्ट्रपति के बैतूल दौरे को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर डॉक्टर सौरभ संजय सोनवाने ने सुरक्षा व्यवस्था के तहत प्रतिबंध लगाए हैं। इसमें आज ड्रोन के उड़ान संचालन पर रोक रहेगी और भारी वाहनों की आवाजाही पर भी नियंत्रण शामिल है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी न्यूज, भोपाल।
1: झारखंड से राज्यसभा की 2 और मिजोरम से 1 सीट के लिए आज मतदान होगा। मतदान सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा। मतगणना शाम 5 बजे शुरू होगी और उसके बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के प्रस्तुत कर रहा है। आज बात नक्सलवाद के उन्मूलन और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास के लिए सरकार के महत्वपूर्ण प्रयासों की।
2: नरेंद्र मोदी सरकार की सुरक्षा अभियान, नक्सलियों की फंडिंग पर रोक और प्रभावित इलाकों में तेज विकास कार्यों की संयुक्त रणनीति के चलते देश को नक्सलवाद और माओवादी आतंक से मुक्त करने में सफलता मिली है। पिछले कुछ वर्षों में कई बड़े सुरक्षा अभियानों ने माओवादी नेटवर्क को कमजोर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वर्ष 2022 में झारखंड के बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र में ऑपरेशन ऑक्टोपस चलाया गया। इसी वर्ष फरवरी में ऑपरेशन डबल बुल के तहत झारखंड के गुमला, लोहरदगा और लातेहार जिलों को नक्सली प्रभाव से मुक्त कराया गया। ऑपरेशन स्टॉर्म के तहत झारखंड के सरायकेला, पश्चिम सिंहभूम और खूंटी जिलों में नक्सलियों के ठिकानों को निशाना बनाया गया। वर्ष 2025 में तेलंगाना छत्तीसगढ़ सीमा पर चलाए गए ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट ने बचे हुए नक्सली कैडर को बड़ा झटका दिया। बस्तर के निवासी ने सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि सरकार ने देश को नक्सलवाद से मुक्त करने का अपना वादा पूरा किया है।
3: तो उन्होंने जो प्रॉमिस किया वो पूरा करके दिखाया, तो मोदी सरकार को, अमित शाह जी को, विजय शर्मा जी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ।
4: पर आजकल कोई डर का माहौल नहीं है, कोई भी बच्चे यहाँ पे फ्रीली अपना काम कर पाते हैं।
2: इन अभियानों के परिणाम भी स्पष्ट रूप से दिखाई दिए हैं। वर्ष 2024 में 217 माओवादी मारे गए, जबकि 2025 में यह संख्या बढ़कर 256 हो गई। इस दौरान कई बड़े नक्सली नेताओं का भी खात्मा हुआ, जिनमें हिडमा, कादरी सत्यनारायण रेड्डी, गणेश उइके और नक्सली महासचिव बसवराजू शामिल हैं। सुरक्षा अभियानों के साथ साथ नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों को भी तेजी से आगे बढ़ाया गया। झारखंड के गुमला जिले के रहने वाले टेम्बू उराव ने कहा कि जब से मोदी सरकार बनी है तब से नक्सलवाद धीरे धीरे खत्म हो गया और लोग शांति और सद्भाव के साथ रह रहे हैं।
5: हमारा क्षेत्र पूरी तरह से उग्रवाद के गिरफ्त में था, तो वहाँ अमन चैन एकदम नहीं था। हम लोग को दिन में भी निकलने के लिए डर लगता था। 2014 के बाद जब से मोदी सरकार बना है तब से धीरे धीरे करके अब उग्रवाद समाप्त हो गया है और आज हम लोग अमन चैन और बढ़िया से जीवन यापन कर रहे हैं।
2: नक्सलियों की फंडिंग रोकने में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने भी अहम भूमिका निभाई। इससे नक्सली संगठनों के संसाधनों और गतिविधियों पर बड़ा असर पड़ा। विशेष अवसंरचना योजना के तहत स्पेशल फोर्स, राज्य खुफिया शाखाओं और जिला पुलिस को मजबूत बनाने के लिए 1,761 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। इसके अलावा नक्सलवाद के खात्मे के लिए प्रभावित क्षेत्रों में 596 सुदृढ़ पुलिस थानों का निर्माण भी किया गया। आज नक्सल मुक्त भारत की कहानी लोकतंत्र, विकास और संविधान की ताकत की जीत का प्रतीक मानी जा रही है, जिसने दशकों से चली आ रही हिंसा पर विजय प्राप्त की है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: इस बीच झारखंड में नक्सल उन्मूलन अभियान को बड़ी सफलता मिली है। 10 लाख रुपए की इनामी महिला माओवादी पुष्पा महतो ने पश्चिम बंगाल के कोलकाता में पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता CETA इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि इस समझौते से भारत को ब्रिटेन के बाजार में 99% वस्तुओं पर तत्काल शुल्क मुक्त पहुंच मिलेगी।
6: We have a huge pool of talent.
7: हमारे पास ऐसे काबिल और महत्वाकांक्षी लोग हैं जो अपने और अपने परिवारों के लिए बेहतर भविष्य की तलाश में हैं। हर साल हमारे विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान से विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित में 14 लाख विद्यार्थी स्नातक डिग्री प्राप्त करते हैं। हमारे पास 140 करोड़ लोगों की ओर से सामान, सेवाओं और डेटा की भी मांग है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये समझौता लागू होने के बाद भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार और निवेश को नई गति मिलेगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के राष्ट्रपति

0: मसूद फिजिस्कियन ने पश्चिम एशिया संघर्ष समाप्त करने के लिए शांति समझौते पर डिजिटल हस्ताक्षर किए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अमेरिका ने समझौते का आधिकारिक प्रारूप जारी कर दिया है।
1: 14 सूत्रीय समझौते में लेबनान सहित सभी क्षेत्रों में सैन्य कार्रवाई को तत्काल और स्थायी रूप से रोकने का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही दोनों देशों ने 60 दिनों के भीतर अंतिम समझौते पर बातचीत पूरी करने का लक्ष्य तय किया है। समझौते के अंतर्गत अमेरिका अपनी नौसैनिक नाकेबंदी और उससे जुड़े प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया शुरू करेगा। वहीं ईरान शुरुआती 60 दिनों तक हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले वाणिज्यिक जहाजों की सुरक्षित और निःशुल्क आवाजाही सुनिश्चित करेगा। दस्तावेज में ईरान पर लगे प्रतिबंधों में चरणबद्ध ढंग से ढील देने और ईरानी तेल निर्यात के लिए विशेष अमरीकी छूट का भी प्रावधान किया गया है। अमेरिका के समर्थन से ईरान में कम से कम 300 अरब डॉलर के पुनर्निर्माण और आर्थिक विकास कार्यक्रम की योजना भी शामिल है। समझौते में ईरान ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि वह परमाणु हथियार न तो विकसित करेगा और न ही उन्हें हासिल करने का प्रयास करेगा। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रख्यात बौद्ध विद्वान रॉबर्ट एएफ थर्मन के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। पुरुष क्रिकेट में भारत ने लखनऊ में दूसरे एक दिवसीय मैच में अफगानिस्तान को 170 रन से हरा दिया। इसके साथ ही भारत ने 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजय बढ़त बना ली है। श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच शनिवार को चेन्नई में खेला जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
2: धन्यवाद फरहत। आज सभी समाचार पत्रों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर सचित्र प्रकाशित की है। हिंदुस्तान लिखता है, भारत अमेरिका व्यापार समझौते के बहुत समीप, प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने दी जानकारी। दैनिक जागरण ने राष्ट्रपति ट्रंप के शब्द प्रकाशित किए हैं, भारत पर हमला हुआ तो हम करेंगे मदद। 16 माह बाद हुई द्विपक्षीय बैठक में अमेरिकी राष्ट्रपति ने दिया आश्वासन। फिर टूटी उद्धव की शिवसेना, 9 में से 6 सांसद बागी, शिंदे को माना अपना नेता। अमर उजाला की सुर्खी है, पत्र लिखता है, लोकसभा स्पीकर को पत्र सौंपकर अलग गुट के रूप में मान्यता देने की मांग की। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में स्कूलों का होगा सुरक्षा अंकेक्षण, पॉक्सो कानून के पालन में लापरवाही पर होगी सख्त कार्रवाई। उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने दिए निर्देश, जनसत्ता की खबर है। दैनिक भास्कर ने फीफा विश्व कप में फुटबॉलर मेसी के इतिहास रचने का समाचार सचित्र दिया है। पत्र लिखता है, हैट्रिक 1, रिकॉर्ड 10, उम्र बढ़ने के साथ मेसी ने खेल की बदली शैली। टेलीग्राम ने प्रतिबंध आदेश को दी चुनौती, केंद्र को नोटिस, देशबंधु सहित सभी अखबारों की सुर्खी है। दैनिक जागरण के शब्द हैं, टेलीग्राम को लेकर आईआईटी निदेशक से तर्क वितर्क, केंद्र सरकार ने कहा टेलीग्राम पर हो रही हैरान करने वाली गतिविधियां। राजस्थान पत्रिका ने लाहौल स्पीति में सैलानियों की तस्वीर साझा की है। पत्र लिखता है, वादियों में फुर्सत के पल, स्पीति में दिखी बर्फ, सैलानी हुए खुश। लोक सत्य ने अपने संपादकीय पन्ने पर देश में प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होने पर छात्रों के मनोबल टूटने पर लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है, पेपर लीक से टूटता मनोबल, संपादक का कहना है कि पेपर लीक की घटनाएं केवल परीक्षा प्रणाली की कमजोरी नहीं दर्शाती बल्कि ये युवाओं के सपनों पर चोट करती है।
0: धन्यवाद मनोज। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ पेरिस में विवाटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। श्री मोदी फ्रांस की राजधानी में प्रवासी भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और उड़ीसा के 5 दिन के दौरे पर रहेंगे। झारखंड से राज्यसभा की 2 और मिजोरम की 1 सीट के लिए आज मतदान होगा। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होगा। पश्चिम एशिया संघर्ष समाप्त करने के लिए अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ 14 सूत्रीय शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। और पुरुष क्रिकेट में भारत ने दूसरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में अफगानिस्तान को 170 रन से हराकर श्रृंखला में 2-0 की अजय बढ़त बनाई। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम निशित कुमार। द हेडलाइंस।

ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। प्रस्तुत है स्वराज संस्थान संचालनालय भोपाल का प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग।

0: वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, हमारा सवाल था कि नारायण मल्हार जोशी का जन्म कब हुआ था। इसका सही जवाब है 5 जून। और सही जवाब भेजने वाले हमारे इस बार के दो भाग्यशाली श्रोता हैं, नोएडा उत्तर प्रदेश से प्रवीण कुमार झा और दमोह से किशन घीवाला। आप दोनों ही श्रोताओं को बहुत बहुत बधाई। हम आपको भेज रहे हैं आज़ादी के दुर्लभ तरानों पर केंद्रित जन गर्जे श्रृंखला से एक ऑडियो एल्बम और आज़ादी के रणबांकुरों का एक छाया चित्र।
1: भारतीय सेना के शूर वीरों को समर्पित शौर्य स्मारक भोपाल।
2: शौर्य स्मारक, शहीदों की राष्ट्र सेवा से प्रेरित जीवन यात्रा का रूपायन।
1: जीवन के विभिन्न पड़ावों पर अदम्य साहस से जूझते मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान करते शूर वीरों की शौर्य गाथा का चित्रांकन
2: हर शाम 6 बजे से भारतीय जल थल और वायु सेना पर लघु फिल्मों का प्रदर्शन और भी बहुत कुछ।
1: शौर्य स्मारक भोपाल, समय दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक। आप सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। ध्यान रहे, बुधवार अवकाश।

भारतीय स्वाधीनता इतिहास में ऐसे अनगिनत महापुरुष हुए हैं जिन्होंने अपने जीवन को एक तपस्या की तरह जिया, जिन्होंने सेवा को साधना माना तथा राष्ट्र प्रेम को जीवन का सर्वोच्च धर्म। उन्होंने स्वतंत्रता को केवल स्वप्न नहीं माना, बल्कि गांवों जंगलों में घूम घूम कर उसे जन जन का विश्वास, संघर्ष और संकल्प बना दिया। अपने जीवन का प्रत्येक क्षण राष्ट्र को समर्पित करने वाले ऐसे ही महान स्वाधीनता संग्राम सेनानी थे लक्ष्मण प्रसाद दुबे। वो एक दूरदर्शी शिक्षाविद और समाज सुधारक भी थे। चूंकि उनका पूरा जीवन एक शिक्षक के रूप में बीता और अपने इस कर्तव्य को उन्होंने एक साधना माना, इसलिए वो आम जन में गुरुजी के नाम से प्रसिद्ध हुए। लक्ष्मण प्रसाद दुबे का जन्म 9 जून सन 1909 को दुर्ग जिले में हुआ था। ये वो समय था जब देश में राष्ट्रवाद की लहरें हिलोरें ले रही थीं। सन 1905 में बंग भंग आंदोलन की आंच से पूरा देश सुलग रहा था। ऐसे वातावरण में लक्ष्मण प्रसाद दुबे का बचपन बीत रहा था। उनकी आरंभिक शिक्षा स्थानीय स्तर पर ही आरंभ हुई और शिक्षा के साथ साथ वो समाज की विषमताओं को भी देख रहे थे। शोषण और पराधीनता के प्रभाव से वो अत्यंत आहत हो जाया करते थे। विद्यार्थी जीवन से ही उनके भीतर अध्ययन के साथ साथ सामाजिक सरोकारों के प्रति गहरी रुचि थी। यही कारण है कि वो केवल पुस्तकीय ज्ञान तक ही सीमित नहीं रहे, बल्कि समाज और राष्ट्र की परिस्थितियों को समझने का प्रयास करते रहे। फिर वो समय आया कि जब देश में महात्मा गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन नई दिशा प्राप्त कर रहा था। स्वदेशी और सत्याग्रह के विचार लोगों को आकर्षित कर रहे थे। लक्ष्मण प्रसाद दुबे भी इस राष्ट्रीय चेतना से अछूते नहीं रहे। उनके मन में देश की स्वतंत्रता और समाज के उत्थान का भाव निरंतर प्रबल होता गया।

अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद वो शिक्षक के पद पर नियुक्त हुए। वो अध्यापन का कार्य तो करते ही थे, इसके साथ ही उन्होंने अनेक युवाओं को राष्ट्र सेवा हेतु प्रेरित किया। भिलाई में शिक्षक के रूप में कार्य करते हुए उनका संपर्क जिले के वरिष्ठ सत्याग्रही नरसिंह प्रसाद अग्रवाल से हुआ। अग्रवाल जी के मार्गदर्शन में उन्होंने मद्य निषेध आंदोलन चलाया, स्वदेशी का संकल्प लिया तथा विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया। विदेशी वस्तुओं के साथ साथ उन्होंने जॉर्ज पंचम का चित्र भी जलाया। 1930 का दशक भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का अत्यंत महत्वपूर्ण समय था, जब गांधी जी ने नमक सत्याग्रह आरंभ किया। इसी समय लक्ष्मण प्रसाद दुबे सक्रिय राजनीति में शामिल हुए। वो अब राष्ट्रीय आंदोलन की गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेने लगे। वो जनसंपर्क, संगठन निर्माण के साथ ही लोगों के भीतर राष्ट्रीय चेतना जगाने का काम करने लगे। उनका व्यक्तित्व अत्यंत शांत, सरल और कर्मठ था। वो मानते थे कि स्वतंत्रता केवल राजनीतिक परिवर्तन नहीं

बल्कि समाज में जागृति और आत्मसम्मान का संचार भी है। यही कारण है कि वो शिक्षा पर अत्यधिक बल देते थे। वो विशेष रूप से नारी शिक्षा और नारी स्वतंत्रता के प्रबल पक्षधर थे। सन 1930 में जब गांधी जी ने नमक सत्याग्रह के लिए दांडी यात्रा आरंभ की, तब इस आंदोलन का प्रभाव छत्तीसगढ़ में भी व्यापक रूप से हुआ। सन 1930 में जब महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह के लिए दांडी यात्रा आरंभ की, तब इस आंदोलन का प्रभाव छत्तीसगढ़ में भी व्यापक रूप से हुआ। चूंकि यहाँ कोई समुद्र तट नहीं था, इसलिए सविनय अवज्ञा की भावना से जुड़ते हुए ब्रिटिश शासन के अन्य दमनकारी कानूनों को चुनौती दी गई। मध्य प्रांत में जंगल सत्याग्रह आंदोलन का प्रमुख रूप बन गया। वन क्षेत्रों में रहने वाले किसानों, जनजातीय समाज के लोगों और ग्रामीणों पर अंग्रेजों ने जंगलों में चराई, लकड़ी, घास और वन उपज लेने पर अनेक प्रतिबंध लगा रखे थे। इसलिए सत्याग्रहियों ने इन कानूनों का उल्लंघन करने का निर्णय लिया। छत्तीसगढ़ का पोड़ी जंगल सत्याग्रह 1930 के जंगल सत्याग्रहों में एक महत्वपूर्ण कड़ी था। छत्तीसगढ़ में ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ब्रिटिश वन कानूनों के विरोध में किया गया था। धमतरी के पास स्थित बालोद के ग्राम पोड़ी में हुए जंगल सत्याग्रह का आरंभ जुलाई 1930 में हुआ, जिसका नेतृत्व मुख्य रूप से नरसिंह प्रसाद अग्रवाल ने किया। लक्ष्मण प्रसाद दुबे चूंकि उन्हीं के मार्गदर्शन में काम कर रहे थे, इसलिए जाहिर तौर पर वो इसमें सघन रूप से सक्रिय हुए। सत्याग्रहियों ने आरक्षित वन क्षेत्र में प्रवेश किया, घास और लकड़ी एकत्र की, पशुओं को प्रतिबंधित क्षेत्रों में चराया, इस तरह वन कानूनों का सार्वजनिक रूप से उल्लंघन किया। पोड़ी सत्याग्रह की पूरी रूपरेखा तथा दस्तावेजी काम अग्रवाल जी ने लक्ष्मण प्रसाद दुबे को सौंप दिया था। सत्याग्रह से संबंधित महत्वपूर्ण दस्तावेजों को उन्होंने गुप्त रूप से संरक्षित रखा और उसका पूरा लेखा जोखा एक रजिस्टर में दर्ज कर उसे संकलित किया। सत्याग्रह की इन सभाओं में महिलाएं भी आती थीं, जो चरखा लेकर आंदोलन का प्रतिनिधित्व करती थीं।

लक्ष्मण प्रसाद दुबे ने राष्ट्रीय चेतना के प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। वो लोगों के बीच जाकर उन्हें देश की स्थिति से अवगत कराते, स्वाधीनता आंदोलन के उद्देश्य को समझाते और राष्ट्रहित में लोगों को संगठित होने का संदेश देते। उनका मानना था कि स्वतंत्रता का संघर्ष केवल नेताओं का नहीं बल्कि जन सामान्य का संघर्ष है। सन 1942 में जब गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया, तब पूरा देश नई ऊर्जा से भर उठा और एक निर्णायक लड़ाई आरंभ हुई। इस समय भी लक्ष्मण प्रसाद दुबे छत्तीसगढ़ में सक्रिय थे। वो स्वाधीनता आंदोलन और जंगल सत्याग्रह में पूरी तरह से जुटे हुए थे। उनकी गतिविधियों पर अंग्रेजी शासन की नज़र रहने लगी, लेकिन नरसिंह प्रसाद अग्रवाल की गिरफ्तारी के बाद भी वो रुके नहीं, वो आंदोलन को हवा देते रहे। परिणाम स्वरूप लक्ष्मण प्रसाद दुबे को गिरफ्तार करने का आदेश जारी हुआ। उन्होंने नौकरी से त्यागपत्र दिया और भूमिगत हो गए और वन्य क्षेत्र में स्वतंत्रता आंदोलन की लौ जलाते रहे। सन 1942 से 1947 तक वो दुर्ग, रायपुर और आसपास के क्षेत्रों में सक्रिय रहे। 15 अगस्त सन 1947 को भारत आज़ाद हुआ, लेकिन आज़ादी के बाद भी वो चुप नहीं बैठे। वो लगातार समाज सेवा के मार्ग पर चलते रहे। उनके लिए स्वाधीनता का अर्थ केवल अंग्रेजी शासन से मुक्ति नहीं था, वो एक ऐसे समाज का निर्माण करना चाहते थे जहां शिक्षा, जागरूकता और मानवीय मूल्यों का विकास हो। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान ही उन्होंने शिक्षा के महत्व को बहुत गहराई से समझ लिया था। वो अक्सर कहा करते थे कि किसी भी राष्ट्र का वास्तविक विकास शिक्षित और जागरूक नागरिकों के माध्यम से ही संभव है। यही कारण है कि स्वतंत्रता के बाद उन्होंने किसी भी पद का लालच नहीं किया। आज़ादी के बाद उनका पूरा ध्यान सामाजिक जागरण और शिक्षा पर ही केंद्रित रहा। लक्ष्मण प्रसाद दुबे ने ग्रामीण अंचलों में शिक्षा के प्रसार और विद्यालयों की स्थापना की भावना को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वो मात्र एक स्वाधीनता संग्राम सेनानी नहीं थे, बल्कि वो ग्रामीण शिक्षा जागरण के अग्रदूत भी थे। गुरुजी के रूप में उन्होंने गांव-गांव में शिक्षा की अलख जगाई, अनेक युवाओं को अध्यापन कार्य से जोड़ा और ग्रामीण अंचलों में विद्यालयीन शिक्षा के विस्तार की दिशा में मजबूत नींव रखने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। भारत की आज़ादी, भारत का उत्थान, भारत की विजय ही उनके जीवन का अनंतिम लक्ष्य था। निस्वार्थ भाव से आजीवन देश और समाज की सेवा करते हुए उन्होंने 23 जुलाई सन 1993 को अंतिम सांस ली। नमन ऐसे महान राष्ट्र सेवी को।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्था।

संस्थान संचालनालय, संस्कृति विभाग, मध्य प्रदेश की। और दोस्तों, अब बारी है आज के सवाल की। हमारा सवाल है कि कार्यक्रम किस क्रांतिकारी पर केंद्रित था। सवाल एक बार फिर सुन लें, कार्यक्रम किस क्रांतिकारी पर केंद्रित था। आपके जवाब 10 दिनों के भीतर हमारे पास पहुंच जाने चाहिए। जवाब भेजने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस है watankaraag@gmail.com और radioazadhind@gmail.com। सही जवाब के साथ आप अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना ईमेल एड्रेस अवश्य लिखें।

0: अभी आप सुन रहे थे स्वराज संस्थान संचालनालय भोपाल का प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग। यह आकाशवाणी भोपाल है।
1: न सनसनी, न सनसनी, न सनसनी, न उत्तेजना, न उत्तेजना, न शोर दिन रात, न शोर दिन रात, न शोर दिन रात, न ही अहंकार, केवल मनोरंजन, ज्ञानवर्धन और सच्चे समाचार। जी हाँ, यही बिखेरता है आपके जीवन में आकाशवाणी परिवार।
0: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताते हैं
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: श्रोताओं, आपको बता दें कि आज है संगीतकार दान सिंह की पुण्यतिथि। उन्हीं को याद करते हुए आज की फनकार कार्यक्रम उन्हीं पर केंद्रित रहेगा। प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। इस कार्यक्रम को पुनः आप रात को 9:30 पर सुन सकते हैं और अब से कुछ ही देर बाद यानी सुबह की 9:30 पर यह कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। केंद्रित रहेगा संगीतकार दान सिंह पर। और आइए अब आपको सुनवाते हैं अगला गीत, कुछ ना कहो। इस फिल्म से उदित नारायण, कविता कृष्णमूर्ति की आवाजों में, जावेद अख्तर के बोल हैं, शंकर एहसान लॉय का संगीत।

0: खुशखबरी
1: कहिए ना,
0: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर।
2: शुक्रिया, शुक्रिया।
0: रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।
3: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
4: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।
5: वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।

इस ब्रेक के बाद आप सभी का कार्यक्रम चित्रलोक में स्वागत है। श्रोताओं, आपको बता दें, आज है सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे, यानी सेलिब्रेटिंग फूड हेरिटेज 2026 की थीम है इस डे के लिए। ये हर साल 18 जून को मनाया जाता है। भोजन विरासत का जश्न है इसका अर्थ है। इसका उद्देश्य पारंपरिक खाद्य ज्ञान, स्थानीय सामग्री और पर्यावरण अनुकूल खान पान को बढ़ावा देना है। सतत खान पान का मतलब है ऐसा भोजन चुनना जो हमारी सेहत के लिए अच्छा हो और पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाए। इसमें यह ध्यान रखा जाता है कि भोजन कहाँ और कैसे उगाया जाता है तथा हमारी थाली तक कैसे पहुँचता है। इसका महत्व

ऐसा है कि हमें ध्यान देना होगा प्राकृतिक संसाधनों जैसे पानी और ऊर्जा की बचत की, और स्थानीय किसानों को समर्थन देना यानी कि उन्हीं से मौसमी सब्जियां और फल खरीदना। भोजन की बर्बादी में कमी हो ये भी हमारी जिम्मेदारी है। पारंपरिक और क्षेत्रीय खाद्य संस्कृति का संरक्षण ये भी तो हमारा कर्तव्य है। वैसे क्या करना चाहिए? स्थानीय और मौसमी फल सब्जियां ही खाना चाहिए और उन्हें किसानों से ही खरीदना चाहिए। भोजन की बर्बादी को बिल्कुल ना करें। दालें, बीन्स और हरी सब्जियां अधिक खाएं। जैविक कचरे से खाद यानी कंपोस्ट बनाएं। प्लास्टिक की जगह कपड़े के थैले इस्तेमाल करें। इस दिवस का संदेश है कि छोटे छोटे टिकाऊ खाद्य विकल्प अपनाकर हम स्वस्थ जीवन और सुरक्षित पर्यावरण में योगदान दे सकें। और सुनिए ये गीत जावेद अली और सुनिधि चौहान की आवाज में, दावते इश्क फिल्म से। कौसर मुनीर के शब्द, साजिद वाजिद का संगीत।

0: है ये जिसने दोबारा मुड़ के मुझे नहीं देखा? Who is he?
1: कभी खुशी कभी गम इस फिल्म का गीत अलका याग्निक, सोनू निगम और करीना कपूर की आवाजों में समीर का लिखा गीत है। धुन बनाई है संदेश सांडिल्य ने।

एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी, नजरें झुका के शर्मा के गलियों से गुजरती थी, चोरी चोरी चुपके चुपके चिट्ठियां लिखा करती थी। कुछ कहना था शायद उसको, जाने किससे डरती थी। जब भी मिलती थी मुझसे, मुझसे पूछा करती थी, प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है, और मैं सिर्फ यही कह पाता था।

फिल्म मोहब्बते से ये गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर, उद्भव और कुछ साथी कलाकारों की आवाज़ों में, जिसमें शाहरुख खान, उदित नारायण, मनोहर शेट्टी, प्रथा मजूमदार और साथियों के स्वर थे, आनंद बख्शी के बोल, जतिन ललित का संगीत। और इसी गीत के साथ कार्यक्रम चित्रलोक अब यहीं संपन्न होता है। दीजिए आज्ञा आपकी रेडियो दोस्त पूजा नारायणिया को, नमस्कार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कमाल साहब कहने के खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार खयाम।
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया, सजेशन आई कि साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको, सुना, आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो, आई जंजीर की झनकार खुदा खैर करे। तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

फिल्म संगीत संसार में कई ऐसे संगीतकार हुए हैं जिन्होंने बहुत सारी फिल्में नहीं की, लेकिन जो फिल्में की उनके जरिए फिल्मी गीतों की दुनिया में अपनी गहरी और बुलंद पहचान बनाई है। ऐसे कम चर्चित संगीतकारों की एक लंबी फहरिस्त है। इनका काम अपनी क्वालिटी की वजह से ज्यादा जाना जाता है, क्वांटिटी की वजह से नहीं। और ऐसे ही संगीतकारों की फहरिस्त में नाम आता है फिल्म जगत के नामी संगीतकार दानस।

दान सिंह का जन्म जयपुर में सन 1927 में हुआ था। कहते ये हैं कि उनके पिता एक अध्यापक थे और ख्याल गायकी में भी अपना दखल रखते थे। जाहिर है कि संगीत दान सिंह के खून में था। उन्हें खेमचंद प्रकाश के रूप में संगीत के अपने गुरु मिल गए और हुआ ये कि खेमचंद प्रकाश के साथ उन्होंने संगीत सीखना शुरू किया। तकरीबन 1.5 बरस बीत गया। दान सिंह खेमचंद प्रकाश के पास रियाज करते चले जाते और खेमचंद प्रकाश सिर्फ और सिर्फ राग भैरवी की प्रैक्टिस करने को उनको कहते। हुआ ये कि एक बार वो परेशान हो गए। उन्होंने कहा कि ये क्या मामला है कि आप लगातार मुझे एक ही राग की प्रैक्टिस करवाते चले जा रहे हैं। तब खेमचंद प्रकाश ने ये कहा था कि संगीत की ये साधना बहुत लंबी खिंचती है। उन्होंने अपने एक शिष्य की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इस व्यक्ति ने भैरवी सीखनी शुरू की तो अब 8 साल हो गए हैं और वो लगातार सीखते चले जा रहे हैं। खेमचंद प्रकाश को पता था कि दान सिंह की प्रतिभा

आपको ये जानकर हैरत हो सकती है कि डांसिंग ने अपना करियर संगीत की दुनिया में आकाशवाणी जयपुर से शुरू किया था। बाद में जब उन्हें ये लगने लगा कि उन्हें ऊंचे आकाश की जरूरत है, अपने आयाम फैलाने की जरूरत है, तो वो मुंबई आ गए थे। थोड़े दिन तक वो खेमचंद प्रकाश के सहायक भी रहे और उन्हें इस समय में कुछ फिल्मों के ऑफर भी मिले, जैसे रेत की गंगा नाम की एक फिल्म उन्हें ऑफर की गई। ये अलग बात है कि ये फिल्म बन नहीं पाई। सन 1965 में डांसिंग को जेपी शर्मा की फिल्म मिली भूल न जाना। गोरा गोरा

0: आया है।
1: यहाँ आपको बता दें कि असल में B.N. शर्मा जिन्होंने भूल न जाना का निर्माण किया था, वो फ्लैट में डांसिंग के साथ ही रहा करते थे। दिलचस्प बात यह है कि फिल्म भूल न जाना भारत और चीन युद्ध पर बनी थी। डांसिंग ने बड़े मन से इस फिल्म के गाने तैयार किए थे और बहुत ही कमाल का संगीत था फिल्म भूल न जाना का।

फिल्म भूल न जाना, ये फिल्म रिलीज नहीं हो पाई, इसलिए दान सिंह की उड़ान को वो आकाश नहीं मिल पाया जिसके दान सिंह हकदार थे। पर इस फिल्म के गाने की रिकॉर्डिंग से जुड़ी एक घटना आपको बताते हैं। सन 1964, मुंबई में ताड़देव का एक स्टूडियो, गीता दत्त दान सिंह का एक गाना गा रही हैं। ये वो समय है जब गीता दत्त की जिंदगी में, उनकी निजी जिंदगी में तूफान आया हुआ है, रिश्तों में दरार आ रही है, और गीता दत्त ये गाना गा रही है।

लाइनें गाते गाते अचानक गीता दत्त की रुलाई फूट पड़ती है। रिकॉर्डिंग के बीच में वो सुबकने लगती हैं। एकदम स्टूडियो के माहौल तनाव से भर जाता है। दरअसल डांसिंग का ये गीत गीता दत्त के दिल पर बहुत भारी पड़ा है। जरा सोचिए, इतना गहरा था डांसिंग के संगीत का असर। भूल ना जाना के अलावा डांसिंग ने फिल्म माय लव में संगीत दिया। शर्मिला टैगोर और शशि कपूर के अभिनय वाली ये फिल्म असल में डांसिंग के गानों के लिए ही याद की जाती है। बहुत कम लोग जानते हैं कि इस फिल्म में डांसिंग के सहायक के रूप में लक्ष्मीकांत ने मैंडोलिन और प्यारे लाल ने वायलिन बजाई। पंडित शिव कुमार शर्मा ने संतूर बजाया इस फिल्म के गानों में और पंडित हरि प्रसाद चौरसिया ने बांसुरी बजाई। यही नहीं, मनोहरी सिंह का सैक्सोफोन भी फिल्म माय लव के गानों की शान है। जरा सोचिए, इतने बड़े नाम जुड़े थे इन गानों की रिकॉर्डिंग में। आगे चलकर शिव हरि की जोड़ी फिल्म संगीत के संगीतकारों की सरताज तो बनी ही। पंडित शिव कुमार शर्मा और पंडित हरि प्रसाद चौरसिया ने संतूर और बांसुरी की स्वर लहरियों को आकाश की ऊंचाइयों तक पहुंचाया, देश और दुनिया में नाम कमाया। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी तो हिट फिल्में देने वाली एक बेमिसाल संगीतकार जोड़ी बनी। और सैक्सोफोन के सरताज मनोहारी सिंह को भला कौन नहीं जानता। फिल्म माय लव के गानों की बात चल रही है, तो चलिए अब ये गाना सुनते हैं।

जैसा कि हमने कहा कि डांसिंग फिल्म संगीत की दुनिया में जब बहुत ज्यादा नाम नहीं कमा पाए तो वो रेडियो से जुड़ गए थे। युवावस्था में उन्होंने सुमित्रा नंदन पंत की कविता को संगीतबद्ध किया था और मशहूर कवि सुमित्रा नंदन पंत ने उन्हें गले लगा लिया था। डांसिंग बहुत ही गुणी संगीतकार थे, पर उन्होंने केवल 4 फिल्मों में संगीत दिया, माई लव, तूफान, बवंडर और भोभर। कुछ ऐसे संगीतकार होते हैं जिनको उनका हक नहीं मिल पाता। हम संगीत के प्रेमी बस इसी विकलता में रह जाते हैं कि आखिर ऐसी प्रतिभाओं को और मौके क्यों नहीं मिले, ताकि हमें मिल सकते थे कुछ और बेमिसाल गाने। फिल्म भूल न जाना का मुकेश का गाया ये गाना सुनिए और दान सिंह की प्रतिभा की बानगी देखिए।

अफसोस, 18 जून 2018 को 78 बरस की उम्र में दानसिंह ने इस फानी दुनिया को अलविदा कह दिया। रह गए तो बस उनकी कहानी और उनकी याद।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था बेमिसाल संगीतकार दान सिंह पर। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान, प्रस्तुति रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: एक जानी मानी पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
1: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
0: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
1: मैंने ये सूचना
2: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है सतना जिले की चिट्ठी। आलेख लाल बहादुर तिवारी, वाचन स्वर शरद बाघेला। सतना जिले में भी इन दिनों प्री मानसून गतिविधियों का दौर है। तेज हवा के साथ कहीं कहीं बारिश होने से तापमान में कमी आई है। जिले में अतिवर्षा और बाढ़ आपदा स्थिति में आवश्यक सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है, जिसका दूरभाष क्रमांक 07672223211 यानी 07672223211 है। कंट्रोल रूम के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। कंट्रोल रूम के लिए प्रभारी अधिकारी राहत शाखा और डिप्टी कलेक्टर लक्ष्य राम जांगड़े को बनाया गया है, जिनका नंबर 9993754244 यानी 999-3754244 है। सतना जिले में खरीफ फसलों की बोनी की तैयारी को ध्यान में रखते हुए जिले में उर्वरकों का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। उप संचालक किसान कल्याण कृषि ने बताया कि वर्तमान में सतना और मैहर जिलों में यूरिया, डीएपी, एनपीके और एसएसपी सहित विभिन्न उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने गत माह स्थानीय टाउन हॉल में आयोजित आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं के स्वर्ण जयंती समारोह को संबोधित किया। कार्यक्रम में सांसद गणेश सिंह उपस्थित रहे। विगत दिनों प्रदेश की पंचायत एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री और मैहर जिले की प्रभारी मंत्री राधा सिंह ने मैहर जिला मुख्यालय में कलेक्ट्रेट भवन के पास 10 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली नवीन जिला पंचायत के भवन निर्माण का भूमि पूजन किया। प्रभारी मंत्री ने कहा कि जिला पंचायत भवन को समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण निर्माण के साथ तैयार किया जाए। प्रदेश की नगरीय विकास एवं आवास राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी के रेगांव विधानसभा क्षेत्र में 11 से 15 जून तक सघन भ्रमण एवं जनसंवाद कार्यक्रम संपन्न हुआ। रेगांव मंडल के प्रवास के दौरान राज्य मंत्री ने जनसंपर्क, जनसुनवाई और विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए क्षेत्रवासियों को 213 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों की सौगातें दी। कार्यक्रम के तहत उन्होंने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संकल्प भी दिलाया। उन्होंने ग्रामीणों से अधिक वृक्षारोपण करने और पर्यावरण संरक्षण में सक्रिय भागीदारी

निभाने का आह्वान किया। जिले के जवाहर नगर स्थित दादा सुखेंद्र सिंह स्टेडियम में स्विमिंग पूल सहित शेष बचे निर्माण कार्यों का शुभारंभ सांसद गणेश सिंह ने किया। उन्होंने कहा कि ये स्विमिंग पूल युवाओं में तैराकी के प्रति रुचि बढ़ाने और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता विकसित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। सतना और मैहर जिले में 12 से 18 जून तक नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 3 दिवसीय जन कल्याण शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। शिविर में क्षेत्रीय नागरिकों की समस्याओं के निराकरण और विभिन्न शासकीय योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए व्यापक व्यवस्थाएं की गई हैं। सतना जिले में वर्षा ऋतु में मछलियों के प्रजनन एवं संरक्षण को ध्यान में रखते हुए जिले के सभी जल संसाधनों में 16 जून से 15 अगस्त तक क्लोज सीजन घोषित किया गया है। इस अवधि के दौरान सभी प्रकार की मछली पकड़ना पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। सतना जिले में मौसमी बीमारियों से पीड़ित मरीजों को सभी स्वास्थ्य केंद्रों और जिला अस्पताल में निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। समय समय पर टीकाकरण कराए जा रहे हैं। सतना और मैहर जिले में किसानों के कल्याण के लिए कृषि और संबंधित विभाग के माध्यम से व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें खरीफ सीजन को ध्यान में रखते हुए 10 दिवसीय कृषि रथ का शुभारंभ किया गया। ये कृषि रथ जिले के प्रत्येक विकास खंड के अंतर्गत निर्धारित सभी ग्राम पंचायतों में पहुंचकर किसानों को महत्वपूर्ण जानकारियां दे रहा है। सतना जिले में जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत जिला प्रशासन के मार्गदर्शन में जल संरक्षण और जल स्रोतों के पुनर्जीवन के लिए व्यापक स्तर पर गतिविधियां आयोजित की गई। इसी तारतम्य में शहर के प्रसिद्ध जगत देव तालाब में जिला पंचायत और मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने तालाब सफाई के लिए संकल्प लेकर सफाई कार्य शुरू किया। सतना जिले के मझगवां विकासखंड अंतर्गत नकेला में क्षेत्रीय सह सुविधा केंद्र और कृषि विज्ञान केंद्र मझगवां के संयुक्त तत्वावधान में किसानों को औषधि पौधों की उन्नत खेती प्रसंस्करण और उपयोग विषय पर 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की गई। और सतना जिले में 28 से 30 जून तक पल्स पोलियो अभियान चलाया जाएगा, जिसमें घर घर जाकर स्वास्थ्य विभाग की टीम बच्चों को दवा पिलाएगी। सतना जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

0: अभी आप सुन रहे थे सतना जिले की चिट्ठी। ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है।
1: हम आकाशवाणी के छिंदवाड़ा केंद्र से बोल रहे हैं, FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर। लीजिए, पेश खिदमत है सुगम संगीत। सुगम संगीत की पहली पेशकश में आपको सुनवाते हैं भूपिंदर और मिताली की आवाज़ों में ये दिलकश गज़ल।

ये थे भूपिंदर और मिताली, कलाम था कतील शिफाई का। सुगम संगीत में आइए अब आपको सुनवाते हैं मोहम्मद हुसैन अहमद हुसैन की आवाज़ों में ये गज़ल।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी छिंदवाड़ा, और इस वक्त आनंद ले रहे हैं सुगम संगीत का। सुगम संगीत की अगली पेशकश में आपको सुनवाते हैं अजीम काजमी की लिखी गज़ल, अनुराधा पौडवाल और चंदन दास की आवाज़ों में।

सुगम संगीत की आखिरी पेशकश में सुनिए मेहंदी हसन की आवाज़ में ये गज़ल, कलाम खुर्शीद हिल्लोरी का है।

मेहंदी हसन की गाई इसी गज़ल के साथ ही सुगम संगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के छिंदवाड़ा केंद्र से। लीजिए अब प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम NCERT।

0: कलाकार। आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुंदर विचार, जिसे हमें भेजा है आर्यनगर गोका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी ने।
1: इन्होंने बहुत सुंदर लिखा है, हर ठोकर इंसान को गिरने से नहीं लगती, कुछ ठोकर सुधरने, संभलने और सीखने से भी लगती हैं।
0: बहुत सुंदर विचार भेजा है आप लोगों ने, हमारा आभार कीजिए स्वीकार। अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी का। लिखा है,
2: सर अजीत जी, अंतर्गत लेफ्टिनेंट कर्नल अर्धवीर बुरजोड़जी तारापुर जी के व्यक्तित्व पर केंद्रित कार्यक्रम भी सुना। कार्यक्रम की जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है। ये कार्यक्रम सुनवाने के लिए आपका हृदय से आभार प्रकट करते हैं।
0: नासिक महाराष्ट्र से प्रशांत पाटिल जी का संदेश आया है,
2: मणिपुरी मिलोदास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतिम बाई मानिकपुरी।
0: करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी का,
2: पप्पी अटल रेडियो श्रोता संघ सांकरा।
0: आज जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से नारायण लाल साहू, कुलवंतीन देवी साहू, देवेंद्र प्रताप साहू, नेहा देवी साहू, मिलिंद कुमार साहू, प्रणय कुमार साहू और रुद्रांश

0: प्रताप साहू।
1: आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए।
0: आप सभी श्रोताओं का स्वागत है एक बार फिर से हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी ज्ञान श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। तो श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, इस सप्ताह हमारी चर्चा चल रही है कुछ विशेष झीलों पर। तो अब तक हमने बातचीत की लोकटक और मानसरोवर झील के बारे में, तो आइए जानते हैं आज हम किस खास झील के बारे में बातचीत करने जा रहे हैं। श्रोता, वो झील है चिल्का झील। बता दें कि ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। वैसे तकनीकी रूप से ये एक लगून है। तो आइए पहले जान लिया जाए कि लगून किसे कहते हैं। जी श्रोताओ, लगून समुद्र या महासागर के किनारे एक उथले जलाशय को कहते हैं, जो समुद्र की रेत, कोरल चट्टानों या बड़े बड़े रेतीले टीलों के कारण समुद्र से अलग दिखाई पड़ता है। यानी जब कोई प्राकृतिक अवरोध आंशिक रूप से किसी बड़े जलाशय को समुद्र से अलग करता है, तो उसे हम लगून कहेंगे। विशेष बात यह है कि लगून सामान्यतः उथला होता है। यह समुद्र से भी जुड़ा होता है, लेकिन पूरी तरह से खुला नहीं होता। तो आपको बता दें कि भारत में दो लगून हैं, चिल्का झील लगून और लक्षद्वीप लगून। एक और विशेष बात श्रोताओं, समुद्र से जुड़ा होने के कारण चिल्का झील का पानी थोड़ा खारा और थोड़ा मीठा है। लेकिन एक प्रश्न उठता है कि थोड़ा खारा और थोड़ा मीठा क्यों? तो ऐसा इसलिए कि लगून में मीठे जल वाली नदियां भी गिरती हैं, जिसके कारण यहाँ का पानी थोड़ा मीठा और थोड़ा खारा हो सकता है। चिल्का झील इसका सुंदर उदाहरण है। तो आइए अब जान लें कि चिल्का झील है कहाँ। तो आपको बता दें कि ये ओडिशा के पुरी, खुर्दा और गंजाम जिलों में फैली हुई है। यहाँ लगभग 52 नदी नालों का मीठा पानी और बंगाल की खाड़ी का खारा पानी दोनों आते हैं। एक और रोचक बात आपके साथ साझा करना चाहूंगा श्रोताओं, और वो ये है कि यहाँ डॉल्फिन मछलियां भी मिलती हैं, जिन्हें इरावडी डॉल्फिन कहा जाता है। ये प्रजाति मात्र दुनिया में दो जगहों पर ही पाई जाती है। इन्हें पानी में उछलते कूदते जल क्रीड़ा करते बड़ी आसानी से देखा जा सकता है। हाँ, स्वभाव से ये डॉल्फिन शर्मीली होती हैं। एक और तथ्य आपके साथ साझा करना चाहता हूं, और वो ये है कि सर्दियों के मौसम में चिल्का झील में बहुत सारे प्रवासी पक्षी भी आते हैं। आप पूछेंगे कि ये कहां से आते हैं, तो आपको बताए देते हैं। ये प्रवासी पक्षी साइबेरिया, चीन, मंगोलिया और रूस जैसे देशों से आते हैं। जरा सोचिए श्रोताओ, हजारों किलोमीटर की दूरी तय करके इन पक्षियों का चिल्का झील में आना कितना अनूठा है। इसी बात पर एक जानकारी और आपके साथ हम साझा करना चाहते हैं, वो ये है कि यहाँ आने वाले पक्षियों की संख्या लाखों में बताई जाती है, जो करीब 225 से भी अधिक प्रजातियों के हैं। चिल्का झील का नलबन द्वीप जाना माना पक्षी विहार या अभयारण्य माना जाता है। बहुत से सैलानी यहाँ मात्र पक्षियों को देखने के लिए ही आते हैं। ये ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर से लगभग 55 किलोमीटर की दूरी पर है। इसे सन 1987 में पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया था। जहाँ तक मछलियों की बात है, यहाँ मछलियों की 200 से भी ज्यादा प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जो मिश्रित मीठे पानी और खारे पानी में रह सकती हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ लाल केकड़े, मछली पकड़ने वाली बिल्लियाँ भी पाई जाती हैं, जिन्हें फिशिंग कैट कहा जाता है। श्रोताओ, चिल्का झील में बोट राइड या नौकायन का अलग ही मजा है। यहाँ का सबसे यादगार अनुभव है सूर्योदय और सूर्यास्त की बेला में सूर्य और झील का नजारा, पक्षियों का मधुर कलरव और जल में मछलियों को उछलते कूदते हुए देखना। इतिहास बताता है कि प्राचीन काल में चिल्का झील से समुद्री व्यापार भी होता था, क्योंकि यह बंगाल की खाड़ी से जुड़ी हुई है। बंगाल की खाड़ी को ओडिशा में कलिंग सागर भी कहते थे। श्रोताओं, चिल्का झील से प्राचीन कलिंग के व्यापारी और नाविक सिंहल द्वीप यानी श्रीलंका, इंडोनेशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के कई देशों से आते थे। श्रोताओं, क्या आपने बोइता बंदाना के बारे में कुछ सुना है? ना बड़ा दिलचस्प नाम। तो आपको बता दूं कि बोइता बंदाना का अर्थ है नावों की पूजा। बोइता यानी नाव और बंदाना यानी पूजा। इस उत्सव में जहाजों या बड़ी बड़ी नावों की पूजा होती थी। ये एक पारंपरिक त्योहार है जो ओडिशा की समुद्री संस्कृति की विरासत है। इसे जनजातीय या आदिवासी भाषा में डांगा भाषा भी कहते हैं। ये कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। सन 2025 में ये 5 नवंबर को मनाया गया था। इस त्योहार में एक लोकप्रिय गीत या मंत्र पढ़ा जाता है। मंत्र है आ का मा बोई। आपको बता दूं कि ये नाविकों की सुरक्षित वापसी के लिए प्रार्थना गीत है। तो श्रोताओ, चिल्का झील न सिर्फ जैव विविधता का खजाना है, लेकिन हजारों लोगों की जीविका का साधन और कलिंग की समुद्री विरासत की गवाह भी। ये सचमुच भारत की एक

0: अनूठी झील है। तो ये थी श्रोताओं हमारी आज की जानकारी विश्व विख्यात चिल्का झील के बारे में। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। तो प्रश्न है, चिल्का झील में आने वाले प्रवासी पक्षी मुख्य रूप से किन किन देशों से आते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, चिल्का झील में आने वाले प्रवासी पक्षी मुख्य रूप से किन किन देशों से आते हैं? आप अपना संदेश हमारे ईमेल पर भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। और हाँ, हमारा IVRS नंबर भी नोट कर लें। हमारा IVRS नंबर है 8800440559। आप हमें यानी CIET NCERT को इंस्टा, फेसबुक, एक्स और LinkedIn पर भी फॉलो कर सकते हैं। इससे आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों की लगातार जानकारी मिलती रहेगी। तो अब बारी है श्रोताओं आज के शैक्षिक कार्यक्रम की। तो आज का हमारा पहला कार्यक्रम है चिड़िया की बच्ची।
1: इस कार्यक्रम के द्वारा एक चिड़िया की बच्ची के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार वो अपनी माँ की प्रतीक्षा करती है और अपने घोंसले में आनंद से गीत गाते हुए अन्य पक्षियों से बातें भी करती है।
2: माधव दास ने अपने संगमरमर की नई कोठी बनवाई है। उसके सामने बहुत सुहावना बगीचा भी लगवाया है। उनको कला से बहुत प्रेम है, धन की कमी नहीं है और कोई गया है। सुंदर अभिरुचि के आदमी है। फूल पौधे रकाबियों मानी उन्हें बहुत अच्छा लगता है। समय भी उनके पास काफी है। शाम को जब दिन की गर्मी ढल जाती है और आसमान कई रंग का हो जाता है, तब कोठी के बाहर चबूतरे पर तख्त डलवाकर मसनद के सहारे वो गलीचे पर बैठते हैं और प्रकृति की छटा निहारते हैं। इनमें मानो उनके मन को तृप्ति मिलती है। मित्र हुए तो उनसे नहीं तो पास रखे हुए ख्याल संध्या को स्वप्न की भांति गुजार देते हैं।

आज कुछ कुछ बादल थे। घटा गहरी नहीं थी। धूप का प्रकाश उनमें से छन छन करा रहा था। माधव दास मसनत के सहारे बैठे थे। पर जी भरकर भी कुछ खाली सा रहता है। उस दिन संध्या समय उनके चिड़िया बहुत सुंदर थी। उसकी गर्दन लाल थी और गुलाबी होते पंख ऊपर से चमकदार स्याह थे। उसका नन्हा सा सिर तो बहुत प्यारा लगता था और शरीर पर चित्र विचित्र चित्रकारी थी। चिड़िया को मानो माधव दास की सत्ता का कुछ पता नहीं था और मानो तनिक देर का भी कभी पर

0: माधव दास को वो चिड़िया बड़ी, उसकी स्वच्छंदता बड़ी प्यारी जान पड़ती थी। कुछ देर तक वो उस चिड़िया का इस डाल से उस डाल थिरकना देखते रहे। इस समय वो अपना बहुत कुछ भूल गए। उन्होंने उस चिड़िया से कहा,
1: आओ, तुम बड़ी अच्छी आई, ये बगीचे तुम। सुनो चिड़िया, तुम खुशी से ये समझो कि ये बगीचा मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है। तुम बेखटके यहाँ आया करो।
0: चिड़िया पहले तो असावधान रही, फिर जानकर कि बात उससे की जा रही है, वो एकाएक तो घबराई, फिर संकोच को जीतकर बोली,

0: ये
1: कुकी भी मेरी है,
0: लेकिन इस सब को तुम अपना भी समझ सकती हो। सब कुछ तुम्हारा है।
1: तुम कैसी भोली हो,
0: कैसी प्यारी हो। ना जाओ नहीं, बैठो।
1: मेरा मन तुमसे बहुत खुश होता है।
2: चिड़िया बहुत कुछ सकुचा गई। उसे बोध हुआ कि ये उससे गलती तो नहीं हुई कि वो यहाँ बैठ गई है। उसका थिरकना रुक गया। भयभीत सी वो बोली,
3: मैं थक कर यहाँ बैठ गई थी। मैं अभी चली। बगीचा आपका है, मुझे माफ करें।
1: मेरी भोली चिड़िया,
0: तुम्हें देखकर मेरा चित्त प्रफुल्लित हुआ है। मेरा महल भी सूना है, वहां कोई भी चहचहाता नहीं है। तुम्हें देखकर मेरी रागनियों का जी बहलेगा। तुम कैसी प्यारी हो, यहां ही तुम क्यों ना रहो।

प्यारी चिड़िया, पगली मत बनो। देखो तुम्हारे चारों तरफ कैसी बहार है। देखो वह पानी खेल रहा है, उधर गुलाब हंस रहा है। भीतर महल में चलो, जाने क्या क्या न पाओगी। मेरा दिल वीरान है, वहां कब हंसी सुनने को मिलती है। मेरे पास बहुत सोने का एक बहुत सुंदर घर मैं तुम्हें बना दूंगा। मोती तुम मुझे खुश रखना, और तुम्हें क्या चाहिए है? मां के पास बताओ क्या है।

0: तुम यहाँ ही सुख से रहो मेरी भोली गुड़िया।
1: चिड़िया इन बातों से बहुत डर गई। वो बोली,
2: मैं भटक कर तनिक आराम के लिए इस डाली पर रुक गई थी। अब भूल कर भी ऐसी गलती नहीं होगी। मैं अभी यहाँ से उड़ी जा रही हूँ। तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती हैं। मेरी माँ के घोंसले के बाहर बहुत तेरी सुनहरी धूप बिखरी रहती है। मुझे और क्या करना है? दो दाने माँ ला देती है और जब मैं पर खोलने बाहर जाती हूँ तो माँ मेरी बाट देखती रहती है। मुझे तुम और कुछ मत समझो, मैं अपनी माँ की हूँ।
0: बोली चिड़िया, तुम कहाँ रहती हो?

0: दो दाने माँ ला देती है और जब मैं पर खोलने बाहर जाती हूँ तो माँ मेरी बाट देखती रहती है। मुझे तुम और कुछ मत समझो, मैं अपनी माँ की हूँ।
1: बोली चिड़िया, तुम कहाँ रहती हो? तुम मुझे नहीं जानती हो?
0: मैं माँ को जानती हूँ, भाई को जानती हूँ, सूरज को और उसकी धूप को जानती हूँ, घास, पानी और फूलों को जानती हूँ। महामान्य, तुम कौन हो?
1: हा?
0: मैं तुम्हें
1: तुम भूल गई चिड़िया, तुमने मुझे नहीं जाना, तब तुमने कुछ नहीं जाना। मैं मेरे पास क्या नहीं है, जो मांगो मैं वही दे सकता हूँ।
0: पर मेरी तो छोटी सी जात है, आपके पास सब कुछ है, तब मुझे जाने दीजिए।
1: चिड़िया, तू मेरी मुझे खुश करेगी तो तुझे माला माल कर सकता हूँ।
0: तुम सेठ हो, मैं नहीं जानती सेठ क्या होता है, पर सेठ कोई बड़ी बात होती होगी। मैं अनसमझ ठहरी, माँ मुझे बहुत प्यार करती है, वो

0: मालामाल होना चाहिए।
1: अरे चिड़िया, तुझे भी नहीं है? तू सूना नहीं जानती? सूना, उसी की जगत को तृष्णा है। वह सूना मेरे पास ढेर का ढेर है। तेरा घर समूचा सोने का होगा, ऐसा पिंजरा कि कहीं दुनिया में ना होगा, ऐसा कि तू देखती रह जाए। तो उसके भीतर थिरक फुदक कर मुझे खुश करिए, तेरा भाग्य खुल जाएगा। तेरे पानी
0: वो सोना क्या चीज होती है?
1: तू क्या जानेगी? तू चिड़िया जो है, सोने का मूल्य सीखने के लिए तुझे बहुत सीखना है। बस ये जान ले कि सेठ माधव दास तुझसे बात कर रहा है। जिससे मैं बात तक कर लेता हूं उसकी किस्मत खुल जाती है। तू अभी जग का हाल नहीं जानती। मेरी कोठियों पर कोठियां हैं, बगीचों पर बगीचे हैं, दास दासियों की संख्या नहीं है। पर तुझसे मेरा चित्त प्रसन्न हुआ है। ऐसा वरदान कब किसी को मिलता है री चिड़िया? तो इस बात को समझती क्यों नहीं?
0: मैं नादान हूं, मैं कुछ समझती नहीं। पर मुझे देर हो रही है, माँ मेरी बाट देखती होगी।
1: ठहर ठहर ठहर, इस अपने पास के फूल को तूने देखा? ये एक है, ऐसे अनगिनती फूल हैं, ऐसे अनगिनती फूल मेरे बगीचों में हैं। वे भांति भांति के रंग के हैं,

0: तरह तरह की उनकी खुशबू है। चिड़िया, तैने मेरा चित्त प्रसन्न किया है और वे सब फूल तेरे लिए खिला करेंगे। वहां घोंसले में तेरी मां है, पर मां क्या है? इस बहार के सामने तेरी मां क्या है? वहां तेरे घोंसले में कुछ भी तो नहीं है। तू अपने को नहीं देखती? हाँ, कैसी सुंदर तेरी गर्दन, कैसी रंगीन देह। तू अपने मूल्य को क्यों नहीं देखती? मैं तुझे सोने से मढ़कर तेरे मूल्य को चमका दूंगा। तैने मेरे चित्त को प्रसन्न किया है, तू मत जा, यही रह।
1: सेठ, मैं अपने को नहीं जानती, इतना जानती हूं कि मां और मुझे

0: चुप, जाती हो तो जाओ, पर इस बगीचे को अपना ही समझो। तुम बड़ी सुंदर हो।
1: ये कहने के साथ ही सेठ ने एक बटन दबा दिया। उसके दबने से दूर कोठी के अंदर आवाज हुई, जिसे सुनकर एक दास झटपट भागकर बाहर आया। ये सब क्षण भर में हो गया और चिड़िया कुछ भी नहीं समझी। सेठ कहते रहे,
0: तुम अभी माँ के पास जाओ, माँ बाट देखती होगी, पर कल आओगी ना, कल आना, परसों आना, रोज आना।
1: ये कहते कहते दास को सेठ ने इशारा कर दिया और वो चिड़िया को पकड़ने के जतन में चला। सेठ कहते रहे,
0: सच तुम बड़ी सुंदर लगती हो, तुम्हारे भाई बहन हैं? कितने भाई बहन हैं?
2: दो बहन एक भाई, पर मुझे देर हो रही है।
0: हाँ हाँ जाना, अभी तो उजेला है। दो बहन एक भाई है, बड़ी अच्छी बात है।
2: सेठ मुझे देर हो रही है।
0: देर अभी कहाँ, अभी उजेला है मेरी प्यारी चिड़िया। तुम अपने घर का इतने और हाल सुनाओ, भय मत करो।
2: क्या करूं सेठ, मुझे डर लगता है, माँ मेरी दूर है, रात हो जाएगी तो राह नहीं सूझेगी।
3: देखते क्या हो, यही मौका है, पकड़ लो इसे।
4: जी मालिक।
1: इतने में चिड़िया को बोध हुआ कि जैसे एक कठोर स्पर्श उसके देह को छू गया। वो चीख देकर चिचियाई और
0: हाथ से निकल गई।
1: नौकर के फैले हुए पंजे में वो आकर भी नहीं आ सकी। तब वो उड़ती हुई एक सांस में माँ के पास गई और माँ की गोद में गिरकर सुबकने लगी।

0: माँ ने बच्ची को छाती से चिपटा कर पूछा,
1: क्या हुआ बेटा, बता बेटा।
0: पर बच्ची कांप कांप कर माँ की छाती से और चिपक गई, बोली कुछ नहीं, बस सुबकती रही। बड़े देर में उसे ढाढ़स बंधा और तब वो पलक मीच उस छाती में ही चिपक कर सोई, जैसे अब पलक ना खोलेगी।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम चिड़िया की बच्ची। तो श्रोताओं, अब हमारा कार्यक्रम यानी उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार, नमस्कार।
2: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
3: NCERT, अभी आप सुन रहे थे ये प्रायोजित कार्यक्रम। फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.2 MHz पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के छिंदवाड़ा केंद्र से। कुछ ही पहले में सुनिए विविध भारती सेवा के कार्यक्रम मुंबई से।

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम रंग तरंग।
1: रंग तरंग
0: रंग तरंग कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। लीजिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं लता मंगेशकर की गाए इस भक्ति गीत के साथ।

लता मंगेशकर की आवाज में अभी आपने ये भक्ति गीत सुना, और आइए अब सुनते हैं बेगम अख्तर का गाया मिर्जा गालिब का ये कलाम।

0: उनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: कार्यक्रम में अब सुनिए विशाल मिश्रा का गाया ये ओगा फिल्मी गीत। इसे लिखा है कौशल किशोर ने और धुन बनाई है विशाल मिश्रा ने ही।

विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग। आइए सुनते हैं समीर का लिखा ये गार फिल्मी गीत, आवाजें ऋचा शर्मा और साबरी बंधुओं की।

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूँ मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: लता मंगेशकर की आवाज में हम आपको सुनवा रहे हैं मिर्जा गालिब का ये कलाम।

लता मंगेशकर की आवाज़ में अभी आपने मिर्ज़ा गालिब का ये कलाम सुना, और आइए अब सुनते हैं संत नानक देव का ये शब्द। गायिका हैं दिलराज कौर।

0: एक जानी मानी पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
1: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
0: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
1: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
0: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
1: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
0: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार।
3: कार्यक्रम में अब सुनिए आयुष्मान खुराना की आवाज में ये गैर फिल्मी गीत। इसे लिखा है रोचक कोहली ने।

ये स्वर था आयुष्मान खुराना का। और आइए अब सुनते हैं तनिष्क बागची का लिखा और संगीत बद किया हुआ ये गैर फिल्मी गीत। आवाजें गुरु रंधावा और निकिता गांधी की।

कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं अरमान मलिक की आवाज में कुणाल वर्मा का ये गीत।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। यह आवाज है असलम साबरी की।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के अंतिम चरण में पेरिस पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वीवाटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप के क्षेत्र में यूरोप का सबसे बड़ा आयोजन है। श्री मोदी विशेष कार्यक्रम में भारतीय समुदाय के लोगों से भी बातचीत करेंगे। श्री मोदी का आज पेरिस में भारत फ्रांस आर्थिक और औद्योगिक सहयोग बढ़ाने के लिए फ्रांस के प्रमुख व्यापार जगत प्रतिनिधियों के साथ कई उच्च स्तरीय बैठकें करने का भी कार्यक्रम है।
1: प्रधानमंत्री अपनी चर्चाओं की शुरुआत सिंध गोबा के चेयरमैन और सीईओ बनवा बेजा के साथ करेंगे, जिसमें मुख्य रूप से ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग और टिकाऊ बुनियादी ढांचे पर ध्यान केंद्रित किए जाने की उम्मीद है। वह स्मार्ट मोबिलिटी और रेल आधुनिकीकरण के क्षेत्र में सहयोग की संभावनाओं को तलाशने के लिए एल्स्टॉम के सीईओ से भी मुलाकात करेंगे। प्रौद्योगिकी क्षेत्र में प्रधानमंत्री आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नवाचार और जिम्मेदार एआई गवर्नेंस पर मिस्ताल एआई के सह संस्थापक और सीईओ आर्थर मेंज के साथ बातचीत करेंगे। इन बैठकों का समापन सीएमए सीजीएम ग्रुप के चेयरमैन और सीईओ रोदाल सादे के साथ होगा, जहां समुद्री व्यापार, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण और मजबूत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं पर चर्चा होने की उम्मीद है। ये बैठकें भारत और फ्रांस के बीच बढ़ते आर्थिक संबंधों को रेखांकित करती है। आकाशवाणी समाचार के लिए पेरिस फ्रांस से महेश सोपड़े।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और ओडिशा के 5 दिन के दौरे पर हैं। वे आज मध्य प्रदेश के बैतूल में आध्यात्मिक जागृति के माध्यम से आदिवासी समाज के सशक्तिकरण पर आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लेंगी। राष्ट्रपति कल ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस समारोह में शामिल होंगी। झारखंड की 2 राज्यसभा सीटों के लिए मतदान जारी है। चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार बैद्यनाथ राम, कांग्रेस के उम्मीदवार प्रणव झा और निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नथवानी मैदान में हैं। सुबह 9 बजे शुरू हुआ मतदान शाम 4 बजे तक चलेगा। मतगणना शाम 5 बजे होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल नागपुर के अंबा झारी स्थित आयुध कारखाने में यंत्र इंडिया लिमिटेड की 10,000 टन क्षमता वाली एल्यूमिनियम एक्सट्रूजन प्रेस की आधारशिला रखेंगे। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि इससे महत्वपूर्ण एल्यूमिनियम एक्सट्रूडेड घटकों के आयात पर निर्भरता कम होगी और स्वदेशी विनिर्माण को बढ़ावा मिलेगा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार के 12 वर्ष विकास और विरासत के संगम का स्वर्णिम कालखंड रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि इस दौरान एक ओर श्री राम मंदिर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और उज्जैन महाकाल लोक का निर्माण हुआ, तो वहीं दूसरी ओर विश्वस्तरीय कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर तथा मेक इन इंडिया जैसी पहलों ने देश की विकास यात्रा को अभूतपूर्व गति दी है। श्री शाह ने कहा कि 1 करोड़ अभिलेखों का डिजिटलीकरण, 668 प्राचीन कलाकृतियों की वापसी, 11 जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालयों की स्थापना और 11 भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिलना स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि विकास और विरासत एक दूसरे के पूरक हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज राष्ट्रीय राजधानी में 3 दिवसीय जन कल्याण शिविरों का उद्घाटन किया। संवाददाताओं से बातचीत में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार ने राजधानी में 42 स्थानों पर इन शिविरों का आयोजन किया है। उन्होंने कहा कि इन शिविरों के माध्यम से पात्र नागरिक केंद्र और दिल्ली सरकार की विभिन्न योजनाओं से संबंधित जानकारी और लाभ प्राप्त कर सकते हैं। युवा कार्य और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि पिछले 1 दशक में भारत ने शिक्षा, कौशल विकास, उद्यमिता, खेल, स्वास्थ्य और नागरिक भागीदारी जैसे क्षेत्रों में युवाओं के लिए अवसरों का निरंतर विस्तार किया है। एक राष्ट्रीय दैनिक में प्रकाशित लेख में श्री मांडविया ने देश के युवाओं को अमृत पीढ़ी बताया, जो 2047 तक विकसित भारत की यात्रा का नेतृत्व करेगी। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने आज बताया कि चेन्नई से चमड़े के सामान और ऑटो पार्ट्स सहित कई वस्तुएं लेकर पहला कार्गो विमान नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतर चुका है। हवाई अड्डे पर 2 दिन पहले वाणिज्यिक परिचालन शुरू हुआ था। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में कल रात एक सड़क दुर्घटना में 7 लोगों की मौत की खबर है। मृतकों में 4 पुरुष और 3 महिलाएं शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि यह हादसा लगभग रात 2 बजे हुआ। शुरुआती जाँच के मुताबिक दुर्घटना वाहन के अनियंत्रित होकर खाई में गिर जाने से हुई। भारत ने लखनऊ में 2रे 1-दिवसीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 170 रन से हराया। इसके अलावा भारत ने 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है। तीसरा और अंतिम मैच शनिवार को चेन्नई में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम विविध भारती से बोल रहे हैं, ये है राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, यादों की महफिल। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस कुछ ही पलों में।

प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। इस सभा में, इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का स्वागत है दोस्तों। और आज इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं मशहूर यानी जाने माने संगीतकार मदन मोहन के संगीतबद्ध किए कुछ फिल्मी गीत। यह है इस कार्यक्रम का पहला गीत, आवाज लता मंगेशकर की। फिल्म का नाम दिल की राहें, गीतकार नक्श लायलपुरी।

लता मंगेशकर की आवाज़ में अभी आपने फिल्म दिल की राहें का ये गीत सुना। गीतकार नक्श लायल पुरी और संगीतकार मदन मोहन थे। आइए अगला गीत सुनते हैं। इसे लिखा है राजा मेहदी अली खान ने, स्वर लता मंगेशकर का, और फिल्म का नाम वो कौन थी।

0: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
1: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती है। और इस गजल के साथ रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
0: वो है शायर और गीतकार शकील।

0: लाजमी।
1: एक टुकड़ा धूप का।
0: इस मंगलवार सेल्यूलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
2: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
0: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: मदन मोहन के संगीत निर्देशन में राजेंद्र कृष्ण का लिखा गीत सुनिए, आवाज मोहम्मद रफी की, और ये फिल्म है शराबी।

मोहम्मद रफी की आवाज में अभी आपने फिल्म शराबी का ये गीत सुना। आइए इसी आवाज में अगला गीत फिल्म नौनिहाल से हम आपको सुनवा रहे हैं। गीतकार हैं कैफी आजमी और संगीतकार मदन मोहन।

0: की बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: लीजिए अब सुनिए लता मंगेशकर और आशा भोसले को, फिल्म का नाम है जहां आरा, रचना राजेंद्र कृष्ण की और धुन मदन मोहन की।

लता मंगेशकर और आशा भोंसले की आवाजों में यह था फिल्म जहां आरा का गीत। कार्यक्रम का अगला गीत कैफी आजमी का लिखा हुआ, मदन मोहन का संगीतबद्ध किया हुआ है लता मंगेशकर की आवाज में, फिल्म हंसते जख्म से हमने लिया है।

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूं मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: यादों की महफिल कार्यक्रम की अगली पेशकश मजरूह सुल्तानपुरी की रचना है, आवाज लता मंगेशकर की और फिल्म का नाम है दस्तक।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
3: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
2: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
4: एक टुकड़ा धूप का।
2: इस मंगलवार सेल्यूलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
3: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
2: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: इस कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं मदन मोहन के संगीत निर्देशन में कैफी आजमी का लिखा गीत, आवाज एक बार फिर लता मंगेशकर की, फिल्म का नाम है महाराजा।

लता मंगेशकर की आवाज में अभी आपने फिल्म महाराजा का ये गीत सुना। गीतकार थे कैफी आजमी। और आज इस कार्यक्रम में हमने आपको मदन मोहन के संगीतबद्ध किए कुछ फिल्मी गीत सुनवाए। और अब यादों की महफिल कार्यक्रम समाप्त होता है।

तो प्रस्तुत है आपका पसंदीदा कार्यक्रम सुरीला सफर। सभी सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। जी तो बताइए श्रोताओं, कैसे हैं आप लोग? कैसा चल रहा है जिंदगी का सफर? अच्छा चल रहा है ना? आहा, कभी कभी नाव हिचको लिखा जाती है ना? कोई बात नहीं, यही तो जिंदगी का असली सफर है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि सफर कैसा होना चाहिए तो आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, आप यही कहेंगे जो मैं कह रही हूँ कि सफर तनाव मुक्त होना चाहिए, रोमांचक होना चाहिए, सुरक्षित होना चाहिए और साथ में एक प्यारा सा हम सफर भी होना चाहिए ताकि जिंदगी बहुत मजे से निकल जाए, क्यों है ना? बिल्कुल सही कहा आपने। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सुरीला सफर, क्योंकि इधर हम हैं और उधर आप, और मिलकर ये प्यारा सा सफर हम आज तय करेंगे। तो चलिए आज चलते हैं समुद्री यात्रा पर, नौका विहार करते हैं। डरिए नहीं, डरिए नहीं भाई, आज के समय में भी समुद्री यात्रा खास तौर से आज के समय में काफ़ी सुरक्षित और आसान हो गई है और ये यात्रा करना बहुत रोमांचक हो जाता है। एक शानदार अनुभव हमारी जिंदगी से जुड़ जाता है। नीला पानी, ताज़ी हवा और प्रकृति की विशालता का एहसास होता है हमें। बस थोड़ा सा मानसिक रूप से हमें मजबूत होना पड़ता है। तो चलिए हो जाते हैं तैयार और चलते हैं आज नौका विहार पर, है ना? तो आप हमारा इशारा समझ गए हैं कि आज इस कार्यक्रम में हमने वही गीत चुने हैं जो नावों पर फिल्माए गए हैं और इन गीतों में मुख्य रूप से रोमांस, आशा या अपने प्यार की तलाश जैसा भाव छुपा है। तो जो श्रोता हमारे फेसबुक पेज से जुड़े हैं उन्होंने तो अपने विचार लिख दिए हैं और खुशी की बात यह है कि आज बहुत सारे गीत आपकी पसंद और हमारी पसंद के मेल खा रहे हैं। हाँ, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। और जो लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं, फेसबुक पेज से जुड़ना चाहते हैं, हमारे परिवार में शामिल होना चाहते हैं, वो www.facebook.com/vbsmumbai पर जाकर अपनी बात हमें लिख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये नौका विहार।

नौशाद साहब के संगीत निर्देशन में अभी आपने शकील बदायूनी का लिखा ये गीत सुना। आवाजें लता मंगेशकर और साथियों की थी। फिल्म का नाम था उड़न खटोला। तो भाई आज तो इस नौका यात्रा पर हमारे बहुत सारे श्रोता शामिल हो गए हैं और एक श्रोता ने लिखा है कि बहुत बड़ी नाव लेकर चलना होगा क्योंकि बहुत सारे श्रोता आज जुड़ गए हैं। तो चलिए इस नौका यात्रा पर जब हम निकल ही गए हैं तो डरना कैसा है ना भाई। ध्यान से रहिएगा, डरिएगा नहीं। सब अपनी अपनी भूमिका अच्छे से तय कीजिएगा, ठीक है। तो हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि भाई आज का ये पैराग्राफ मुख्य रूप से जो आपने लिखा है यानी मैंने जो इबारत लिखी है दार्शनिक और आध्यात्मिक भावनाओं से जुड़ी है जिसे काव्यात्मक और मनोरंजक शैली में पिरोया गया है। इसमें जीवन के उतार चढ़ाव को एक यात्रा के रूप में दिखाया गया है और आप लिखते हैं कि इसमें प्रमुख भावनाएं शामिल हैं वैराग्य, स्वीकृति, जीवन की अनिश्चितताएं और भी बहुत सारी भावनाएं, सहजता से स्वीकार करने का भाव, कठिन परिस्थितियाँ, तूफानी यात्रा में किसी योग्य गुरु मल्ला या आध्यात्मिक ज्ञान की जो हमें तलाश करनी होती है उसके बारे में भी इस इबारत में आपने लिखा है। तो हमारे श्रोता ने बहुत अच्छे तरीके से अपनी बात कही है। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि जिंदगी की इस नैया को पार लगाने के लिए हमें न जाने कितने तूफानों का सामना करना पड़ता है। सुख दुख के थपेड़ों के बीच जब हमारी ये नाव डगमगाने लगती है तब दिल किसी मझधार या भंवर में फंसावा महसूस करता है। ऐसे वक्त में जब दूर दूर तक कोई किनारा दिखाई न दे तो उम्मीद का दामन थामे रहना ही समझदारी है। इस जीवन रूपी कठिन यात्रा में सही राह दिखाने के लिए हमेशा एक कुशल मल्लाह यानी मांझी या सच्चे मार्गदर्शक की जरूरत होती है जो इस कश्ती को सुरक्षित किनारे तक पहुंचा सके।

बताता है कि जिंदगी के सफर में हम जीवन रूपी सफर में जब कोई किनारा नजर न आए तो हर पल को स्वीकारना ही इस नैया को पार लगाने जैसा होता है। जब भी जीवन रूपी नाव डगमगाए तो जान लीजिए कि इस तूफानी यात्रा को शुरू तो पूरा करने के लिए एक योग्य मल्लाह या आध्यात्मिक ज्ञान की आवश्यकता है। तो ये आज की इबारत थी जिसमें कोई ऐसा शब्द नहीं है जो हमारे द्वारा चुने गए गीतों से मेल खाता हो। आज हमने वो शब्द नहीं रखे ताकि आप श्रोता थोड़ा सा सरलता से गीत चुन सकें, इसीलिए आप सबकी खातिर हमने आज थोड़ा सा इस इबारत को इस रूप में रचा। और एक शब्द नैया जिस पर आज हमने कार्यक्रम केंद्रित किया यानी कि सुरीला सफर हम आज इस नाव पर करने वाले हैं। जो गाने नावों पर फिल्माए गए हैं उसी पर आज हमने इस सुरीली यात्रा को रखा है। तो कैसी लगेगी आपको ये यात्रा, तो ये कार्यक्रम के अंत में हमें पता लगेगा। इस बीच हम दो सवाल आपके लिए लाए हैं हमेशा की तरह। बहुत ही सीधे साधे सवाल हैं कि आप किसी नौका विहार पर कभी गए हैं? हमारे एक दो श्रोताओं ने लिखा भी है, तो आप भी बताइए कहाँ गए थे, कैसे गए थे, क्या रहा नौका विहार का, वो वर्णन आप कर सकते हैं कम से कम शब्दों में। आपको ज्यादा से ज्यादा अपनी बात कहनी है। और हाँ, नौका विहार पर फिल्मा गए गीतों में आपकी पसंद का कोई गीत जिसे आप बहुत पसंद करते हो, वैसे तो आपने बहुत सारे गीतों को लिखा है लेकिन आप जो बहुत गीत को पसंद करते हो और आपकी नज़र में वो गीत बहुत ही शानदार तरीके से फिल्माया गया है। उदाहरण के लिए अगर मैं बात करती हूँ कि मैं अपनी बात करती हूँ कि फिल्म कश्मीर की कली का गीत जो है ना, ये चांद सा रोशन चेहरा तो वो गीत जो है मुझे बहुत पसंद आता है क्योंकि डल झील श्रीनगर की जो हसीन वादियों में शिकारा पर फिल्माया गया गीत है और शिकारा की जो धीमी गति है और बैकग्राउंड में आपने देखा खूब सारे जो हैं कश्मीरी हाउस बोट्स रखे हुए हैं और वो अपनी बारीक हस्तशिल्प कला के एक शानदार नायाब नमूने हैं। तो कितना सुंदर समा लगता है इस गीत को सुनने के बाद, देखने के बाद। और शम्मी कपूर साहब के तो कहने ही क्या, जब वो जिस एक झटकते अंदाज में अपनी बात कहते हैं। तो इस तरह से आपको भी कोई गीत पसंद होगा उसका जिक्र करें। चलिए चलते हैं अगले गीत की ओर। आवाज़ें लता मंगेशकर और साथियों की। ये फिल्म है सवेरा, गीतकार हैं शैलेंद्र और संगीत दिया है शैलेश ने।

जी तो हमारे श्रोता जो फेसबुक पेज से नहीं जुड़े हैं उन्हें हम आज की इबारत भी बता दें। हमने एक छोटी सी इबारत आपके लिए लिखी है जिसे आप आसानी से समझ सकें और अपनी बात लिख सकें। हमने आज लिखा था कि जीवन रूपी नैया और हमारा ये जीवन का भटकाव हमें ये

अच्छा बताइएगा कि ये गीत फिल्माते समय आपको कौन से नायक और नायिका एक नाव पर बैठे दिखे, और साथ ही हमने आपको बताया था कि संगीतकार हैं शैलेश, ये संगीतकार कौन से हैं, इनका पूरा नाम क्या है, आपको ये भी बताना है।

तो ये था फिल्म सवेरा का गाना। आवाजें लता मंगेशकर और साथियों की थी। गीतकार थे शैलेंद्र और संगीतकार थे शैलेश। इनका पूरा नाम आपको बताना है और साथ ही ये भी बताना है कि ये गीत जो फिल्माया गया है इसमें कौन नायक और नायिका एक नाव पर अलग से बैठे हैं और बाकी दूसरी नावों पर एक कोरस गान हो रहा है जो कि अभी आपने सुना था। हमारे श्रोता का कहना है कि जिंदगी तो एक नैया है जिस पर एक नाव को तूफानी दरिया में पार लगाने के लिए धैर्य, संतुलन और सही दिशा की जरूरत होती है। वैसे ही जीवन रूपी नैया को संभालने के लिए कुछ बातों का संतुलन रखना पड़ता है। जीवन में काम, परिवार और अपने व्यक्तिगत समय के बीच संतुलन बनाना बेहद जरूरी हो जाता है। जैसे नैया पानी के बहाव के साथ चलती है, जिंदगी में उसी तरह दिशा रखनी पड़ती है और इन सबको संभालने के लिए धैर्य, सहन शक्ति की जरूरत होती है। जब जीवन में परिस्थितियां विपरीत हो जाएं तो घबराने के बजाय धैर्य रखें और सही समय का इंतजार करें, क्योंकि सिर्फ खेवैया है जो पार तो वो ऊपर वाले के हाथ में है। जीवन का ये सफर निश्चित रूप से कठिन है, लेकिन चुनौतियों का सामना करने से ही अनुभव और मजबूती मिलती है। बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता का लिखना है कि आज बहुत ही गहरी और दार्शनिक सोच के साथ गद्यांश को रखा गया है और सिर्फ एक शब्द नैया पर ही इसे सीमित कर एक बार फिर नई पहल की है। वैसे आपके नाम में भी नदी का रूप है। अरे वाह, क्या बात है, आपको हमारे नाम का अर्थ पता है। आपने लिखा है कि जिंदगी के जल भ्रम में जब जीवन नैया फंस जाए तब जीवन में आए इस तूफानों से विचलित न हो और विश्वास, साहस, धैर्य, सत्कर्म, सकारात्मकता और सच्ची श्रद्धा की पतवार थामे तुम अपनी जीवन नैया को खेते जाओ। तब भगवान केवट बनकर इस भवसागर में जीवन नैया को जरूर पार लगाइए। बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि प्रदत्त इबारत में संगीत में सुरीला सफर संजीवन भवसागर पार लगाने की महात्म्य पर बखान है। सकारात्मक विचार को पतवार बनाकर जीवन नैया को खेते रहें। जीवन के ज्वार भाटा तूफानी थपेड़ों को सिर झुकाकर सामना कर जीवन नैया चलाते रहें। कभी भी यह सफर किसी भंवर में नहीं फंसेगा। सागर की तरह अपने आंतरिक तूफान को अपने तक हृदयंगम कर शांतचित रहना चाहिए। तूफान सामयिक होते हैं, स्थायी नहीं। नवकल्पना नए रूप की सुरीली सफर स्मरणीय होगी और क्यों न हो स्वयं मंदाकिनी साक्षात संग चलेगी। क्या बात है, क्या बात है। और हाँ, हमारे श्रोता तो भाई बड़ी अच्छी बात लिखते हैं और बड़े प्यारे अंदाज में अपनी बात कहते हैं। एक श्रोता लिख रही है कि आज तो बड़ी ही प्यारी इबारत के साथ आप आई हैं और हमें लग रहा है कि आज आप ही नाव में बैठकर आने वाली है। प्रोग्राम में अगर ऐसा है तो रास्ते में हमारा घर भी आएगा, हमें भी उसी नाव में बिठा ले रहा। इस बार हम विविध भारती भी देख लेंगे और मुंबई शहर भी। हम इंतजार करेंगे, 1 बजे से पहले पहुंचना भी तो है। बिल्कुल सही कहा, हम नाव पर सवार ही हैं। आज हम सभी इस नाव पर और जीवन रूपी नैया पर तो हम वैसे ही भी सब सवार ही हैं, लेकिन हाँ, इस कार्यक्रम में खास नौका विहार पर हम आज निकले हैं, तो मजा लेते हैं इस नौका विहार का। और बताइए हमें कि भाई जो 2 गीत हमने आपको सुनवाए वो आपकी लिस्ट में शामिल थे कि नहीं। थे, मुझे पता है क्योंकि मैंने देख लिया है। लेकिन जिन श्रोताओं की लिस्ट में वो गीत शामिल नहीं थे तो कोई बात नहीं, नौका विहार का तो हम आनंद ले ही रहे हैं, है ना।

लता मंगेशकर और साथी थे, फिल्म का नाम था चोरी चोरी। हमारे दो सवाल आपने नोट कर लिए होंगे कि आप कभी किसी नौका विहार पर गए, बताइए उसके बारे में, कब गए, कहाँ गए और कैसा रहा नौका विहार। और हमारा दूसरा सवाल ये था कि नौका विहार पर फिल्माए गए गीत जो आज हम बजा रहे हैं या जो गीत फिल्माए गए हैं, वो आपको सबसे, जो आपकी पसंद का गीत है वो कौन सा है और क्यों पसंद है, उसकी फिल्मोग्राफी, मतलब किस तरह से डायरेक्टर ने उस फिल्म को, उस गीत को फिल्माया है, उसके बारे में कम से कम शब्दों में बताइएगा। जैसे कि हमने आपको फिल्म कश्मीर की कली का उदाहरण दिया कि उसमें जिस तरह से गीत को फिल्माया गया है वो मुझे खासतौर से बेहद खूबसूरत लगता है।

हमारे श्रोता का कहना है कि जीवन रूपी नैया को पार तो सिर्फ एक खेवैया ही लगा सकता है और वो है हमारे प्रभु श्री राम, लेकिन ईश्वर भी उसी का साथ देते हैं जो खुद अपना साथ देता है। इसलिए इस जीवन रूपी नाव को बड़ी समझदारी और सच्चाई से खेते जाइए और फिर हम पार हो ही जाएंगे। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि अपने पापा की पोस्टिंग के कारण मेरा बचपन प्रयागराज यानी तत्कालीन इलाहाबाद में बीता। प्रयागराज में यमुना जी के तट से संगम तक मैंने अपने माता पिता और भाई बहनों के साथ कई बार नौका विहार का आनंद लिया, जो बेहद मनोरम लगता है। पिछले वर्ष दिसंबर में चित्रकूट में मंदाकिनी नदी के रामघाट पर पत्नी और बेटी के साथ मैंने नौका विहार किया है। इससे पूर्व भी चित्रकूट में कई बार हम लोग नौका विहार का आनंद ले चुके हैं। मजे की बात तो ये है कि आज के कार्यक्रम को पेश करने वाली भी वही है जिनका नाम चित्रकूट में और एक क्या कहें आपकी तारीफ के लिए सर आंखों पर। और वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि ये पंक्तियां जीवन के उस शाश्वत सत्य को रेखांकित करती हैं जिससे हर इंसान कभी न कभी गुजरता है।

हम अक्सर जीवन को एक सीधी लकीर मान लेते हैं, लेकिन हकीकत में ये एक अनिश्चित समंदर है जहाँ भंवर जिन्हें हम चुनौतियाँ कह सकते हैं और मजेदार जो असमंजस का पर्याय है का आना तय है। ये विचार हमें सिखाता है कि जब जिंदगी की नाव डगमगाए तो घबराने की बजाय अपनी स्वीकार्यता की पतवार को थामें और ज्ञान के मल्लाह पर भरोसा रखें, नैया पार लगी जाएगी। चलिए तो नौका विहार पर जब हम निकले हैं तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं फिल्म आवारा गीत। क्या ये गीत आपकी लिस्ट में है? जरा खंगालिए। आवाजें हैं मोहम्मद रफी और साथियों की, शैलेंद्र की बोल, शंकर जयकिशन की धुन।

हमारे श्रोता का कहना है कि नाव वैसे तो समुद्र किनारे रहने वाले मछुआरों की जीविका का प्रमुख साधन है, लेकिन फिल्मकारों ने नाव पर बेहतरीन गाने फिल्माए हैं। पाकिजा का चलो दिलदार चलो तो कश्मीर की गली का ये चांद सा रोशन चेहरा और जिस गली में तेरा घर, चिंगारी कोई भड़के, ऐसे बहुत सारे गाने हैं जो सुनते सुनते कभी मन भरता ही नहीं है। आज नौकामय संगीत का सफर आनंदमय होगा ऐसा हम मानते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि माँ जी तेरी कश्ती के तलबगार बहुत हैं, इस पार कुछ मगर उस पार बहुत हैं, जिस शहर में तूने खोली है शीशे की दुकान उस शहर में पत्थर के खरीदार बहुत हैं। बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता का कहना है कि इस कश्ती की भी अजब बात है, अक्सर दूसरों को पार करवा कर खुद पानी में ही रह जाती है, इंसान और नाव में बस इतना ही फर्क है। क्या खूब बात कही है आपने। एक श्रोता लिखते हैं कि नदी के किनारे घाट पर बैठकर चांदी से चमकती लहरों के बीच धीमे धीमे चलती नाव देखने का जो सुख है वो अवर्णनीय है। ये पल बिल्कुल ऐसा है जैसे दिन और ढलती शाम के बीच कोई मीठी सी बात हो जो सिर्फ शांत लहरों के बीच सुनी जा सकती है। नदी की लहरों पर नाव में बैठे हुए अपनी परछाई इस खूबसूरत पल को चुपचाप निहारती रहती है। सब कुछ सादा और प्यारा, पेड़ों की धुंधली सी दिखाई देती पंक्तियां, गीली घास की गंध अंधकार को चीरता हुआ नदी किनारे स्थित मंदिर का कलश, ये सब नदी के हृदय है और चप्पू चलाता मां जी पानी के सुर से सुर मिलाकर पूरी कायनात को जैसे संगीत से भर देता है। बहुत सुंदर क्लासिक लिखी है आपने इबारत। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि रामायण में जब भगवान श्री राम जी केवट की नाव में जाते हैं तो पहले माता सीता जी को हाथ पकड़कर नाव में चढ़ाते हैं, यानी कि कोई भी यात्रा हो धर्म पत्नी को आगे रखकर

उसके बिना यात्रा पूरी नहीं होती है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत है आध्यात्मिक चौखट पर लाने का एक अच्छा प्रयास किया गया है और इस भव सागर में विभिन्न प्रकार के भव जंजाल रूपी उर्मियों से खींच को लेखाती जीवन रूपी नैया को पार लगाने हेतु कुशल ही नहीं अपितु चतुर सेवक केवट जैसे मल्लाह की अपेक्षा की गई है। ये हर एक के हिचकोले खाती जीवन रूपी नैया को पार करते रहने का बहुत ही सरल उपाय है, किंतु इस दर तक भी कितने पहुंच पाते हैं और वो फिर मल्लाह के गुण और अवगुणों पर कैसे पहुंच पाएंगे। अरे भाई, इसके लिए हमें कुशल ही नहीं अपितु चतुर नाविक भी तो बनना पड़ेगा। बहुत सुंदर इबारत लिख रहे हैं हमारे श्रोता, हमें तो पढ़कर बड़ा मजा आ रहा है। एक श्रोता लिखते हैं कि नैया जब पानी पर उतरती है तो लहरों से समझौता नहीं करती, उनसे रिश्ता बना लेती है। शायद इसलिए वो हर मुश्किल सफर को आसान बना देती है। किनारे पर खड़ी नैया सुरक्षित जरूर रहती है, लेकिन उसकी असली पहचान तो सफर से ही बनती है। एक श्रोता का लिखना है कि आज की इबारत तो सीधे तौर पर जीवन और अध्यात्म से जुड़ी है। जीवन की क्षणिकता, नश्वरता, प्रतिकूल परिस्थितियों में जीवन जीने के साहस का प्रतीक है। मनुष्य जीवन एक कागज की नाव के समरूप है। मानव जीवन शरीर सांसारिक आशाओं का द्योतक है। जिस प्रकार कागज की बनी नाव का संसार रूपी सागर के अथाह पानी की अनंत गहराई में कोई अस्तित्व नहीं हो सकता, उसी प्रकार मनुष्य जीवन भी क्षणभंगुर होता है। बहुत सुंदर, आपने सभी ने अपनी इबारत हमें लिख भेजी है। मन तो कर रहा है कि इन इबारतों को पढ़ते ही जाएं, लेकिन अब हमें थोड़ा सा संगीतमय भी होना पड़ेगा। तो आपके लिए लेकर आए हैं हम फिल्म उपहार का गाना, मुकेश और साथियों की आवाजों में, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की धुन। ये गाना भी आपकी लिस्ट में शामिल है, जरा खंगालिए है।

हमने आपसे सवाल किया था कि फिल्म सवेरा का जो गीत आपने सुना था ओ परदेसी, उसमें नायक और नायिका कौन बैठे दिखाई देते हैं नाव पर। आपने अभी तक जवाब ही नहीं दिया, हम तो ढूंढ रहे हैं। खैर, आपने जवाब दिया कि नहीं, हमें तो जवाब देना पड़ेगा। मीना कुमारी और अशोक कुमार एक नाव पर अलग से बैठे हुए दिखाई देते हैं। और हमने ये भी पूछा था कि इस फिल्म के संगीतकार कौन है, जिनका नाम हमने शैलेश बताया था। पूरा नाम है शैलेश मुखर्जी। अगर आपने सही जवाब दिया है तो हमें मिल जाएगा, तो हम ज़रूर उसको पढ़ेंगे। और अब हमने जो सवाल हमारे श्रोताओं से किए थे, श्रोताओं ने जवाब देने शुरू कर दिए हैं। आप लिखते हैं कि भाई मेरी लिस्ट में मुकेश जी के गीत बहुत ज़्यादा हैं जो मुझे बहुत पसंद हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि वाह वाह, गीत संगीत में ही खो गए हैं और इस गाने में ही नौकायन में हो गए हैं। माँ जी नैया ढूंढी किनारा, इस गीत से हमें बेहद मज़ा आ रहा है। एक श्रोता लिखते हैं कि ऐसी कोई मौज नहीं जिसको कोई खोज नहीं, कोई ना कोई सबको लगता है प्यार, क्या कहना है इस गीत का। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि नौका विहार तो बहुत बार किया है, पर पन्ना सफारी के दौरान कैन नदी में किया हुआ नौका विहार ताम्र याद रहेगा। साफ स्वच्छ पानी, नीचे तक स्पष्ट दिखाई देती रेत और पत्थर, साथ में चारों ओर घना जंगल, आह क्या ही खूबसूरत नजारा था। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि केवट बड़ा चतुर और होशियार था, उसने प्रभु राम से कहा कि हम और आप दोनों एक ही हैं, मैं नाव से नदी पार करता हूं और आप भवसागर से पार करते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि चेन्नई, गोवा, थाईलैंड, इजिप्ट सभी समुद्र से घिरे हैं और सब जगह घूम के आई हूँ, क्या बात है। थोड़ा सा बताते कैसा लगा आपको वहाँ घूमना, तो हमें भी अच्छा लगता, हम भी मन की आंखों से नौकायन कर लेते। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि कटी पतंग का जो गीत है वो मुझे बेहद पसंद आता है और ये जो गीत आपने बजाया मांझी नैया, ये गीत बहुत ही प्यारा है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मेरी 14 गीतों की लिखी हुई इबारत में पहले नंबर पर लिखा हुआ गीत शामिल हुआ है मांझी नैया ढूंढे किनारा, तो बधाई हो आपको। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि बहुत सारे गाने हैं जो हमें पसंद हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि मैं बिहार से हूँ जहाँ नदियों पर पुलों की बहुत कमी थी। हमारे ज़माने में गंगा नदी पर एक ही पुल था, इसलिए सभी गंगा पार नावों से ही करते थे। पर मुझे गंगा की वो शाम की याद आ रही है जब मैं और मेरा दोस्त नाव पर यूं ही सवार थे। सूर्य भगवान अस्ताचल में प्रवेश कर चुके थे, आकाश में लालिमा छाई हुई थी और हम दोनों और मेरा नाविक बस इतने ही थे। तभी मेरे दोस्त ने गुनगुनाना शुरू किया, वो शाम कुछ अजीब थी। उस समय मैंने फिल्म खामोशी नहीं देखी थी, लेकिन वो गाना मुझे उस समय बहुत सुंदर लग रहा था। और एक बात मैं आपको कहूं, हमारा अगला गाना भी यही है। हाँ, चलिए थोड़े से और संदेश पढ़ लेते हैं, फिर आपको सुनवाते हैं फिल्म खामोशी का ये गीत। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि हमारा गीत आपको याद है ना मंदाकिनी जी? याद तो है, लेकिन वो गीत आज हमने शामिल किया है कि नहीं, ये तो अब आपको अंत तक कार्यक्रम में सुनना पड़ेगा। वहीं श्रोता लिखते हैं कि नौका विहार करना मुझे बहुत पसंद है। हम जब कश्मीर घूमने गए थे तब हाउस बोट में 3 दिन रहे और शिकारे पर बैठकर ले

की सैर की, वहीं चार चिनार नामक स्थल देखा। जहां भी घूमने जाती हूं वहां झील होगी तो नौका विहार जरूर करती हूं। केरल में पेरियार नदी में, नैनीताल के झीलों में, अरे वाह आप नैनीताल भी गई, महाबलेश्वर जैसी बहुत सी जगहों का आनंद मैंने लिया है, बहुत खूब। वही एक श्रोता लिखते हैं कि मैं पहले आसाम में रहता था, तब एक नौका में बैठने का मौका मिला, बहुत अच्छा लगा। उस समय डर भी लगा, सोच रहा था कि उस समय पता नहीं नौका कैसे पार लगेगी नदी पर, साथ में और भी व्यक्ति थे, हौसला बना रहा था। पर उस समय मेरे मन में एक सवाल उठा कि पानी तो बहुत ज़्यादा है, इतना जैसे दुनिया में पानी ही पानी है, ज़मीन तो दिखाई नहीं दे रही, इतना पानी तो शायद पूरी दुनिया को ही डुबो देता है, ऐसा मुझे डर लग रहा था। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि बहुत सारी जगह मैंने घूमा है, अभी दो एक साल पहले ही भेंट द्वारका जाते समय नए समुद्री पुल के उद्घाटन से पहले स्टीमर से समुद्र पार कर बेट द्वारका गए थे, और कन्याकुमारी में भी स्वामी विवेकानंद स्मारक स्टीमर से गए। भले ही अपने गंगा जी में नाव पर सवार न हुए हों, लेकिन अमरकंटक नर्मदा नदी पर जाना चाहते हैं। अच्छा, और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि नौका विहार का सबसे अच्छा गाना मुझे लगता है फिल्म सफर का, नदिया चले चले रे तारा तुझको चलना होगा। बहुत ही प्रेरणादायी शब्दों से इस गीत को लिखा है, आदमी कितना ही हताश परेशान हो उस गाने को सुनकर नए उत्साह से आगे बढ़ने की और कूच कर देता है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आवारा फिल्म का गाना कम ही सुना है, सिर्फ देखते समय ही सुना है, कयास लगाना कठिन है लेकिन गाना बेहद सुंदर है। तो चलिए सुनते हैं फिल्म खामोशी का गीत, किशोर कुमार की आवाज़ में, गुलजार साहब की बोल है, हेमंत कुमार साहब की धुन।

हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि वो शाम कुछ अजीब थी, एक गाना जो अभी आप सुना रहे हैं वो शाम कुछ अजीब थी, मेरा सबसे पसंदीदा नौका विहार का गाना है, जहां प्यार की उत्कटता और विषाद को एक साथ दिखाया गया है और सिर्फ चेहरे के हाव भाव गीत के अनुपम शब्दों को सजीव कर रहे हैं। बहुत सुंदर लिखा है आपने। वही एक श्रोता लिखते हैं कि दिल ने फिर याद किया फिल्म का शीर्षक गीत का सुंदर नैसर्गिक प्राकृतिक सौंदर्य के बीच नाव का दृश्य मन मोह लेता है। रहमान, धर्मेंद्र और नूतन की प्रभावशाली भूमिका वाली ये जो गीत है वो मुझे बेहद पसंद है। वही एक श्रोता लिखते हैं कि परदेशियों से ना आंखियां मिलाना वाला गीत मुझे बेहद पसंद है। और वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि करीब 2000 के आसपास मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा केव्स आते जाते और दूसरे दिन आपके हॉल के कार्यालय के पास के गोराई बीच से एसलवर्ड जाना हुआ था। अच्छा, वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि सुरीला सफर में अभी तक जितने भी गीत बजे हैं उनमें से तो एक भी हमारी लिस्ट में नहीं है। अरे, फिर आपकी लिस्ट में कौन से गाने थे? वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि फिल्म मिलन का गीत मुझे बेहद पसंद है। सुनील दत्त और नूतन जो नाव में बैठकर गाने गाती हैं वो गाना बहुत ही पसंद आता है। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि आप लोग जो गीत सुनवा रहे हैं वो बहुत ही बकवास गीत हैं। एक भी ऐसा गीत लोकप्रिय नहीं सुनवाया है जिसको सुनकर मन खुश हो। जब हमने विषय सुना था तब लगा था कि एक से बढ़कर एक मनभावन गीत सुनने को मिलने वाले हैं, लेकिन बिल्कुल बेकार चयन किया गया है। क्या कहें आपको, आपकी पसंद और हमारी पसंद शायद नहीं मिलती होगी, यही कह सकते हैं, है ना? वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि आज की इबारत बहुत ही शानदार है और वास्तविकता से जुड़ी हुई है। है कौन यहाँ पर जिसकी जीवन रूपी नैया दुखों रूपी तूफानों से न डगमगाई हो, लेकिन जिसने भी सच्चे मन से अपने परम पिता परमेश्वर को याद किया उसका जो है उसकी डगमगाती नहीं है, सही हो गई है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि बचपन में कागज़ की नाव बनाते थे, अब नाती के लिए बनाकर फिर से बचपन को जी लेते हैं। क्या बात है, बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि आप बीच में जो चिंगारी कोई भड़के वाली गीत की धुन सुनवा रही हैं उसमें बहुत ही आनंद आ रहा है। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि वैसे तो आज जो गीत आप सुनवा रही हैं वो बेहद पसंद आ रहे हैं और आप ही के नाम पर आधारित नदी पर बात हो रही है, लेकिन हम अगर 1986 की बात करें तो रेलवे सर्विस की परीक्षा देने के लिए कलकत्ता गया था। आने जाने का रेलवे पास रेलवे डिपार्टमेंट ने ही हमें दिया था। परीक्षा देने के बाद भी वो पास 3 दिन तक मान्य था। इस दौरान मैंने कलकत्ता और हावड़ा शहर घूम लिया। इसी दौरान हावड़ा ब्रिज के नीचे बहती हुगली नदी में नाव की सवारी करने का मौका मिला, जो बहुत ही रोमांचित रहा। इसी तरह ब्रिज घाट गढ़ मुक्तेश्वर में नाव की सवारी करने का मौका मिला। इसके अलावा दिल्ली में यमुना नदी और कर्तव्य पथ इंडिया गेट के पास बहती हुई धाराओं में भी नैया में सफर करने का मौका मिला है। और उम्मीद करते हैं कि आज ये सभी गाने उन पुरानी यादों को ताजा कर देंगे। बिल्कुल ताजा तो कर ही रहे हैं, आपको लग ही रहा है कि आज हम जो गीत सुनवा रहे हैं आपको अपने उन बीते दिनों की याद आ गई है ना। चलिए सुनते हैं अगला गीत। मुकेश की आवाज, फिल्म का नाम कटी पतंग, आनंद बख्शी की रचना, राहुल देव बर्मन की धुन। आपकी लिस्ट में एक गीत था ना।

हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि दो लफ्जों की है कहानी ये गाना और कहां ले चले हो मुसाफिर दुर्गेश नंदिनी का, ये दोनों गाने अभी तक नहीं बजे क्यों? बिल्कुल सही कहा आपने, दो लफ्जों की है कहानी तो हमने इसलिए नहीं बजाया कि हमने सोचा कि फिर आप श्रोता शिकायत करेंगे कि भाई कितनी बार तो ये गीत और सभाओं में बज गया है और आज फिर इस गाने को मंदाकिनी जी लेकर आ गई हैं, तो हमने उस गाने को इस कार्यक्रम में शामिल नहीं किया। हाँ, दुर्गेश नंदिनी का गाना तो शामिल नहीं हुआ, चलिए फिर किसी और कार्यक्रम में इस गाने को हम लेकर आएंगे, ठीक है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि अरे वाह क्या बात है, दो जासूस का गीत पुरवैया लेके चलूं वाला, ये तो अब अगला गीत है आपकी पसंद का जो आप सुनने वाले हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि हमारे देश में कई लोग ऐसे भी हैं जो अपने घर से रोज नदी या समुद्र के किनारे दूसरे किनारे डेली अप एंड डाउन करते हैं, नौकायन से सफ़र करते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, जैसे कि लोग मुंबई में ट्रेन से सफ़र करते हैं, बसों से सफ़र करते हैं, ऐसे नौकायन लोग करते हैं, रोज़ नौका के द्वारा सफ़र होता है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि जब हम कनाडा गए वहाँ गाँव नाव में बैठे किसी जन्नत से कम नहीं लगा, हम उसे कैसे बयां करें समझ नहीं आ रहा है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज जो गाने आप सुनवा रही हैं हमें तो ये गाने बहुत पसंद आ रहे हैं। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि एक से बढ़कर एक गाने प्रस्तुत कर तीव्र गति से कार्यक्रम का संचालन प्रशंसनीय है। वहीं एक श्रोता कहते हैं कि आज वो शाम अजीब हो न हो लेकिन सुरीले सफर की दोपहर बड़ी ही सुंदर हो गई है नौका विहार करते हुए छोटी बहना के संग, क्या बात है, शुक्रिया। एक श्रोता लिखती है कि सिर्फ मुझे ही फील हो रही है आज, हर गीत सुन कम रही हूँ फील ज़्यादा कर रही हूँ, हूबहू नाव वाला दृश्य जहन में और जल तरंग की ध्वनि गूंज रही है जैसे तिलस्मी इबारत है ये, क्या बात है। एक श्रोता लिखते हैं कि एक गाना कश्ती का खामोश सफरिया आपने नहीं आज लिया, बिल्कुल नहीं लिया, अगली बार किसी कार्यक्रम में इसे ज़रूर शामिल करेंगे। वहीं श्रोता लिखते हैं कि मैंने कन्याकुमारी मथुरा थाईलैंड फुकेट दुबई यूएसए नायगरा फॉल पटना से गंगा जी और चंदोद में नर्मदा जी में सभी जगह नौका विहार किया है और मुझे सबसे अच्छा नायगरा फॉल बहुत ही पसंद आया है, क्या बात है। एक श्रोता लिखते हैं कि फिल्म नैया का गीत लेना था, तेरे आने से सज गई ये टूटी फूटी नाव, बिल्कुल सही कहा आपने, इतने सारे गीत हैं किसे लिया जाए किसे छोड़ा जाए समझ नहीं आता है, लेकिन आज हमने उन गीतों को याद किया, ये क्या कम है। चलिए बढ़ते हैं अगले कदम की ओर।

लता मंगेशकर, शैलेंद्र सिंह और साथियों को आपने सुना। फिल्म का नाम था दो जासूस। गीतकार हसरत जयपुरी थे और संगीत दिया था रविंद्र जैन ने। इस गाने के साथ ही आज का सुरीला सफर कार्यक्रम की अब मैं आपसे चाहूंगी इजाजत, ये पूछते हुए कि कैसा लगा आपको आज का ये नौका विहार। अच्छा लगा ना? तो चलिए, याद रखिएगा इस नौका विहार को, मन में संजो कर रखिएगा, भूलिएगा नहीं। इसी उम्मीद के साथ कि आज का ये नौका विहार आपको पसंद आया होगा। अब इस कार्यक्रम से, यानी सुरीला सफर कार्यक्रम से, मंदाकिनी जोशी को दे दें इजाजत। फिर मिलूंगी किसी और कार्यक्रम में, तब तक के लिए नमस्कार।

विषय, लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। चमत्कार फिल्म का यह गीत है, कुमार सानू ने गाया है, आनंद बख्शी के बोल हैं, धुन अनु मलिक की।

0: राम लक्ष्मण के संगीत निर्देशन में सूरज का लिखा यह गीत था। लता मंगेशकर, उदित नारायण ने गाया था। फिल्म थी सातवां आसमां। इसके साथ ही फिल्म संगीत समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और ओडिशा के 5 दिवसीय दौरे पर हैं। दौरे के पहले दिन इंदौर पहुंचने पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति ने बैतूल में प्रजापिता ब्रह्म कुमारी द्वारा आयोजित जनजाति सशक्तिकरण सम्मेलन को संबोधित किया और कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य के लिए देश का कोई भी व्यक्ति और समुदाय विकास की यात्रा में पीछे नहीं रहना चाहिए।
2: 2047 विकसित भारत बनाने के लिए हम सोचे हैं। पूर्वतन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी कहते थे

0: ये देश एक जमीन का टुकड़ा नहीं है जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। राष्ट्र पुरुष का प्रत्येक अंग हिमालय से लेकर के कन्याकुमारी तक अक्षत होना चाहिए, क्षति नहीं होना चाहिए। ऐसे ही ये भारत में रहने वाले जनता कोई भी समाज पीछे ना रह जाए।
1: राष्ट्रपति आज ओंकारेश्वर मंदिर के दर्शन करेंगी और शाम की आरती में भी शामिल होंगी। इस दौरे में 21 जून को जबलपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और 22 जून को कूनो नेशनल पार्क का दौरा भी शामिल है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इंदौर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का स्वागत करने के बाद कहा कि उनका प्रदेश आगमन प्रदेशवासियों के लिए गर्व का विषय है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति प्रदेश के सफल चीता प्रोजेक्ट का अवलोकन करेंगी और सिकल सेल एनीमिया से निपटने की राज्य सरकार की रणनीति से भी अवगत होंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि बैतूल में ब्रह्म कुमारी के कार्यक्रम में राष्ट्रपति की भागीदारी से आध्यात्मिक और स्वयंसेवी संस्थाओं को भी प्रोत्साहन मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच फ्रांस के एवियन में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान द्विपक्षीय बैठक हुई। दोनों नेताओं ने व्यापार समझौते, रक्षा सहयोग और पश्चिम एशिया की स्थिति समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि भारत अमेरिका व्यापार समझौता होने के बहुत करीब है और यदि भारत पर कोई हमला हुआ तो अमेरिका उसके साथ खड़ा रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पेरिस में प्रमुख फ्रांसीसी व्यापार जगत के प्रतिनिधियों के साथ उच्च स्तरीय बैठकें भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने बताया कि पिछले साल अगस्त से इस योजना के अंतर्गत 63 लाख से अधिक कर्मचारियों को औपचारिक कार्यबल में शामिल किया गया है, जिनमें लगभग 30% महिलाएं हैं। पहली सरकारी नौकरी पाने वाले युवाओं को 2 किस्तों में 15,000 रुपये तक का प्रोत्साहन मिलेगा। इस कार्यक्रम में 15 लाख से अधिक लाभार्थियों को सीधे उनके खाते में राशि हस्तांतरित की जाएगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई के बलिदान दिवस पर उन्हें नमन किया है। उन्होंने कहा कि रानी लक्ष्मीबाई ने अंतिम श्वास तक शत्रु के समक्ष शीश नहीं झुकाया और मातृभूमि के सम्मान के लिए उनका बलिदान भारतीय इतिहास का स्वर्णिम अध्याय है। मुख्यमंत्री ने फ्लाइंग सिख और पद्मश्री प्राप्त मिल्खा सिंह को भी उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग 26 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के उपलक्ष्य में 17 से 26 जून तक देशभर में नशा मुक्त भारत सप्ताह मना रहा है। इस अभियान की थीम नशा मुक्त भारत अभियान और विकसित भारत की पहचान है। इस अभियान के तहत जागरूकता रैलियां, युवा अभियान, नुक्कड़ नाटक, निबंध और पोस्टर प्रतियोगिताएं तथा सोशल मीडिया अभियान आयोजित किए जा रहे हैं। अब रुख करते हैं खेलों की खबर का। भारतीय महिला हॉकी टीम ने न्यूजीलैंड में जारी FIH महिला नेशंस कप में उरुग्वे को 3-2 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारत की ओर से दीपिका ने 2 और दीपिका सोरेंग ने 1 गोल दागा। इस जीत के साथ भारत ने पूल ए में शीर्ष स्थान हासिल किया है। सेमीफाइनल में भारत का सामना 20 जून को चिली और कोरिया के बीच होने वाले मैच के विजेता से होगा। प्रदेश का खेल एवं युवा कल्याण विभाग प्रदेश की उभरती खेल प्रतिभाओं को तलाशने के लिए टैलेंट सर्च महाअभियान चला रहा है, जिसके तहत 8 से 18 वर्ष आयु वर्ग के युवा खिलाड़ियों का चयन कर उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लिए तैयार किया जाएगा। इस अभियान में एथलेटिक्स, हॉकी, कुश्ती, बॉक्सिंग और तीरंदाजी समेत कुल 21 खेल विधाओं के ट्रायल होंगे। ऑनलाइन पंजीयन 17 जून से शुरू हो रहा है और चयन प्रक्रिया 27 जून से आरंभ होगी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। नर्मदापुरम जिले के पिपरिया नगर पालिका परिषद में जनकल्याण शिविर का आयोजन किया गया। जबलपुर के रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में पत्रकारिता के अध्येता एवं इतिहास लेखक विजय दत्त श्रीधर को डीलिट की मानद उपाधि से सम्मानित किया जाएगा। गुना कलेक्टर ने स्कूल चले हम अभियान के दूसरे चरण के तहत पुरानी छावनी के PM श्री शासकीय माध्यमिक विद्यालय के छात्रों से संवाद किया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पेरिस में फ्रांस के प्रमुख व्यापारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठकें कर रहे हैं। प्रधानमंत्री विवाटेक शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2026-27 में ग्रामीण क्षेत्रों में 18,900 करोड़ रुपए की लागत से 26,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण करेगी। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष द्वारा ऋतव्रत बनर्जी को विपक्ष का नेता नियुक्त करने के फैसले पर रोक लगाने से इनकार किया। अमरीका और ईरान के बीच संघर्ष विराम समझौता लागू।

0: शांति वार्ता के लिए 60 दिन की समय सीमा तय। और भारत ने हॉकी FIH महिला नेशंस कप में उरुग्वे को 3-2 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। भारत फ्रांस आर्थिक और औद्योगिक सहयोग को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेरिस में फ्रांस के शीर्ष कारोबारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठकें कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी शाम को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ विवाटेक सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी सम्मेलन में कई उच्च स्तरीय कार्यक्रमों का नेतृत्व करेंगे। सम्मेलन का समापन प्रधानमंत्री के भाषण के साथ होगा। विवाटेक सम्मेलन यूरोप का सबसे बड़ा प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप कार्यक्रम है। विवाटेक सम्मेलन में इस बार भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पवेलियन है, जो भारतीय और यूरोपीय नवाचार तंत्र के बीच साझेदारी की अपार संभावनाओं को दर्शाता है। प्रधानमंत्री एक विशेष प्रवासी कार्यक्रम के दौरान भारतीय समुदाय के सदस्यों को भी संबोधित करेंगे। केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2026-27 में ग्रामीण क्षेत्रों में 26,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण करेगी। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और संबंधित ग्रामीण संपर्क पहलों के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण के लिए 18,900 करोड़ रुपए से अधिक आवंटित किए गए हैं। ग्रामीण सड़क संपर्क परियोजनाओं की प्रगति का आकलन करने के लिए एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता ग्रामीण विकास विभाग के सचिव रोहित कंसल ने की। बैठक में आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और अन्य राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। राज्यों को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और PM जनमन के अंतर्गत लंबित परियोजनाओं पर तेजी से काम करने का निर्देश दिया गया है। इसमें विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूहों की बस्तियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार के 12 वर्ष विकास और विरासत के संगम का स्वर्णिम कालखंड रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि इस दौरान एक ओर श्रीराम मंदिर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और उज्जैन महाकाल लोक का निर्माण हुआ, तो वहीं दूसरी ओर विश्वस्तरीय कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर तथा मेक इन इंडिया जैसी पहलों ने देश की विकास यात्रा को अभूतपूर्व गति दी है। श्री शाह ने कहा कि 1 करोड़ अभिलेखों का डिजिटलीकरण, 668 प्राचीन कलाकृतियों की वापसी, 11 जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालयों की स्थापना और 11 भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिलना स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि विकास और विरासत एक दूसरे के पूरक हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज राष्ट्रीय राजधानी में 3 दिवसीय जन कल्याण शिविरों का उद्घाटन किया। ये शिविर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के अभियान से प्रेरित हैं। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि इन शिविरों के माध्यम से पात्र नागरिक केंद्र और दिल्ली सरकार की विभिन्न योजनाओं से संबंधित जानकारी और लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
1: दिल्ली की जनता को अलग अलग विभागों द्वारा जितनी भी योजनाओं का लाभ मिल रहा है या केंद्र की जितनी योजनाओं के लिए वो एलिजिबल हैं, उन सारी योजनाओं के शिविर यहाँ पे सभी विभागों द्वारा लगाए गए हैं। सारी की सारी सुविधाएं अंडर वन रूप यहाँ पे लोगों को मुहैया कराई जा रही है। पूरी दिल्ली में 42 जगह पे 3 दिन के ये शिविर 18, 19 और 20 तारीख के रहेंगे।
0: युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि पिछले एक दशक में भारत ने शिक्षा, कौशल विकास, उद्यमिता, खेल, स्वास्थ्य और नागरिक भागीदारी जैसे क्षेत्रों में युवाओं के लिए अवसरों का निरंतर विस्तार किया है। एक राष्ट्रीय दैनिक में प्रकाशित लेख में श्री मांडविया ने देश के युवाओं को अमृत पीढ़ी बताया, जो 2047 तक विकसित भारत की यात्रा का नेतृत्व करेगी। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में युवा शक्ति का उपयोग अवसर सृजित करने, आकांक्षाओं को बढ़ावा देने और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के लिए किया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष रथींद्र बोस द्वारा तृणमूल कांग्रेस के बागी विधायक ऋतव्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष नियुक्त करने के फैसले पर अंतरिम रोक लगाने से इंकार कर दिया है। न्यायमूर्ति कृष्णा राव की एकल पीठ ने TMC विधायक शोभन देव चट्टोपाध्याय की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये निर्देश दिया। श्री चट्टोपाध्याय ने नेता प्रतिपक्ष पद के लिए अपने नामांकन की अस्वीकृति और ऋतव्रत बनर्जी की नियुक्ति को चुनौती देते हुए याचिका दर्ज की थी। न्यायालय ने प्रतिवादियों को 3 सप्ताह के भीतर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश और याचिकाकर्ता को जवाब

0: करने के लिए अतिरिक्त 2 सप्ताह का समय दिया है। मामले की अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी। झारखंड की 2 राज्यसभा सीटों के लिए मतदान जारी है। मतदान शाम 4 बजे तक चलेगा, मतगणना शाम 5 बजे होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से अपने गृह राज्य ओडिशा की 2 दिन की यात्रा पर रहेंगी। इस दौरान राष्ट्रपति मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में एम्स भुवनेश्वर द्वारा आयोजित स्वास्थ्य शिविर में शामिल होंगी। वे हाट बद्रा में ब्रह्म कुमारीज के मातृशक्ति भवन, एक विशेष सर्किट हाउस और रायरंगपुर पुलिस जिले का भी उद्घाटन करेंगे। शनिवार को राष्ट्रपति मुर्मू पहाड़पुर का दौरा करेंगी। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उपस्थित होंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री इस दौरान कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रायरंगपुर में एम्स भुवनेश्वर द्वारा आयोजित एक स्वास्थ्य शिविर का दौरा करेंगी। वह एक बड़ी इंटीग्रेटेड ग्रामीण पाइप आधारित जलापूर्ति परियोजना का उद्घाटन करेंगी, जिससे कुसमी ब्लॉक के अंतर्गत खनन से प्रभावित 113 गांव लाभान्वित होंगे। इस दौरान राष्ट्रपति सार्वजनिक बुनियादी ढांचा परियोजना का भी उद्घाटन करेंगी। राष्ट्रपति रायरंगपुर में ओडिशा सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शामिल होंगी। प्रकाश दास की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
0: नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने आज बताया कि चेन्नई से चमड़े के सामान और ऑटो पार्ट्स सहित कई वस्तुएं लेकर पहला कार्गो विमान नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतर चुका है। हवाई अड्डे पर 2 दिन पहले ही वाणिज्यिक परिचालन शुरू हुआ था। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए न केवल कृषि उत्पादन बढ़ाना आवश्यक है, बल्कि खाद्यान्नों का सुरक्षित भंडारण और कुशल वितरण भी जरूरी है। श्री जोशी ने आज नई दिल्ली में भारतीय खाद्य निगम के स्मार्ट वेयरहाउसिंग सिस्टम के उद्घाटन समारोह में ये बात कही। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने सभी खाद्य व्यवसाय संचालकों को निर्देश दिया है कि वे खाद्य पदार्थों के रखरखाव और प्रसंस्करण के दौरान केवल जंगरोधी चाकू और काटने के अन्य उपकरणों का ही उपयोग करें। खाद्य नियामक के अनुसार ऐसे उपकरणों का उपयोग न करने से भोजन दूषित हो सकता है, जिससे उपभोक्ता सुरक्षा को खतरा है। दिल्ली सरकार ने 21 जून को होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी की पुनर्परीक्षा के लिए सभी 97 परीक्षा केंद्रों पर अभिभावकों और परिवार के सदस्यों के लिए कूलिंग जोन की व्यवस्था की है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इन कूलिंग जोन में बैठने की व्यवस्था, पीने का पानी, चाय, ORS, प्राथमिक चिकित्सा और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। परीक्षा के दिन परीक्षार्थियों के लिए DTC बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा भी प्रदान की गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच एक ऐतिहासिक संघर्ष विराम समझौता लागू हो गया है। इससे व्यापक शांति समझौते पर बातचीत के लिए 60 दिन की समय सीमा तय हो गई है। स्विट्जरलैंड में होने वाली बैठक से पहले डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित 14 सूत्री समझौते में तत्काल संघर्ष विराम शामिल है। समझौते में ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर समाधान के लिए एक ढांचा तैयार किया गया है। समझौते के अंतर्गत अमरीका ईरान के बंदरगाहों से नौसैनिक नाकाबंदी हटाना शुरू करेगा और सामान्य समुद्री यातायात बहाल करने की दिशा में काम करेगा। ईरान 30 दिनों के भीतर होर्मुस जलडमरू मध्य से वाणिज्यिक जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करेगा।
2: अमेरिका और ईरान ने महीनों से जारी सैन्य टकराव को खत्म करने के मकसद से एक समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद औपचारिक रूप से एक नई कूटनीतिक प्रक्रिया शुरू की है। इस समझौते में तुरंत युद्ध विराम, होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने और शांति के लिए एक व्यापक समझौते पर बातचीत करने की बात कही गई है। अमरीका ने समुद्री प्रतिबंधों में ढील देने और प्रतिबंधों से राहत दिलाने की दिशा में काम करने का वादा किया है, जबकि ईरान ने फिर से कहा है कि वो परमाणु हथियार नहीं आएगा और अंतर्राष्ट्रीय निगरानी में अपने संवर्धित यूरेनियम के भंडार को लेकर जताई गई चिंताओं को दूर करने पर सहमत हुआ है। इस समझौते में आर्थिक पुनर्निर्माण और क्षेत्रीय सुरक्षा पर भविष्य में सहयोग के प्रावधान भी शामिल हैं। अब राजनयिकों के सामने अगले 60 दिनों के भीतर इस रूपरेखा को एक बाध्यकारी समझौते में बदलने का मुश्किल भरा काम है। हालांकि समर्थकों ने इस बड़ी कामयाबी का स्वागत करते हुए इसे पश्चिम एशिया में स्थिरता की दिशा में एक अहम कदम बताया है, लेकिन परमाणु सत्यापन, प्रतिबंधों को लागू करने और क्षेत्रीय सुरक्षा व्यवस्थाओं को

0: लेकर अभी भी काफी मतभेद बने हुए हैं। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: समझौते के अंतर्गत लेबनान में संघर्ष विराम भी शामिल है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोर ने बताया कि दोनों नेताओं ने आतंकवाद से निपटने, नागरिकों को नशीले पदार्थों और अवैध मादक पदार्थों से बचाने, सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने और अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए दोनों देशों के बीच सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आज नई दिल्ली में 2027 की हज यात्रा की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। श्री रिजिजू ने 2026 की हज यात्रा को भारत के इतिहास की सबसे सफल यात्रा बताया। उन्होंने कहा कि भारत को 2026 की हज यात्रा के लिए सऊदी अरब के हज और उमराह मंत्रालय से 2 लब्बैतुम पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में कल रात एक सड़क दुर्घटना में 7 लोगों की मौत की खबर है। मृतकों में 4 पुरुष और 3 महिलाएं शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि यह हादसा लगभग रात 2 बजे हुआ। शुरुआती जांच के मुताबिक दुर्घटना वाहन के अनियंत्रित होकर खाई में गिरने से हुई। हॉकी में भारत ने आज न्यूजीलैंड में आयोजित FIH महिला नेशंस कप में उरुग्वे को 3-2 से हरा दिया। भारत ने पूल ए में शीर्ष स्थान हासिल कर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला 20 जून को चिली और कोरिया के बीच होने वाले मैच के विजेता से होगा। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कोलंबिया ने आज सुबह उज्बेकिस्तान को 3-1 से पराजित कर दिया। इससे पहले घाना ने पनामा पर 1-0 की रोमांचक जीत दर्ज की और इंग्लैंड ने क्रोएशिया पर 4-2 की जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। आज रात ग्रुप ए में चेक गणराज्य का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से होगा। दूसरे मुकाबले में मैक्सिको और दक्षिण कोरिया आमने सामने होंगे। घरेलू शेयर बाजारों में आज मामूली बढ़त देखी गई। समाचार तैयार किए जाने तक सेंसेक्स 158 अंक बढ़कर 77,314 पर और निफ्टी 41 अंक बढ़कर 24,127 पर कारोबार कर रहा था। अब जानकारी मौसम की। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 4 से 5 दिनों तक तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं। विभाग ने असम, मेघालय, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों में अगले 4 दिनों तक तेज वर्षा जारी रहने की संभावना व्यक्त की है। अरुणाचल प्रदेश, बिहार, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में अगले 2 दिनों में मूसलाधार वर्षा हो सकती है। दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, ओडिशा और उत्तरी कर्नाटक के आंतरिक हिस्सों में सोमवार तक गरज के साथ आंधी की आशंका है। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेरिस में फ्रांस के प्रमुख कारोबारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठकें कर रहे हैं। प्रधानमंत्री विवाटेक शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2026-27 में ग्रामीण क्षेत्रों में 18,900 करोड़ रुपए की लागत से 26,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण करेगी। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष द्वारा ऋतव्रत बनर्जी को विपक्ष का नेता नियुक्त करने के फैसले पर रोक लगाने से इनकार किया। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष विराम समझौता लागू। शांति वार्ता के लिए 60 दिन की समय सीमा तय। और भारत ने हॉकी FIH महिला नेशंस कप में उरुग्वे को 3-2 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

लीजिए सुनिए कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का एक बार फिर से स्वागत। यह आवाज़ लता मंगेशकर की और फिल्म का नाम है आरजू। गीतकार हसरत जयपुरी, संगीतकार शंकर जयकिशन।

0: यह आवाज थी लता मंगेशकर की और फिल्म का नाम था आरजू।
1: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
2: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे

0: अंदर शायर पैदा होने में।
1: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी। एक टुकड़ा धूप का। इस मंगलवार सेलुलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
0: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
1: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कार्यक्रम का अगला गीत सलील चौधरी के संगीत निर्देशन में शैलेंद्र का लिखा हुआ, स्वर लता मंगेशकर का है और फिल्म का नाम है चांद और सूरज।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

सदाबहार नगमे कार्यक्रम की अगली पेशकश अनिल बिस्वास का संगीत, शैलेंद्र के बोल, लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ें, फिल्म का नाम छोटी छोटी बातें।

0: एक जानी मानी पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
1: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
0: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
1: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
0: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
1: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
0: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार।
3: कार्यक्रम का अगला गीत हमने फिल्म सिकंदर ए आजम से लिया है। गायिका लता मंगेशकर है, रचनाकार राजेंद्र कृष्ण और धुन हंसराज पहल की।

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूँ मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: कार्यक्रम का अगला गीत हमने कैफी आजमी का लिखा हुआ लिया है। इसे संगीतबद्ध किया है हेमंत कुमार ने। स्वर हैं लता मंगेशकर और साथियों के, फिल्म का नाम दो दिल।

0: की बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: मदन मोहन की संगीत निर्देशन में मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा गीत सुनिए। आवाज लता मंगेशकर की है और ये फिल्म है अकेली मत जाइयो।

0: सभी सुनने वालों को चंचल वर्मा का नमस्कार और आरती तुम्हें भी नमस्कार। हमारी बहुत सारी सखियां इस समय में सुन रही हैं।
1: बिल्कुल चंचल, आपको और सभी सखियों को, सभी सखाओं को आरती श्रीवास्तव का बहुत बहुत नमस्कार।
0: अब बताते हैं कि भाई आज किन विषयों पर बात होने वाली होगी। तो जैसा हमारे सभी श्रोता जानते हैं, गुरुवार का दिन है और होता है कहानी पद्मश्री की। एक ऐसी महिला जिसने कुछ ऐसा काम किया है जिसे पूरे देश दुनिया में जाना गया, उन्हें मिलता है पद्मश्री, उनकी हम बात करेंगे। तो वो कौन है?
1: वो है बसंती देवी बिष्ट, जो कि उत्तराखंड की पहली महिला जागर लोकगायिका है।
0: बिल्कुल, इनके बारे में आज बातचीत होगी।
1: हाँ।
0: और आज एक खास दिन भी है, सतत गैस्ट्रोनॉमी दिवस, इसके बारे में थोड़ी जानकारी दी जाएगी।
1: बिल्कुल, और आज मुझे कुछ कहना भी होगा, तो उसके अंतर्गत हम बात करेंगे ऑनलाइन शॉपिंग में सबसे बड़ा पछतावा क्या रहा आपका।
0: बिल्कुल, सबका कुछ ना कुछ अनुभव रहा होगा,
1: क्योंकि शॉपिंग सभी करते हैं ऑनलाइन।
0: हाँ।
1: तो आपने अगर शॉपिंग करी है तो उसमें आपने ऐसी क्या चीज ली कि आपको पछतावा कि अब हम कभी नहीं ऑनलाइन शॉपिंग करेंगे।
0: तो इस बारे में जरूर अपने अनुभव हमारे साथी हमसे साझा करेंगे, और कुछ उपयोगी टिप्स होंगे जो हमारी सखियां हमें बताएंगी कि खाना बनाते समय कौन कौन सी चीजें हैं जो बहुत उपयोगी हो सकती हैं। भाई खाना अगर जल्दी पकाना है तो क्या, तुरंत घर पे मेहमान आ गए तो फटाफट क्या बन सकता है, तो इस तरह के जो भी
1: क्या चीज अगर कुछ कम ज्यादा हो गया है तो उसको कैसे बैलेंस कर सकते हैं उसके बारे में भी बात।
0: इसके अलावा लंबे समय तक अगर आपको सहेज कर रखना है किसी खाने पीने की चीज को, चाहे वो पकी हुई है या कच्ची है, उसके बारे में भी उपयोगी टिप्स हमें सखियां बता सकती हैं।
1: बिल्कुल,
0: ये सारी बातें करेंगे विस्तार में, लेकिन पहले गाना सुन लें।
1: हाँ बिल्कुल, गीत सुनते हैं।

0: तो हम बात कर रहे हैं भाई
1: बसंती देवी बिष्ट की
0: जो है उत्तराखंड की पहली जागर गायिका। और हम बता दें कि इनका जन्म हुआ 1953 में उत्तराखंड के चमोली जिले के लुबानी गांव में। और उनकी माँ बहुत अच्छा गाया करती थी और अपनी माँ के साथ जो वो जो गीत सुनते सुनते बड़ी हुई तो गांव में जो मेले लगते थे जो त्योहार होते थे तो माँ के साथ वो गाने भी गाया करती थी। और इसी दौरान गाते गाते उन्हें भी इन गीत से उस संगीत से जो लोक संगीत था वहाँ का उससे प्यार होने लगा। और भाई जब आपके खून में कोई चीज़ रच बस जाती है ना तो जब आप उस चीज़ को गाते हैं तो वो बड़ी दिल से आवाज़ निकलती है।
1: बिल्कुल, और वो पूरा जो माहौल था ना वो बचपन से उनको मिल गया था और गायन के इस प्रेम की वजह से उन्हें पारंपरिक जागर गायन शैली को नई पहचान दिलाने के लिए जाना जाता है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो जागर गायन करने वाली पहली प्रमुख महिला कलाकार मानी जाती हैं। ये जागर कला उत्तराखंड की लोक परंपरा से जुड़ी हुई है जिसमें देवी देवताओं और लोक देवताओं को याद किया जाता है।
0: और आरती ये भी ध्यान देने वाली बात है कि जो जागर शैली परंपरागत रूप से पुरुष पहले प्रस्तुत किया करते हैं, जैसे आपने भी कहा ना कि वो पहली महिला गायिका है, तो महिलाओं के लिए इस क्षेत्र में आ सके ना, इसीलिए इस परंपरा को तोड़ने वाली बसंती देवी ही रही। और तब से लेकर आज तक वो लोक गायन की जो परंपरागत शैली है यानी कि जागर गायन की हम बात कर रहे हैं, इसको संरक्षित करने के प्रयास में लगी हुई हैं वो, और कैसे इसको आगे बढ़ाया जाए इसके भी प्रयास कर रही हैं। और उनके बारे में एक बात और भी गौर करने वाली है कि 5वीं कक्षा की जिला बोर्ड परीक्षा में पहला स्थान प्राप्त करने वाली थी वो पहली छात्रा।
1: मतलब बहुत कुछ उन्होंने पहला काम किया है तो और उन्होंने आगामी 3 वर्षों के लिए आगे की पढ़ाई के लिए प्रति माह 20 रुपये की छात्रवृत्ति से भी सम्मानित किया गया था, लेकिन वो आगे की पढ़ाई जारी नहीं रख सकी क्योंकि उच्च विद्यालय उनके घर और गाँव से बहुत दूर था और गाँव के स्कूल में 5वीं कक्षा से आगे की जो पढ़ाई होती है वो नहीं होती थी। यही मुख्य कारण था कि वो आगे की पढ़ाई अपनी जारी नहीं रख पाई थी।
0: और फिर क्योंकि पहले के ज़माने में भी बच्चियों के विवाह भी छोटी उम्र में हो जाया करते थे, गांव में ख़ासतौर पे ऐसा हुआ करता था, तो उनके साथ भी ऐसा हुआ कि जब वो सिर्फ 15 साल की उम्र थी तो उनका विवाह हो गया और तोपखाने के एक सैनिक में जो थे उनके साथ उनका विवाह हुआ और जीवन का अधिकांश समय एक गृहिणी के रूप में ही उन्होंने अपना बिताया। पेशेवर संगीत करियर की शुरुआत उन्होंने की जब वो 40 बरस की हो गई थी और अपने पति के साथ जब वो जालंधर गईं तो वहाँ उन्होंने एक प्राचीन कला केंद्र में फिर से एक बार संगीत सीखने की शुरुआत की और उनकी बेटी ने उनके शिक्षक के तौर पर हारमोनियम बजाने की शुरुआत की।
1: हाँ, उनकी बेटी के शिक्षक से उन्होंने उन्हें सिखाया था बजाना, तो यहीं से उनके करियर की शुरुआत भी हुई। बाद में उन्होंने भजन, फिल्मी गीत, त्योहारों जैसे सार्वजनिक कार्यक्रमों में गाना शुरू किया। इसके बाद उनके पति सेवानिवृत्त हो गए और परिवार देहरादून में जाकर बस गया। बाद में उन्होंने 1996 में नजीबाबाद स्थित अखिल भारतीय रेडियो स्टेशन में काम करना शुरू किया, यानी वो रेडियो से भी जुड़ी हुई थी
0: और वो आकाश जी ए श्रेणी की कलाकार
1: थी। देखिए मतलब जमीनी स्तर से उन्होंने अपना काम करना शुरू किया
0: और साल 1996 की हम बात कर रहे हैं तब वो पहली महिला प्रधान भी बन गई अपने क्षेत्र की। और कुछ समय के बाद जब उनको लगा कि बचपन में अपनी माँ और गांव के अन्य बुजुर्गों से जो संगीत की अनूठी शैली की जो प्रतिभा उन्हें मिली है जिसे जागर गायन कहा जाता है, तो उन्होंने महसूस किया कि लोग इसको गा ही नहीं रहे, इसे भूल रहे हैं और शास्त्रीय गीतों को खोज करने के लिए अपनी पुरानी धुनों में प्रस्तुत करने का दायित्व इन्होंने फिर संभाल लिया।
1: जी, और बसंती देवी बिष्ट की गायकी थोड़ी नाक से निकलने वाली आवाज़ और लय की धीमी गति के लिए जानी जाती है जो उत्तराखंड की गढ़वाली गायन शैली का विशिष्ट रूप माना जाता है। बसंती देवी बिष्ट की सबसे प्रसिद्ध रचनाएं हैं गोरिया रे, धोखेबाज दगड़िया, न्योली, प्यारी सुमना, दाजीव बॉर्डरा और फोन करना, ओ स्याली साली रुकमा, पारा भीड़ा जादियो और देवारा जारेजू और भी बहुत

0: सारी हैं।
1: तो हमारे जितने भी सुनने वाले हैं, अगर वो सुन रहे हैं और इस क्षेत्र के वो लोग हैं, तो वो ज़रूर जानते होंगे इन पंक्तियों को जो तो आपने बताए भी कि उनके प्रसिद्ध गीत कौन से हैं और ये किस तरह गाए जाते हैं, वो इस बारे में भी जानते होंगे।
0: ये रुकमा वाला तो मैंने सुना हुआ है
1: जी। और बसंती देवी की जो उपलब्धियाँ हैं, उनके जो पुरस्कार हैं, अगर इनकी बात करें तो बहुत सारे पुरस्कार इन्हें मिले। और मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा राष्ट्रीय मातोश्री अहिल्या देवी सम्मान से उन्हें नवाजा गया। लोक संगीत के क्षेत्र में जो उनका योगदान रहा, इसके लिए उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। तो बात लोक धुनों की हो रही है, एक ऐसा गीत सुने जिसमें कुछ लोक धुन जैसी झलक मिलती है।
0: बिल्कुल बिल्कुल सुनते हैं।

0: आरती, ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में हम बात कर रहे थे ना कि सबका कुछ ना कुछ अच्छे के साथ साथ बुरे अनुभव भी जुड़े होते हैं।
1: बिल्कुल, बहुत सारे लोगों के रहते हैं अनुभव, कभी अच्छे भी रहते हैं तो बुरे भी रहते हैं।
0: और आज हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं, अगर कोई बुरा अनुभव रहा और आपको पछतावा हुआ कि क्यों आपने ऑनलाइन शॉपिंग कर ली, इसे तो अच्छा होता कि थोड़ी से हम कष्ट लेते, बाजार जाते और वो चीज़ खरीद लाते।
1: बिल्कुल, क्योंकि बाजार जाके उस चीज़ को छू के देखना, पकड़ के देखना, उसके बारे में पूरी जानकारी लेना उस दुकानदार से, वो एक अलग बात हो जाती है। और जब हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो हम उस ऐप पे देखते हैं कि उसके बारे में क्या जानकारी दे रखी है, और पूरी दे रखी है भी कि नहीं वो भी हमें नहीं पता होता है।
0: कई बार तो हम सिर्फ लुभावने ऑफर देखकर वहां से शॉपिंग के लिए चले जाते हैं।
1: बिल्कुल, या हम देखते हैं कि एक के साथ एक फ्री मिल रहा है।
0: हाँ, और जब सामान हमारे पास आता है तो या तो उसकी क्वालिटी बहुत खराब होती है, या तो एक के साथ एक फ्री वाला जो ऑफर था ना, वो फ्री की चीज मिली नहीं और हमसे डबल पैसे में वो चीज हमें सिंगल ही दे दी गई। तो इस तरह के अगर अनुभव रहे हैं तो इसके बारे में देखो ना कितने सारे कमेंट्स आ रहे हैं। एक श्रोता हमारे लिखते हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग आजकल बहुत सुविधाजनक है, लेकिन कई बार लोग आकर्षक ऑफरों और छूट के चक्कर में ऐसी चीज़ें खरीद लेते हैं जिनकी उन्हें ज़रूरत ही नहीं होती, और बाद में जब सामान उम्मीद के अनुसार नहीं निकलता या फिर बेहतर और कीमत से बेहतर नहीं होता, कीमत कहीं ज़्यादा होती है, तो पछतावा होता ही है। इसीलिए ऑनलाइन ख़रीदारी करते समय उत्पाद की जानकारी और उसके जो रिव्यू हैं वो कीमत की जानकारी अच्छी तरह कर लेनी चाहिए।
1: बिल्कुल, और एक और श्रोता है मेरे जो लिखते हैं कि बात कोई भी हो उसके दो पहलू होते हैं, जैसे सिक्के के दो पहलू, उसी तरह ऑनलाइन शॉपिंग के भी दो पहलू होते हैं। आप कोई भी चीज़ कहीं से भी कभी भी घर बैठे ऑर्डर देके मंगवा सकते हैं, खरीद सकते हैं, डिस्काउंट का लाभ प्राप्त कर सकते हैं, अन्य खरीदारों के रेफरेंस पढ़ सकते हैं, फिर भी इसमें नुकसान होने की संभावना रहती है। आप उत्पाद को फिजिकली देखकर या छू नहीं सकते, फिटिंग का भी पता नहीं लगा सकते। उसके अलावा आजकल ऑनलाइन फ्रॉड की ज्यादा संभावना रहती है, असली के बदले नकली उत्पाद भेज दिया जाता है, तब या कोई चीज पसंद नहीं आने पर वापस भेजने के बाद रिफंड प्राप्त करने में ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो ये प्रलोभनों से आप बच के रहिए।
0: बिल्कुल, हमें किसी ब्रांड नेम को जब हम देखते हैं तो हमें लगता है कि इतने बड़े ब्रांड का सामान हमें कम कीमत में मिल रहा है, लेकिन उसी की जो दूसरी तीसरी कॉपी होती है, अब दरअसल ये वो वाली कॉपीज होती हैं जिन्हें सेकंड या थर्ड में हम कई लोग निकालते हैं। तो हमें सिर्फ फोटो देखकर अंदाजा नहीं हो पाता, और इस तरह की जो प्रलोभन है उनमें फंसकर हम गलत चीज।
1: बिल्कुल, और कई बार ऐसा होता है ना, जो हम कपड़े मंगाते हैं उसकी फिटिंग उसमें दे रखी होती है जो वो नहीं निकलती, या रंग एकदम अलग होते हैं उससे।
0: हाँ।
1: तो इस तरीके की चीजें भी काफी होती हैं। कपड़ा जो दिया होता है कि ये वाला कपड़ा है, वो कपड़ा भी नहीं होता, तो इस तरीके के फ्रॉड काफी होते हैं।
0: रंग की तो जब आपने बात कही, तो मान लीजिए आपके और मेरे दो लोगों के हाथ में अलग अलग फोन है, एक ही रंग पर हम जब पिक्चर क्लिक करते हैं तो आपके फोटो से वो कलर अलग आ सकता है, मेरे मोबाइल से जब पिक्चर क्लिक की जाएगी तो उसका रंग थोड़ा अलग हो सकता है। तो इसी तरह की कुछ बातें होती है ऑनलाइन शॉपिंग में, जो रंग हमें दिखते हैं वो असल रंग से थोड़े से भिन्न हो सकते हैं, और किसी भी तरह की चीजें हम खरीद सकते हैं ना। तो हमारे एक श्रोता जिन्होंने कुछ पौधे खरीदे वो अपना अनुभव लिख रहे हैं। ऑनलाइन शॉपिंग में पौधों की खरीदारी मैं करती हूँ, कुछ पौधे अच्छे मिलते हैं, कुछ खराब भी निकल जाते हैं, और कुछ पौधे जिनकी मैं खरीदारी करती हूँ वो आम नर्सरी में नहीं मिलते हैं, तो ऑनलाइन ही हमें खरीदने पड़ते हैं।
1: और लेकिन ये चंचल जी, हमने भी मांगा है कई बार पौधे मंगा, जैसे पौधे जब हम मंगाते हैं तो ये देखना चाहिए हमें कि उसमें वो क्या दे रखा है, उसमें पूरी डिटेल क्या रखी कि वो वापस हो सकता है कि नहीं हो सकता, क्योंकि फिर हम बाद में से वापस करने की कोशिश करते हैं तो उसमें लिखा हुआ आता है कि नहीं वापस नहीं हो सकता है ये।
0: इसी बात पर देखिए एक बड़ा अच्छा सा कमेंट है, नॉन रिटर्नेबल आइटम। आगे हमारे श्रोता ने लिखा है कि सामान पसंद ना आने पर पता चलता है कि इसे वापस

0: या एक्सचेंज किया जा सकता है या नहीं। कई बार हिडन चार्जेस भी इसके लिए होते हैं और रिटर्न करने के लिए अलग से शॉपिंग चार्जेस भी देने पड़ जाते हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो इस तरह की जो भी पॉलिसीज हैं आप उनको पहले से पढ़ना
1: चाहिए
0: ताकि आपके साथ में कोई धोखेबाजी दगाबाजी ना हो।
1: बिल्कुल। एक हमारे श्रोता हैं जो लिखते हैं कि कई बार लोग आकर्षक ऑफर्स के और छूट के चक्कर में ऐसी चीजें खरीद लेते हैं जिनकी उन्हें जरूरत नहीं होती, बाद में जब सामान उम्मीद के अनुसार नहीं निकलता या बेहतर कीमत कहीं और मिल जाती है तो उन्हें पछतावा होता है। इसलिए ऑनलाइन खरीदारी करते समय उत्पाद की जानकारी, रिव्यू और कीमत उस अच्छी तरह से जान लेनी चाहिए।
0: और इसी में आगे एक और कमेंट हमारे श्रोता लिखते हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग में सबसे बड़ा पछतावा उम्मीद बनाम हकीकत, यानी एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी के बारे में लिख रहे हैं, इसका शिकार हमें होना पड़ता है। स्क्रीन पर दिखने वाली चीज़, चमचमाती चीज़ जब घर पे पहुंचती है तो वो पूरी तरह से अलग निकलती है। और नॉन रिटर्नेबल आइटम्स भी होते हैं, पसंद ना आने पर पता लगता है कि इसको तो एक्सचेंज किया ही नहीं जा सकता और अलग से हमें बहुत सारा भुगतान करना पड़ जाता है।
1: बिल्कुल। बहुत सारी चीज़ें होती हैं ऑनलाइन शॉपिंग में, जब करें तो बहुत ही सोच समझ कर करें कि आपको क्या ख़रीदना है, उसकी ज़रूरत है भी कि नहीं है, इस तरह से करें और पढ़ लें पहले पूरी जो चीज़ें दे रखी हैं कि वो क्या चीज़ है, वो वापस हो सकती है कि नहीं हो सकती है, क्योंकि उसके बाद फिर आपको पछतावा ना होता। कि
0: कुछ बार तो ऐसा भी हो जाता है कि हम तोहफे में देने के लिए कोई चीज़ ले रहे होते हैं, हमने मंगाई बिना खोलकर भी नहीं देखा और वो जिस तरह की पैकिंग में आई थी उसी पर एक और गिफ्ट रैप हमने लगाया और हमने सामने वाले को तोहफे के रूप में वो दे दिया। जब सामने वाले ने खोला तब हमें पता लगता है कि उनके पास कोई अगर कम उच्च स्तरीय वाली चीज़ गई है तो वो जब वो शिकायत करते हैं या नहीं भी करते, सिर्फ कहकर उस बात को बता देते हैं तो बड़ा अफसोस मन में आता है।
1: बिल्कुल। और अच्छा भी नहीं लगता ना कि किसी को एक ऐसे उपहार दे रहे हैं हम और वो भी अच्छा ना निकले, तो ज़रूरी है हम बेहतर होगा कि जितना ज़्यादा हम जा सकें बाहर वहाँ से खरीदें।
0: बिल्कुल। देने वाले की नीयत भले अच्छी थी, उसने उसके लिए कीमत भी अच्छी चुकाई, लेकिन कंपनी ने अगर कोई धोखा किया है तो आपके पास उसका कोई जवाब नहीं होता क्योंकि वो निम्न स्तरीय सामान था।
1: बिल्कुल।
0: इस तरह की धोखेबाजी ना हो। और भी कमेंट्स हम पढ़ेंगे, पहले एक गीत सुन लें।
1: बिल्कुल, एक गीत सुन लेते हैं।

0: आरती, ये सही है कि ऑनलाइन शॉपिंग ने ख़रीदारी को बहुत आसान बना दिया है, लेकिन कई बार एक क्लिक के बाद में जो हम फैसला हमने लिया था और क्लिक कर दिया, वो पछतावे का कारण बन सकता है। और सबसे बड़ा पछतावा अक्सर वो चीज़ होती है जो तस्वीर या विज्ञापनों में बड़ी शानदार दिख रही होती है, लेकिन उम्मीदों पर हमें ख़रीद नहीं उतरती जब वो हमारे हाथ में होती है। सेल देख कर खरीद लिए जाती हैं चीज़ें, कपड़ों के रंग और गुणवत्ता जो है वो तस्वीरों से बहुत अलग होती है।
1: और एक और श्रोता है जो कहते हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग से बड़ा में सबसे बड़ा पछतावा, भाई अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ये तो ऑनलाइन शॉपिंग करने के निर्णय से पहले ही आपको सोचना चाहिए था। खैर कोई बात नहीं है, अब एक बार खरीद ही लिया तो मिले रद्दी के सामान को देख कर घबराइए मत, अपितु उसे सीख लेकर अग्रिम खरीदारी बाजार बैठ जाकर ठोक बजा कर ही करिए। जैसे कि कोई सामान खरीदते हैं तो उसे अच्छे से देखभाल करके ही खरीदें, मगर लगता है कि इसके लिए महानगरों में समय का भी अभाव है। और ऐसे में सब्जियों की ऑनलाइन शॉपिंग रात्रि 8 बजे की बात करें तो सस्ती और अच्छी सब्जी प्राय मिल जाती है। ऐसे ही विवेकपूर्ण वस्तुओं की खरीदारी ऑनलाइन कर सकते हैं, लेकिन पके हुए भोजन की ऑनलाइन शॉपिंग मेरे ख्याल से नहीं करनी चाहिए।
0: बहुत सही सलाह दी है उन्होंने। और ये बात भी सही है कि जो महानगरों की जिंदगी है, कई बार लोगों के पास काम के चलते समय नहीं होता, या त्योहारों का समय जब होता है ना, जब हमें बहुत सारी शॉपिंग करनी होती है, खासतौर पर बाजारों में इतनी भीड़ होती है, तो उस भीड़ में जाने से बचने के लिए भी कई बार लोग ये काम करते हैं। और बहुत सारी चीज़ें अब ऐसी हो गई हैं जो घर पर 5 से 10 मिनट में जब हमें उपलब्ध हो जाती है, घर पर कोई है नहीं सामान लाने के लिए, तब तो उनमें भी धोखाधड़ी हो जाती है, चाहे वो घर के दूध दालें सब्जियां ऐसी चीजें ही क्यों ना हो, तो बिल्कुल सोच समझ कर ही।
1: और बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें जो ऐसी चीजें जो इतनी जरूरी नहीं भी हैं आज ऑनलाइन मंगानी, वो भी ऑनलाइन ही मंगाने लगते हैं कि चलो हम क्या करेंगे, बाजार जाके यहीं से मंगा लेते हैं, तो फिर फ्रॉड होने की संभावना भी ज्यादा हो जाती है, क्योंकि इस तरीके की चीजें पकी हुई जैसे उन्होंने बताया वो चीजें हमें नहीं मंगानी चाहिए ऑनलाइन। और जैसे कि और भी सामान है जो हम बाहर जाके ला सकते हैं आसपास से, तो वो बाहर जाकर ही खरीदारी करनी चाहिए।
0: और हमारे श्रोता लिखते हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग में सबसे बड़ा पछतावा होता है गलत साइज़ के कपड़े, खराब क्वालिटी, उत्पादों की तस्वीरों से बिल्कुल अलग दिखाई देना। इनसे बचने के लिए हमेशा ग्राहक समीक्षाएँ यानी रिव्यूज़ जो होते हैं और जो रेटिंग्स दिए जाते हैं और रिफंड की जो नीतियाँ हैं, इन सब चीज़ों को एक बार जाँच लेना चाहिए। केवल प्रतिष्ठित ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का ही उपयोग करना है। यहाँ ऑनलाइन शॉपिंग के मुख्य पछतावे से बचना हमें होगा।
1: बिल्कुल। और चंचल देखो, एक अंतराल का समय हो गया
0: जी।

विविध भारती पर कार्यक्रम सखी सहेली चल रहा है और हम बात कर रहे थे ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में। कमेंट्स और भी बहुत सारे हैं, बातें और भी हैं, लेकिन पहले गीत सुन लेते हैं।

0: याद रखोगे कि भूल जाओगे नजराने। तो ये ऑनलाइन शॉपिंग के विषय में ही हमारे जो एक श्रोता हैं वो लिखते हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग में सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि अभी फरवरी में छोटी बेटी की शादी थी, बच्चों को ऑनलाइन शॉपिंग करने का कुछ ज़्यादा ही शौक होता है। शादी के कपड़े, बिंदिया, गहने, ड्रेस मटेरियल और भी बहुत कुछ उसने देखा और मंगवाया भी। इसमें से कुछ सामान ऐसा भी आया जो कि दिखाया गया वो नहीं भेजा गया, वापस करने की कोई सुविधा नहीं थी। कुछ कपड़े भी जिस साइज़ के मंगवाए थे उसे साइज़ में आए ही नहीं। जूते चप्पलों का भी यही हाल था। इसे नुकसान भी हुआ क्योंकि वापस भेजने की सुविधा नहीं थी। कुछ कंपनियों ने जैसा कहा था वैसा ही भिजवाया तब अच्छा लगा। तो मेरा तो अनुभव ये रहा कि सामान वही मंगवाना चाहिए जिसमें वापस भेजने की सुविधा हो, नहीं तो हमें धोखा हो सकता है।
1: हमारे एक श्रोता का कमेंट है, उफ ये ऑनलाइन शॉपिंग कभी खुशी कभी गम। अभी हाल ही

0: किया गया एक सामान है, उम्मीद है जो मंगवाया गया वही आइटम मिलेगा, मतलब इन्हें अभी तक उस सामान की डिलीवरी मिली नहीं है, उसके बारे में लिख रही हैं। और तब मुझे कोई पछतावा नहीं चाहिए, पिछली बार पछतावा मिला जब गोल्डन और वाइट पर्ल का ऑर्डर दिया था, मगर ड्रेस एक धुलाई में ही ऐसी निकली कि मेरे सारे अरमान
1: अरमान
0: भी
1: भी
0: धुल
1: धुल
0: गए।
1: गए। तो वैसे एक हमारे श्रोता है, वो लिखते हैं कि मैंने भी सभी बच्चों को समझाया कि जितना हो सके लोकल दुकानदार से खरीदारी करें, और मैं भी सखी सहेली की सखी यानी कि मेरी धर्म पत्नी भी ऑनलाइन शॉपिंग करना पसंद नहीं करते हैं।
0: आगे श्रोता लिखते हैं कि बेटे ने एक बार लैपटॉप, टैबलेट, स्क्रीन पर काम करने वाली स्टाइलिश पेन, इस तरह की कुछ चीज़ें मंगवाई थी जिनमें 7 दिन की रिटर्न पॉलिसी थी, और जैसे ही इन चीज़ों को उपयोग में लाया तो पता लगा कि वो काम ही नहीं कर रहे हैं। तुरंत संपर्क किया और बहुत तकलीफ़ हुई इन चीज़ों को रिटर्न करने में और अमाउंट को वापस अपने प्राप्त करने में। इसीलिए मैंने बच्चों को समझाया कि जितना हो सके लोकल दुकानदार से ख़रीदारी किया करें, और जैसा कि आपने बताया था कि इनकी पत्नी है वो ऑनलाइन शॉपिंग
1: जी।
0: पसंद नहीं करती हैं, बच्चे हैं वो कर लेती
1: देखिए,
0: हैं,
1: बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी आ जाती हैं, ऐसा नहीं है कि सब कुछ चीज़ें खराब भी आती हैं।
0: लेकिन आज हम फिलहाल वही अनुभव ले रहे हैं
1: हाँ, जो
0: जिन्हें
1: इनको
0: कभी
1: हुए।
0: पछतावा हुआ। जी
1: और एक और हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि शॉपिंग की कहूँ तो भतीजे की शादी में बिटिया रानी ने कुछ कपड़े मंगवाए, सब गड़बड़ हो गया एन समय पर, फिर आखिर बाजार से तुरंत फुर्ती से दूसरे खरीदने पड़े तो पैसे गए और जो बुलाए वो भी नहीं आए। इससे अच्छा बाजार से अपनी पसंद के ही खरीदें, यही बेहतर होगा कि उनको 2 बार पैसे खर्च करने पड़े, यही
0: बिल्कुल, आप
1: कहना है।
0: बहुत सारे अति उत्साहित होकर ऐसे कोई चीज़ें ना खरीदें, ध्यान रखिएगा। और आज बता दें कि गुरु अर्जुन देव शहीद जो हैं, उन गुरु अर्जुन देव जी का शहीद दिवस है, और ये सिख धर्म के 5वें गुरु माने जाते हैं, और इनका बलिदान दिवस ज्येष्ठ माह की 24वें दिन अत्यंत श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। जहांगीर के विद्रोही बेटे राजकुमार खुसरो ने अपने पिता के खिलाफ जब विद्रोह किया तो लाहौर की तरफ वो चल पड़ा, और रास्ते में गुरु अर्जुन देव जी ने उसे आशीर्वाद दिया और उसकी सहायता भी की, और जहांगीर ने इसे राजद्रोह मानकर उन्हें सजा सुना दी, और उन्हें बहुत सारी यातनाएँ देकर शहीद किया गया था। और वो इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने अपने सिद्धांतों पर समझौता करने से मना कर दिया था, और सिख धर्म के इतिहास में उन्हें पहला शहीद माना जाता है।
1: जी, बहुत ही बड़ी बात है, उनको हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं।
0: और
1: और आज एक और
0: ये जो
1: दिवस।
0: दिन होता है ना,
1: जी
0: इस पर बहुत सारे जो गुरुद्वारे होते हैं वहाँ पर शबद कीर्तन होते हैं, श्रद्धालु आते हैं, और छबील यानी कि मीठे प्याऊ, मीठे पानी
1: हाँ
0: की जो प्याऊ होते हैं
1: ये
0: वो लगाई
1: चीज़
0: जाती है,
1: हाँ
0: और लंगर यानी कि जो भोजन
1: लंगर
0: प्रसाद है
1: होता है
0: उसकी व्यवस्था की
1: बिल्कुल।
0: जाती
1: और
0: है।
1: लंगर का खाना चंचली इतना इतना अच्छा, इतना ज़्यादा स्वादिष्ट होता है ना कि मन करता है कि आप वहाँ रोज़ जाके खाएं, क्योंकि लंगर की सेवा वो हमेशा करते हैं।
0: और वो बहुत श्रद्धा
1: जी
0: से पकाया गया भोजन होता है, वो सिर्फ
1: बिल्कुल
0: भोजन नहीं होता, वो प्रसाद होता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और अब हम एक और दिवस है इसके बारे में बात करें कि एक गीत सुनने पहले
0: पहले गीत सुन लेते हैं।
1: बिल्कुल गीत सुन लेते हैं।

0: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
1: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
0: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
2: एक टुकड़ा धूप का।
0: इस मंगलवार सेलुलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
1: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
0: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: तो भाई खाना बनाते समय कुछ ज़रूरी चीज़ें होती हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए, और बड़ी लंबी चौड़ी फहरिस्त आ गई है हमारे पास, हमारे श्रोताओं ने हमें लिखकर
4: बहुत कुछ लिख डाला है भाई
3: जी।
4: और एक हमारे श्रोता जो लिखते हैं कि खाना बनाते समय सबसे पहला काम सारी तैयारी पहले कर लेनी चाहिए, इससे गैस की भी बचत होती है और परेशानी से भी बच सकते हैं, और खाना बनाते समय अपने मन को भी खुश रखना ज़रूरी है, और उसके लिए विविध भारती है ना, वो तो है। और वैसे एक बात हम कहना चाहेंगे कि क्या कभी किसी ने भजन सुनते हुए खाना बनाया है? बना कर देगी, स्वाद में अंतर जरूर नजर आएगा। आप चाहे भजन सुने या फिर कोई गीत अपने मनपसंद सुने, खाने में स्वाद तो आएगा ही आएगा जब हम खुश होकर बनाएंगे।
3: और बिल्कुल सही बात है, अगर आप कुछ भी नहीं सुन रहे हैं, आपकी भावना बहुत अच्छी है उस खाने को बनाने के लिए, बहुत प्रेम से किसी के लिए कुछ पका रहे हैं, तो वो खाना वैसे भी स्वादिष्ट बनेगा। अमूमन खाना जो है घर में महिलाएं ही पकाती हैं, पुरुष नहीं पकाते हैं, लेकिन हमारा जो कार्यक्रम है,
4: चंचल जी ऐसा मत कहिए क्योंकि आजकल पुरुष बहुत ज्यादा काम करने लगे हैं,
3: लेकिन मैंने कहा अमूमन ही
4: होता है, ये तो
3: है ना। तो हमारे जो पुरुष होता कार्यक्रम को सुनते हैं और जो कभी कभार रसोई में खाना भी पकाते हैं, उन्हीं का संदेश मैं पढ़कर सुना रही
4: हूँ। बिल्कुल बिल्कुल,
3: मैं खाना नहीं बनाता इसलिए कोई खास टिप्स नहीं है मेरे पास।
4: अच्छा।
3: पर सुबह की पहली चाय मैं हमेशा बनाता हूँ, तो एक टिप है मेरे पास
4: जी। बिल्कुल,
3: चाय की एक बूंदी प्लेटफॉर्म पर गिरती ही इसे तुरंत साफ करता हूँ, यानी कि खाना बनाते वक्त साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, ये बहुत बड़ी टिप है,
4: बहुत जरूरी
3: है। ऐसा इसलिए भी होता है कि अगर पुरुष जो होते हैं, अगर किचन में खाना बनाया तो वो क्या करते हैं, बस खाने में स्वादिष्ट होना चाहिए इसका तो ध्यान रखेंगे, लेकिन किचन वहीं पूरी फैली पसरी छोड़कर वो आते हैं। तो इन्होंने इस बात का खास ध्यान रखा है कि इनकी श्रीमती जी उस चीज से नाराज ना हो कि भाई चाय की बूंदी गिरी है तो वो ना हो,
4: एकदम साफ सुथरा किचन मिले। बहुत अच्छी बात है। और एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि अनाज दाल और बेकिंग के टिप्स बता रहे हैं वो, तो इसमें चावल के बारे में बता रहे हैं। तो चावल उबालते समय पानी में कुछ बूंदे नींबू के रस या घी की डाल दी जाए, इससे चावल के दाने आपस में चिपकेंगे नहीं, और अगर आपको दाल जल्दी पकाना है तो सूखी दालों या छोलों को पकाने से पहले कुछ घंटे पानी में भिगो दीजिए, इससे वो जल्दी पकते हैं और गैस की बचत भी होती है। और आटा गूंथते समय गुनगुने पानी या थोड़ी सी दूध का इस्तेमाल करने से रोटियां बेहद नरम और फूली हुई बनती हैं।
3: इसी तरह से कुछ और टिप्स हमारे पास आए हैं कि हरी सब्जियों का रंग, जैसे मटर पालक इस तरह की जो भी होती हैं सब्जियां, उनका रंग बरकरार रखने के लिए चुटकी भर चीनी डालने से उनका हरा रंग बना रहता है। विटामिन का अगर संरक्षण करना है तो सब्जियों को बहुत बारीक बारीक टुकड़ों में काटने की बजाय या पानी में उबालने की बजाय बड़ा थोड़ा मोटा काटें, और पानी में उबालने के लिए उनके विटामिन नष्ट हो जाते हैं, तो ऐसा ना करें, इसीलिए इन्हें मध्यम आकार के

0: आकार में काटें, और आलू बैंगन अक्सर काले पड़ जाते हैं तो इन्हें जैसे ही काटें तुरंत नमक वाले पानी में रखें जिससे वो काले नहीं पड़ेंगे, और लहसुन की कलियों को कुछ देर गर्म पानी में भिगोकर रखने से छिलका बड़े आसानी से निकाला जा सकता है।
1: अरे वाह क्या बात है। और एक हमारी श्रोता है जो बहुत ही कि खाने बनाने का समय का टिप्स हम क्या दे सकते हैं भला, जिसे खाना बनाना ना आया, ना गाना आया, ना बजाना आया, सिर्फ और सिर्फ दिलबर के हाथों का खाना खाना आया। तो मतलब ये इन्होंने खाना खाना सीखा है, खाना बनाना नहीं सीखा है। कोई बात नहीं, आप अभी भी आप सीख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं,
0: नहीं भी खाना बनाते तो सिर्फ अगर मदद भी करेंगे ना अपनी बहन की, माताजी की, श्रीमती जी की, तो उनके चेहरे पर एक मुस्कान ले आइए, ये भी बहुत बड़ी बात।
1: बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ी सी तैयारियां करा दीजिए, सामान ले आइए या उनके लिए कुछ अच्छा ले आइए जिससे वो खुश हो जाए और अच्छा अच्छा खाना खिला पाए।
0: और हमारे श्रोता लिखते हैं कि खाना बनाना एक कला है जिसे थोड़ी सावधानी और सही तरीकों से और बहुत आसान बनाया जा सकता है। खाना बनाने से पहले सभी आवश्यक सामग्री तैयार कर लेनी चाहिए जिससे समय की बचत हो जाती है। मसालों और नमक का प्रयोग संतुलित मात्रा में करना चाहिए और गैस और बर्तनों को सावधानी पूर्वक उपयोग करें। बीच बीच में स्वाद चखते रहना चाहिए ताकि कोई चीज़ कम या ज़्यादा ना हो जाए।
1: बिल्कुल। और एक हमारे श्रोता हैं जो लिखते हैं कि प्याज को अच्छी तरह सुनहरा भूरा होने तक भूनने से भोजन में गहरा स्वाद और प्राकृतिक मिठास आती है। सब्जी या दाल में ज़्यादा नमक अगर हो गया है तो करी या सूप में नमक तेज हो जाए तो उसमें उबला हुआ आलू या गूथे हुए आटे की छोटी सी गोली छोटी छोटी गोलियाँ बनाकर डाल दीजिए, वो अतिरिक्त नमक सोख लेंगी। गाढ़ी और मखमली ग्रेवी के लिए टमाटर प्याज की ग्रेवी को गाढ़ा करने के लिए आप उसमें भुना हुआ बेसन, काजू का पेस्ट या उबले आलू को मैश करके मिला सकते हैं। और ग्रेवी में दही मिलाते समय आप आंच को धीमा रखिए, इससे लगातार चलाते रहिए ताकि दही जो है वो फटेगी नहीं।
0: अगले टिप में लिखा है कि अगर आप घर में ही घी बनाते हैं मलाई से और मलाई जमा कर रहे हैं तो उसमें थोड़ी सी दही मिला दें और उसके बाद उसे फ्रिज में रखें, और जिस दिन मक्खन निकालना हो उसे थोड़ी देर ही पहले बाहर निकाल कर छोड़ दीजिए, इससे थोड़ा सा फर्मेंट हो जाता है और मक्खन निकालने के बाद स्वादिष्ट मट्ठा भी तैयार होता है। मलाई को 8 दिन, अगर मलाई से निकाल रहे हैं तो उसे 8 दिन में ही कंज्यूम कर लें और इसे फ्रिज में ही रखें, और जिस दिन मक्खन निकालना हो उसी दिन फ्रिज से बाहर निकालें। मथने के बाद ठंडे पानी में बर्फ़ डालकर मक्खन को तुरंत रखें, और गर्मियों में जो मट्ठा है वो निकलता है उसमें बड़ा स्वाद होता है।
1: बिल्कुल। और चंचल जी, हम एक संदेश को सुन लेते हैं, उसके बाद हम बात करें आगे की।
0: जी
2: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
3: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था, हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
2: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: हमारे सुनने वाले लिखते हैं कि इस मौसम में अरबी बहुत मिलती है और अरबी गले में भी लगती है, उन्हें छूने से हाथों में खुजली भी होती है, तो अच्छा है ग्लव्स पहनकर यानी कि दस्ताने पहनकर इसे छीला जाए। अगर आपके पास दस्ताने नहीं हैं तो पूरे हाथ को हाथ पर सूखा आटा लपेट लें, और उसके बाद अगर अरबियों को छीलेंगे तो वो हाथ पर चिपकती नहीं है और खुजली भी नहीं होती है। बड़ा अच्छा टिप दिया है।
1: बिल्कुल सुनते हैं।

0: आरती, तुम्हें ध्यान है कार्यक्रम की शुरुआत में हमने बताया था कि आज है 18 जून जो कि होता है सतत गैस्ट्रोनॉमी दिवस, और ये स्वस्थ और सुरक्षित बेहतर भविष्य के लिए बहुत ज़रूरी है जिनको मनाना। और जब भी हम किसी सांस्कृतिक विविधता की बात करते हैं तो सबसे पहले वहाँ के पहनावे और खान पान की ही बात की जाती है।
1: बिल्कुल, और गैस्ट्रोनॉमी भोजन और संस्कृति के बीच संबंधों का अध्ययन है जिसे अच्छे खान पान की कला और विज्ञान के रूप में भी जाना जाता है। गैस्ट्रोनॉमी को कभी कभी भोजन की कला भी कहा जाता है। इसे किसी विशेष क्षेत्र के खाना पकाने की शैली या फिर स्थानीय भोजन के संदर्भ में हम समझ सकते हैं। और सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है कोई भी कार्य जैसे कि कृषि हो, मछली पकड़ना हो, भोजन तैयार करना हो, इस तरह से किया जाए जिससे हमारे प्राकृतिक संसाधनों की बर्बादी ना हो और भविष्य में भी इसे जारी रखा जा सके बिना हमारे पर्यावरण या स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाए हुए।
0: बिल्कुल, भोजन की बर्बादी से जुड़े हुए जो भी मुद्दे हैं उसके बारे में जागरूकता बढ़ाता है और इसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए प्रोत्साहित भी करता है। अपने आहार में जो भी पारंपरिक फसलें हैं उन्हें हम शामिल कर सकते हैं जो हमारे क्षेत्र में पाई जाती हैं, जो खनिज और विटामिन से भरपूर भी होती हैं, और कई तरह के जो व्यंजन हैं उनको तो हम अपनी यात्राओं में भी आजमा सकते हैं। और अब एक गाना सुन लें।
1: बिल्कुल,
2: मेरी मोहब्बत पाक मोहब्बत और जहां की खाक मोहब्बत।

0: भाई ये था कार्यक्रम का अंतिम गीत और समय हो चला है सखियों से विदा लेने का।
1: तो आरती श्रीवास्तव को और
0: चंचल वर्मा को दीजिए इजाजत।
1: नमस्कार, नमस्कार। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: नमस्ते दोस्तों, आ गई हूँ मैं आपके रेडियो सखी ममता सिंह लेकर आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। दोस्तों, गर्मी की इस चिलचिलाती दोपहरिया में कोई चीज सुकून देता है तो वो है पानी या फिर शरबत या फिर आइसक्रीम। लेकिन इसके अलावा इन सब से परे जो सुकून और ठंडी छांव देता है वो है सुरीले गीतों की सौगात। सुरीले गीतों की फरमाइश करते हैं आप सभी श्रोता, मीठी और दिलचस्प बातें करते हैं आप सब। तो चलिए फिर शुरू करते हैं सिलसिला बातों और गीतों का। ये है आज के प्रोग्राम का पहला कॉल। हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार जी।
0: नमस्कार, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: जी मैं ठाणे महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ।
0: जी बताइए, आपका नाम क्या है?
1: मेरा नाम रामेश्वर प्रसाद चौहान है।
0: रामेश्वर जी, क्या काम काज करते हैं आप थाने में?
1: मेरा काम है, छोटा मोटा दुकान है, घर के अंदर ही है, हॉल और अस्तर ये सब है।
0: अच्छी बात है, ठीक है। काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, सभी काम अच्छे होते हैं, काम करना चाहिए, कोई काम छोटा नहीं होता।
1: जिंदगी तो इसी में निकल गई है हमारी, पिछले 32 साल से ही कर रहा हूँ।
0: तो आप बताइए कौन सा गाना सुनना चाहते हैं रमेश जी?
1: ओ, एक कुल दो मालिक का है, तुझे सूरज कहूँ या चंदा,
0: तुझे दीप कहूँ या तारा। तो किसके लिए सुनना चाहते हैं? कभी बच्चे को गाकर सुनाया है ये गाना आपने?
1: बच्चे लोग को मैं बहुत सुनाता हूँ, लेकिन आजकल पुराना गाना सुनने के लिए तैयार ही नहीं रहता इन लोग।
0: अच्छा, नए गाने पसंद करते हैं बच्चे। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें फोन किया। अब बातचीत

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, कौन बोल रहे हैं और कहां से बोल रहे हैं?
1: जी मैम, मैं लक्ष्मण सिंह चंदेल बात कर रहा हूं मैम, ग्राम बोतराई, तहसील पथरिया, जिला दमोह, मध्य प्रदेश से।
0: तो आपका गांव कैसा है, जरा गांव की कुछ विशेषता बताइए अपने।
1: गांव बहुत बड़ा है मैम, यहाँ की मतलब आबादी 5,000 की समथिंग है मैम।
0: और पैदावार क्या होती है?
1: यहाँ पे सोयाबीन मुख्य खेती मतलब बोनी होती है सोयाबीन की।
0: और सोयाबीन बहुत पौष्टिक होता है खाने के लिए, बहुत रिच प्रोटीन होता है।
1: जी जी मैम।
0: तो व्यापार भी करते हैं, मतलब बिकता भी है सोयाबीन या फिर खाने भर का?
1: हाँ मैम, मंडी के लिए भी ले जाते हैं।
0: अच्छा, और बाकी चीजों में जैसे दाल चावल और गेहूँ धान, इन सब में क्या होता है ज्यादा पैदावार?
1: अरहर होती है मैम यहाँ पे, मूंग भी होती है, उड़द भी होता है, मूंगफली भी होती है मैम।
0: भाई देखिए, गांव मतलब जब आम का मौसम है, गर्मी का मौसम यानी आम का मौसम, और इस समय आम जो लोग गांव में रहते हैं उनको आम खाने का बड़ा सुख मिलता है। तो बाग आपके पास भी है?
1: 4-5 पेड़ लगे हैं मैम हमारे खेत पे।
0: अच्छा, सिर्फ 4-5 पेड़? भाई हमने तो
1: 4-5
0: बाग देखे हैं, वो बड़े बड़े बाग दूर दूर तक फैले, आम के पेड़, जामुन के पेड़। संख्या पेड़ों की कम हो रही है ऐसा लगता है।

0: नहीं नहीं मैम, गांव में तो बहुत है लेकिन हम खेत पे लगाए हैं इसमें मिट्टी पांच छह पीढ़ी।
1: अच्छा अच्छा जी, बताएं कौन सा गाना आपको सुनवाए?
0: बेफसलम का सुनना है मैम।
1: कौन सा?
0: अच्छा शिमला दिया तूने मेरे प्यार के, ये गीत की बोल है मैम।
1: अच्छा, क्या कभी दिल टूटने की बात आई थी क्या जीवन में ऐसा गाने?
0: नहीं मैम, तरफ नहीं, नहीं पसंद नहीं है मैम।
1: अच्छा अच्छा जी, एक समय जब फिल्म आई थी ना तो ये गाना बहुत मशहूर हुआ था, हर किसी की जबान पर ये गाना होता था। तो चलिए शुक्रिया अदा कर रहे हैं आपका, आपने हमें फोन किया, सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश
1: जी। नमस्कार जी।
0: नमस्कार जी, कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं?
1: जी मेरा नाम नई मलिक है, मैं सेंट्रल कश्मीर से बात कर रहा हूँ।
0: अच्छा, कश्मीर की किस जगह से?
1: जी मैं बड़गाम डिस्ट्रिक्ट से बात कर रहा हूँ। हमारे गांव का नाम है बड़गाम, ये एक खूबसूरत एरिया में पड़ता है, एक टूरिस्ट एरिया में ये पड़ता है।
0: वाह भाई वाह। तो श्रीनगर से कितनी दूर है आपका गाँव?
1: हम 45 किलोमीटर दूर है श्रीनगर से।
0: अच्छी बात है। तो अगर पर्यटक वहाँ जाते हैं तो वहाँ तक पहुँचने के लिए क्या सुविधा है, गाड़ी से या घोड़े से, कैसे जाया जाता है?
1: बस गाड़ी से आते हैं। और जो कश्मीर का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है वो हमारे डिस्ट्रिक्ट में ही मौजूद है, और एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी हमारे बड़गाम में ही मौजूद है। और अब तरह तरह की सड़कें भी है और गाड़ी से भी आते हैं। और जो हमारा जो टूरिस्ट एरिया है वहाँ पर कोई सैलानी

0: घोड़े को भी पसंद करते हैं।
1: क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो आपका क्या काम काज है वहाँ?
0: जी मैं बिजनेस करता हूँ, टेल मार्बल और सिटी के सामान बेचता हूँ, जैसे दीवार पर पेंट पेंट लगाते हैं वही मैं बिजनेस करता हूँ।
1: अच्छी बात है। तो इस समय वहाँ का मौसम कैसा है, ठंडा है गर्म है?
0: थोड़ी गर्मी भी है, तो जून का महीना चल रहा है, गर्मी भी है लेकिन साथ साथ कभी कभी बारिश भी होती है, और पिछले हफ्ते और इस हफ्ते में भी बारिश भी हो रही है और गर्मी भी है। और अच्छी बात यह है कि बहुत सारे सैलानी भी आते हैं, हमारे कश्मीर के अंदर बहुत सारी टूरिस्ट जगह है, वहाँ बहुत सारे लोग आते हैं।
1: क्या बात है, गर्मी तो आपके लिए होगी क्योंकि आपकी आदत ज्यादा ठंड की है, जो सैलानी आते होंगे उनके लिए ज्यादा गर्म नहीं लगता होगा।
0: यहाँ पर ज्यादा 35-35 डिग्री यहाँ पर सबसे ज्यादा गर्मी होती है, लेकिन जो हमारे हिंदुस्तान के कई शहरों में 40 से भी ऊपर डिग्री गर्मी होती है,
1: 48
0: नॉर्मल सी लगती
1: जी
0: है।
1: तो बहुत ज्यादा गर्मी से जूझते हुए जब वहाँ लोग पहुँचते होंगे तो ठंडक महसूस होती होगी। वहाँ की कुछ नदियों, वहाँ की झील के बारे में बताना चाहते हैं तो बताइए, अगर आपको जानकारी है तो।
0: हमारे इलाके में सबसे एक मशहूर झील है, उसको दूध गंगा कहते हैं, उनका जो पानी बिल्कुल साफ और नेचुरल पानी होता है। और अगर आप हम जंगल के उस पार जाएंगे या जंगल के उन जगहों पर जाते हैं जहाँ पर टूरिस्ट है, वहाँ पर बहुत सारी नदियाँ है, चाहे अगर आप पहलगाम की बात करेंगे, सोनमार्ग, गुलमार्ग या दूध पत्र की, तरह की नदियाँ हैं जो बहुत ही उनका पानी भी मीठा है और साफ भी है। और अगर आप कश्मीर में रहते हैं तो कश्मीर का आपको ऐसा पानी मिलेगा।
1: पहलगाम और गुलमर्ग के पास तो लिद्दर नदी भी बहती है, हमें याद है कि
0: आपको सबसे मान
1: वो,
0: जी आपको पता है ये पहलगाम में
1: हाँ,
0: कश्मीर में पड़ता,
1: उस नदी का पानी हमने छुआ भी, बहुत ठंडा पानी था क्योंकि हम ठंड
0: बहुत
1: के
0: ठंडा
1: मौसम
0: पानी।
1: में गए थे। अच्छी बात यह है कि पानी बिल्कुल पारदर्शी लगता है। बताइए इस समय गाना कौन सा सुनना चाहते हैं आप?
0: ये साजन फिल्म का नगमा है, देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार।
1: चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें फोन किया और कश्मीर के बारे में इतनी उम्दा बातें आपने शेयर की श्रोताओं के साथ। सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: मैं मध्य प्रदेश से देवास जिले से गोविंद प्रसाद जलोदिया बोल रहा हूँ।
0: तो गोविंद जी, देवास मध्य प्रदेश किसी खास व्यक्ति के लिए संगीत के लिए मशहूर है, शास्त्रीय संगीत के एक मर्मज्ञ, वहाँ के मूर्धन्य संगीतज्ञ पैदा पंडित कुमार गंधर्व जी, जो उनका निवास है, देखा है आपने? बाहर से देखा होगा, बहुत सुंदर बना हुआ है।
1: वो क्या है, वैसे खातेगांव से देवास की दूरी 100 किलोमीटर है करीब।
0: अच्छा, तो गए हैं आप
1: देवास? वो आना जाना रहता ही रहता है
0: जी। बिल्कुल, शास्त्रीय संगीत के चाहने वाले वहां तक जाते हैं, पंडित कुमार गंधर्व के दरवाजे तक मत्था टेक कर आते हैं। कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं?
1: सर वो बरसात का गाना है, लता मंगेशकर की आवाज में, हवा में उड़ता जाए लाल दुपट्टा मलमल कर।
0: क्या बात है, बहुत सुरीला गाना चुना है आपने। तो क्या पुराने गाने ज्यादा पसंद आते हैं आपको?
1: अच्छा हाँ, वो क्या है, पुराने गाने ही पसंद करता हूँ मैं। और दूसरी बात यह है कि वो शुरू से ही मेरे को लगाव है ये गाने पिक्चर से। क्या है कि मेरे को रेडियो का बहुत शौकीन था शुरू से ही, 1967-68 से ही।
0: अच्छा अच्छा,
1: तो घर वालों ने मेरे को रेडियो ट्रेनिंग में भेज दिया था। पहले बाल वाले रेडियो चलते थे,
0: यानी
1: लगती थी कि उसकी ट्रेनिंग होती थी।
0: अच्छा।
1: सीखने के लिए तो मेरे को इंदौर में भेज दिया था सीखने के लिए। तो फिर मैंने इंदौर में भी काम किया, फिर खातेगांव में दुकान खोल दी रेडियो की।
0: अरे वाह,
1: वाले रेडियो।
0: क्या बात है, तो अभी भी है रेडियो वाली दुकान आपके पास?
1: अब तो मैंने बंद कर दी, अब तो मेरे से बनता नहीं है।
0: तो क्या करते थे, रिपेयरिंग करते थे?
1: रिपेयरिंग करता था और वॉल वाले रेडियो बनाते भी थे।
0: अच्छा, क्या बात है, ये तो बहुत बड़ी बात बताई आपने। वॉल वाले रेडियो अब मिलते नहीं है?
1: हाँ, 5 बार 3 बार 2 बैंड 3 बैंड ऐसे चलते थे वो।
0: जी जी, तो अभी लोग आपसे कहते हैं कि मेरा रेडियो खराब हो गया, जरा रिपेयरिंग करके दे दो?
1: नहीं, आप तो अपने से बनता भी नहीं है, अब रेडियो का जमाना है ही नहीं। अब रेडियो का जमाना खत्म हो गया, धीरे धीरे करके फिर ट्रांजिस्टर शुरू हो गए, सेल वाले। अब सेल वाले से अब मोबाइल पे आ गए।
0: लेकिन सुनना कहाँ बंद हुआ, रेडियो से प्यार तो वैसे ही है।
1: सुनना तो नहीं रहा, अब तो सुनना तो और ज्यादा होगा, क्योंकि पहले आजकल तो क्या है कि बड़ी मुश्किल से देश भारती आकाशवाणी लगता था, और आजकल तो क्या है कि घर बैठे ही, मतलब घर में मिल रहे हैं सभी स्टेशन में,
0: मोबाइल पे भी सुन सकते हैं आप।
1: और मोबाइल,
0: पहले वो जो रेडियो बड़ा वाला होता था उसमें आप वो जो बटन होता था, बटन को घुमाते रहो, कई बार विविध भारती पकड़ने में बहुत दिक्कत होती थी, मुश्किल होती थी,
1: दिक्कत होती थी। हाँ, इधर से उधर तक नहीं लगता था
0: जी, लेकिन उसका एक अलग आनंद था उस रेडियो का।
1: हाँ, वो तो अलग ही था, उसकी उस प्रकार की उसकी बॉडी भी इतनी अच्छी बनती थी कि संगीत में मजा आ जाता था। और इतने सारंगी वगैरह इतने भी उस टाइम समा लगते।
0: बहुत सारे कलाकारों को रेडियो ने मंच दिया, बहुत सारे कलाकार को रेडियो ने गढ़ा, तो रेडियो का बहुत बड़ा योगदान रहा है जीवन में हम सबके। तो बरसात फिल्म का गाना आपने पसंद किया है, शुक्रिया अदा कर रहे हैं हम, और अब आपको सुनवा रहे हैं यही गाना।

0: हेलो फरमाइश
1: मैडम जी। नमस्कार जी।
0: नमस्कार जी, कौन कहाँ से बोल रहे हैं जी?
1: हाँ जी मैडम जी, मैं करणवीर सिंह पॉल जलंधर पंजाब से।
0: करणवीर सिंह जलंधर पंजाब के बारे में बताइए, क्या हाल चाल है जी?
1: बिल्कुल ठीक, बहुत बढ़िया। अभी तो थोड़ी दो दिन बारिश हुई है तो मौसम अभी ठंडा हो गया है। पहले तो बहुत ज्यादा तपिश थी, तो अभी फिर वैसे बारिश होने के चाहते हम तक बारिश हुई।
0: और गर्मी के बाद जब बारिश आती है तो राहत बहुत मिलती है, लेकिन उसके बाद जब बारिश रुक जाती है
1: राहत मिलती है। इधर तो पहले तो 45 टेम्परेचर हो गया पंजाब में, अभी कुछ राहत मिली है पहले से। तो आप सुनाओ, मुंबई का कैसा हाल है?
0: बस मुंबई में भी गर्मी बहुत पड़ रही है इस समय, बारिश का इंतजार है हम सबको, और बारिश के छींटे आप अपनी बातचीत के जरिए और गानों के जरिए बता दीजिए। वैसे भी पंजाब का लोकगीत बहुत समृद्ध है।
1: बिल्कुल जी, हम तो विविध भारती थे, हम प्रसार भारती थे, 1970 से लेकर जुड़े हुए हैं।
0: क्या बात है,
1: तो आज तक बहुत हमें हमारा इन्होंने साथ दिया है, तो 90 वर्ष भी पूरे हो गए हैं। तो हम तो कहते हैं अभी 10 साल और बाकी है, सेंचुरी हो जाएगी पूरी, तो हमें बहुत खुशी मिलेगी। और
0: जी बिल्कुल बिल्कुल, और सेंचुरी होगी वो तो सेलिब्रेट किया जाएगा, उसके बाद भी विविध भारती चलती रहेगी, रेडियो चलता रहेगा।
1: बिल्कुल चलती रहेगी, वो तो चलती रहेगी, लेकिन हमें बहुत लगेगी, हमें देखो इतना साल हो गया।
0: कोई पंजाबी लोकगीत वगैरह याद है आपको?
1: पंजाबी लोग हमारे सुरेंद्र कौर और प्रकाश कौर ने बहुत लोकगीत गाए हैं, लेकिन मेरे को उनका तो याद नहीं। मेरे को गुरदास मान का एक गीत बहुत ज्यादा है,
0: गा के सुनाइए ना श्रोताओं को हमारे।
1: गुरदास मान जी का गीत है बह के वेख। हाँ। वो बह के वेख जवाना बाबे भंगड़ा पौंदे ने, वो बह के वेख जवाना बाबे भंगड़ा पौंदे ने। बस इतनी जी, दो लाइन बोलेंगे।
0: जी जी बढ़िया। और वहाँ का खान पान भी बड़ा मशहूर है, बहुत अच्छा लगता है।
1: बिल्कुल जी, सर्दी होती है तो सर्दी में तो हमारे मक्के की और सरसों का साग।
0: हाँ जी हाँ जी,
1: मक्खन घी दही सब कुछ।
0: क्या बात है भाई,
1: फिर तो
0: वाह वाह वाह। आप अपने वहाँ के बारे में बताइए, किस चीज की पैदावार वहाँ पर होती है आपके गाँव में?
1: हमारे पंजाब में ज्यादा करके ना गेहूँ होता है, तो जैसे अभी धान की खेती शुरू हो गई है, गेहूँ होता है, गन्ना होता है, ये खास चार फसलें ये खास होती है, बाकी पशुओं के लिए चारा भी होता है। ये चार फसलें तो वैसे हमारे पॉपुलर है ना, ज्यादा करके होती है, जैसे गन्ना हो गया, मक्का हो गया, गेहूँ हो गया और धान हो गया।
0: तो मक्का होता है तो मक्के की रोटी और सरसों का साग तो मशहूर है ही है। तो
1: बिल्कुल जी, मक्के की रोटी सरसों का साग, जैसे मक्के के भुट्टे भुट्टा भी बाजार में आने लग गया ना हमारे इधर, भुट्टा हम खा लेते हैं, तो जो उसका जो तना होता है वो पशुओं चारा बन जाता है।
0: अच्छा अच्छा, क्या बात है, ये तो बड़ी उम्दा बात बताइए भाई। हमारे श्रोता अगर सुन रहे हैं तो इसका उपयोग कर सकते हैं कि मक्का खाने के बाद जो उसका तना होता है वो पशुओं के खाने के काम आ सकता है। बताइए कौन सा गाना आप सुनेंगे?
1: गीत मैडम सुना दीजिए आज मुझे, फिल्म का नाम।

0: है भतीजा जीते बोल है चलते चलते मुझे कोई मिल गया था।
1: क्या बात है, बहुत ही बेहतरीन गाना चुना है आपने। मीना कुमारी और राजकुमार हैं इस फिल्म में, है ना? देखी थी फिल्म?
0: जी देखी है जी मैंने फिल्म।
1: हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें फोन किया। अब सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना, फिल्म का नाम पाकीज़ा।

0: हेलो फरमाइश
1: जी, मैं मोहम्मद कोरा श्रीनगर से, जवान मोहम्मद ऋषि
0: जी बताएं क्या हाल है आपका और श्रीनगर का क्या हाल है?
1: श्रीनगर का हाल तो बहुत ही अच्छा है, और आजकल तो मौसम बहुत ही अच्छा है, सुहाना है मौसम है।
0: अच्छा, बारिश हो गई है, गर्मी पड़ रही है, गर्मी के मौसम में भी सुहाना मौसम।
1: जी बिल्कुल, बारिश भी हो रही है और धूप अच्छी है, फिर भी मौसम बढ़िया है। और आपके प्रोग्राम सुनते हैं हम, बहुत ही मजा आता है।
0: जी बहुत बहुत शुक्रिया। कौन कौन से प्रोग्राम सुनते हैं आप?
1: सुबह से लेकर शाम तक तकरीबन हम सभी प्रोग्राम सुनते हैं, क्योंकि हमारा जो काम है ना, वो पश्चिम का काम, मजा आता है इसमें, रेडियो दिन भर ऑन होता है, बहुत ही अच्छा लगता है।
0: पश्मीने का काम?
1: जी बिल्कुल
0: जी, पश्मीने का शॉल बहुत मशहूर है, लोग जाते हैं जब कश्मीर तो वहाँ से खरीद कर ले आते हैं।
1: जी जी,
0: तो उसकी खासियत क्या होती है थोड़ा सा बताइए हमारे श्रोताओं को, कितनी मेहनत लगती है, कितना वक्त लगता है?
1: जी बिल्कुल, कौनी जामा होता है ये, मतलब महंगा ही होता है, 1,50,000 1.5 लाख तक भी होता है।
0: जी जी,
1: मतलब एक थोड़ा बहुत कठिन ही काम है, धागे मतलब जैसे तीली से बनाते हैं हम, मतलब हैंड से बनाते हैं हम।
0: इसमें धागे का प्रयोग करते हैं, ऊन का प्रयोग करते हैं?
1: ऊन का होता है, उसमें फिर हम फिर धागे बनाते हैं ना, फिर वो हम तीली पे लगा, मतलब उसमें
0: वो जो डिजाइन बनाते हैं वो धागे से बनाते हैं?
1: हाँ, वो धागे से बनाते हैं।
0: तो काफी मेहनत होती है, काफी वक्त लगता है ना। अब बताइए कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं?
1: सहेली फिल्म है, उसी में एक गाना है, इतना तो कह दो हमसे तुमसे ही प्यार है, लता और हिम्मत कुमार।
0: क्या बात है, बेहद सुरीला गाना पसंद किया आपने, और बहुत दिनों बाद इस गाने की फरमाइश आई है। खुद भी आप गाते गुनगुनाते हैं क्या?
1: थोड़ा बहुत।

0: कहते हैं।
1: गाना चाहे तो गा के सुनाइए, हमारे श्रोता भी सुनेंगे, आप गुनगुनाएंगे तो।
0: चलिए, आपने कहा तो कोशिश करेंगे।
2: कितना तो कह दो हमसे, तुमसे ही प्यार है, तुमसे ही प्यार है, मेरी खामोशी सजना तेरा इकरार है।
1: बहुत शुक्रिया, सुनते हैं सहेली फिल्म का ये गाना।
3: इतना तो कह दो हमसे।

0: हेलो फरमाइश
1: जी। नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन कहाँ से बोल रहे हैं जी?
1: जी मैं मनोहर लाल गांधी विजयनगर चाणक्य चौक गाजियाबाद से बोल रहा था।
0: जी मनोहर लाल जी, बताइए क्या हाल है आपका और गाजियाबाद का क्या हाल है?
1: बस ठीक है जी। गाजियाबाद का तो बहुत ही अच्छा हाल हो गया क्योंकि मेरी कॉल लग गई आज विविध भारती।
0: पर गर्मी बहुत पड़ रही है ना, दिल्ली पूरा इलाका बहुत गर्म सुना है हमने।
1: गर्मी तो बहुत पड़ रहा था लेकिन आज मौसम ठीक हो गया। सुबह सुबह अपना बादल आए, थोड़ी बूंदाबांदी हुई, तो मौसम ठीक है आज।
0: बादलों ने सुकून दिया आपको, तो इस सुकून के बाद आप बताइए कौन सा सुकून दे गाना सुनना चाहते हैं?
1: ये गाना सुनना चाहता हूँ मैं, फिल्म चमत्कार का, जिसके बोले हैं, इस प्यार से मेरी तरफ ना देखो।
0: जी आप तो गाते भी अच्छा खासा।
1: जी यहाँ पे हम गाते रहते हैं करोके म्यूजिक से, हमारे दोस्त हैं, बहुत सारे बुजुर्ग दोस्त हैं, जहाँ अपना हफ्ते में एक दिन प्रोग्राम बनाते हैं और गीत संगीत के साथ ही हम जुड़े रहते हैं और बचपन से हम विविध भारती सुनते आए हैं, आज भी सुन रहे हैं।
0: क्या बात है, ये जो सब ग्रुप में गाने वाली बात कही, हमारे बहुत सारे श्रोता इससे प्रेरणा ले सकते हैं कि जब आपके पास फुर्सत के लम्हे होते हैं तो आप सब साथ में गाने गुनगुनाने का, सुनने का एक अलग मजा होता है।
1: संगीत साथ होता है, विविध भारती साथ होता है, तो सकारात्मक सोच भी उत्पन्न होती है और दिल भी हमारा खुश रहता है
0: और बहुत सारे झंझावात तनाव भूल जाते हैं गानों के साथ जब होते हैं, है ना?
1: तनाव तो खैर होता ही नहीं है और बीमारियों से भी हम जो दूर रहते हैं क्योंकि संगीत एक थेरेपी की तरह है।
0: क्या काम काज है वैसे आपका?
1: ये मेरी कपड़े की शॉप है यहाँ पे,
0: तो साथ में रेडियो चलता रहता है।
1: हाँ जी रेडियो चलता रहता है, ऐप के थ्रू अपना साफ आवाज में हम सुनते रहते हैं यहाँ पे।
0: जी बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, फोन किया आपने। सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना, फिल्म का नाम चमत्कार।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार ममता जी।
0: नमस्कार, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मैं गुजरात से बात कर रहा हूँ, धीरज जबारी
0: जी। बताएं धीरज जी, क्या हाल है आपका?
1: मौसम अच्छा है, मेरा भी अच्छा हाल है और मैं पेड़ों के नीचे से बात कर रहा हूँ। यहाँ मोर भी बहुत है, लेकिन जब हमारी बात हुई जो अगर मोर एक दो टहके तो अच्छा रहे। हाँ। लेकिन ये पक्षी है, हमारे कहने से कुछ नहीं बोलते, अपने आप में बोलते हैं।
0: अच्छा, कौन सा पक्षी है?
1: मोर है, बहुत है मोर। लेकिन हाँ, हाँ, अभी बादलों में कई बार बोलते हैं, लेकिन जब हमें पता है कि जब बोले तब नहीं बोल पाएंगे।
0: उन्हें नहीं पता है ना कि हमें कब बोलना है, कैसे बोलना है। वो किसी के डिसिप्लिन वाले नहीं है ना, वो तो आजाद हैं और उन्हें
1: बिल्कुल,
0: आजाद
1: बिल्कुल।
0: रखना भी चाहिए। तो आपके तो दिन बन जाता होगा, बड़ा खुशगवार दिन होता होगा।
1: ममता जी, हम प्रकृति के अंडर में नौकरी करते हैं, बहुत अच्छा लगता है।
0: कहाँ काम करते हैं?
1: हम एक फार्म में नौकरी करते हैं और
0: अच्छा,
1: फार्म में पेड़ों की संख्या बहुत है और
0: अरे वाह,
1: मोर है, कबूतर है और पक्षी है, बहुत
0: हाँ
1: अच्छा
0: हाँ
1: लगता है।
0: वाह,
1: और जो पक्षियों का जो प्रेम होता है ना, इसकी भी कोई सीमा नहीं है, क्योंकि वो उसको जो दाना डालते, रोटी डालते हैं मोर को, तो मोर बिल्कुल नजदीक आ जाता है, तो वो दृश्य बिल्कुल अच्छा लगता है दीदी।
0: क्या बात है। तो मोर का नृत्य भी देखा होगा फिर तो आपने? मोर का नाचना बड़ा
1: बिल्कुल
0: सुंदर लगता
1: बिल्कुल,
0: है ना।
1: मोरों के बीच में गांव में भी रहते थे और यहाँ भी रहते हैं।
0: विशेष रूप से क्या खिलाया जाता है मोर को?
1: मोर को देखा जाए तो उसको दाना, यानी दाने में जुआर है, बाजरी है, लेकिन हम रोटी डालते हैं तो बाजरे की, गेहूं की, तो वो खा जाते हैं।
0: अच्छा।
1: और वैसे देखा जाए तो जीव जंतु भी खाते हैं, लेकिन दाने भी खाते हैं और मकई का दाना भी खाते हैं, बाजरी, जुआर, गेहूं, लेकिन रोटी का उनको बहुत अच्छा रहता है अगर कोई डालता है
0: तो बाकी पक्षी भी आते हैं, गोरैया आती है क्योंकि?
1: बिल्कुल, हाथ नहीं, चक्री का या गोरैया का प्रमाण बहुत है अहमदाबाद सिटी में। मेरा गाँव डेर है, तहसील जिला पाटन, वहाँ गोरैया बहुत है, अहमदाबाद में कम है।
0: तो गर्मी बहुत पड़ रही है तो पक्षियों के पानी के लिए क्या व्यवस्था करते हैं? क्योंकि
1: ममता जी बहुत भले लोग है, अहमदाबाद हो गए, मुंबई हो, बहुत भले लोग है, पानी पक्षियों के लिए भी रखते हैं, पशुओं के।

0: प्राणियों के लिए और इंसानों के लिए, यानी मानवता अभी भी है और ये मानवता के लिए हम जी रहे हैं और हमारा जीवन यानी एक अच्छा जीवन जी रहा है, तो हमें अच्छा लगता है कि ऐसे इंसानों के बीच हम रहते हैं।
1: क्या बात है, बहुत बढ़िया, अच्छा लग रहा है ये जानकर। और पक्षियों की बात की है आपने, तो जितने श्रोता सुन रहे हैं इससे आपकी बात से प्रेरणा लेंगे कि जो बहुत छोटे छोटे घर होते हैं जहाँ पर जगह नहीं होती पानी रखने के लिए, लेकिन एक छोटा सा बर्तन, मिट्टी का बर्तन रख सकते हैं जिसमें पानी रख दिया तो बहुत गर्म भी नहीं होता है तो पक्षी आकर वहाँ पानी पी सकते हैं।
0: खुला पानी ममता जी ठंडा ही रहता है, जैसे झील है तालाब है वो पानी ठंडा ही रहता है क्योंकि पवन रहता है और पानी ऊपर ऊपर से लगे हमें गर्म है लेकिन नीचे से ठंडा रहता है। ऊपर वाले की देन है, वो भी रखवाली करता है सब जीव जंतु की।
1: लगता है आपके आसपास नदी और झील भी है?
0: नहीं, नदी तो साबरमती नदी है और तालाब देखा जाए तो यहाँ कॉरपोरेशन ने बनाए हुए वही तालाब है
1: जी। और नदी साबरमती नदी का नामकरण हुआ है कैसे वो भी आपको पता ही होगा ना?
0: जी बिल्कुल बिल्कुल, यानी साबर एक नदी है और इसके पर एक जिला भी है साबरकांठा, और जैसे बनासकांठा है वो भी बनास की नदी पर ही है, लेकिन हमारा जो जिला है वो नदी है सरस्वती, उसको कुंवारिका बोलते है, जो दरिया में नहीं जाती है, रण में जाती, रेगिस्तान में चली जाती है।
1: क्या बात है, बड़ी अच्छी जानकारी दी। तो अब गाना आप कौन सा सुनना चाहेंगे?
0: फकीरा फिल्म का दिल में तुझे बिठा कर लता मंगेशकर के आवाज में गाना सुनना है।
1: तो अब बातचीत करते हैं खत्म और आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गाना, फिल्म का नाम है फकीरा।

0: हेलो फरमाइश।
1: जी नमस्ते।
0: नमस्ते, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मैं यशवंत साहू बोल रहा हूँ, कर्मा चौक लोहारडिया जिला के विधाम छत्तीसगढ़ से।
0: जी बताइए क्या

0: हाल है आपका और छत्तीसगढ़ का?
1: जी ममता दीदी बहुत अच्छे हैं हम
0: जी। क्या कर रहे हैं?
1: हम आम के बगीचे में अभी आम खाने आए हैं, मैं अपनी बेटी के लुक को लेकर।
0: अरे वाह क्या बात है भाई, कौन से आम हैं, कौन कौन से आम वहाँ पर?
1: अब आम के नाम तो मालूम, लेकिन देसी आम है अपना खुद के, इधर हमारे पूर्वज जो है ना यहाँ पर लगाए हुए हैं आज से 100 साल के पहले आम।
0: वही खा रहे हैं?
1: हाँ, लकड़ी के सहारे से पेड़ में मार रहे हैं, उसके हिसाब से आम गिर रहे हैं, उसको हम खा रहे हैं। मतलब अभी 10-10 आम खा चुके हैं दोनों बाप बेटे।
0: अरे वाह क्या बात है भाई, 10 आम। अब यहाँ महानगरों में शहरों में तो लोग एक आम खा लेते हैं, उसी से पेट भर जाता है।
1: जी मैं महाराष्ट्र में रत्नागिरी में 2 साल तक वहाँ पर रुका हूँ
0: जी।
1: आम खाने के लिए हम वहाँ तरसते थे हम आम खाने के लिए
0: जी। और बाग से तोड़कर बाल्टी में भिगो के आम खाने का मजा अलग ही है। ये बताइए कि आपने कहा कि आपके पूर्वजों ने आम लगाया और वो खा रहे हैं, तो आपने भी कोई पेड़ पौधा लगाया है, आपकी आगे आने वाली पीढ़ी भी खाए?
1: हाँ बाड़ी पे लगाया हूँ और खेतों में भी एक दो पेड़ लगाया हूँ।
0: आम का जो बाग है, बाग में ही एक दो पौधा रोप दीजिए, पेड़ बन जाएगा कुछ महीनों में।
1: हाँ लोगों को कहना चाहूंगा कि जैसे कि आम की गुठलियाँ होती हैं, जामुन के गुठले होती हैं, आप वहाँ पर कहीं भी टूर मतलब रास्ते पार करते हैं, अपने घूमने जाते हैं ना, तो अपने बाइक के डिग्गी में रख ले और कहीं कहीं अपने डाल दे, ताकि वहाँ पर जो बारिश होगी उसके बाद ना अंकुर होकर एक पौधा बन जाएगा, जिसे कोई कोई आम खाएगा तो कम से कम ऊपर वाला देखेंगे।
0: जी बिल्कुल सही बात है। बताइए कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं?
1: फिल्म का नाम है साजन की घर और कुमार सानू साधना सरगम जी की आवाज है। गीत के बोल है सावन आया बादल छाए।
0: ठीक है जी, सावन आए बादल छाए, बस इसी उम्मीद के साथ भेज रहे हैं आपके छत्तीसगढ़ में आपकी पसंद का ये गाना आपके रेडियो सेट तक।

0: हेलो फरमाइश
1: जी दीदी नमस्ते।
0: नमस्ते, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: जी दीदी, मैं रंजीता जांगड़े बेमेतरा छत्तीसगढ़ से।
0: रंजीता जी, बताइए अपने बारे में, बताइए क्या काम काज है?
1: जी दीदी, मैं हाउस वाइफ हूँ, घर का काम करती हूँ और मेरे बच्चे हैं और ऐसे परिवार में है। अभी गर्मी का सीजन है तो इन सारी बातों का ध्यान रखना, जैसे कि जैसे पानी वानी पीना है या कहीं जाना है तो जैसे टावेल लेके जाए, पानी की बॉटल लेके जाए, और साथ साथ में जैसे हमको पता है कि मैं पानी की वैसी पक्षी हैं, गाय हैं, इन सभी का जैसे पक्षियों के लिए छोटे छोटे पोला होते हैं मिट्टी के या फिर मिट्टी के जो घड़े होते हैं उसमें जाके छत के ऊपर पानी रखना ताकि पक्षी लोग आए और वो भी अपना प्यास बुझा सके।
0: लेकिन आप खुद ये काम करती
1: जी करते भी हैं, और जैसे बालकनी वगैरह है तो पेड़ पौधे हैं तो पेड़ पौधे भी सूख जाते हैं गर्मी की वजह से, तो उनमें भी पानी डालते हैं ताकि पेड़ पौधे सूखे नहीं।
0: और पेड़ पौधों की देखभाल के लिए और घरेलू स्तर पर भी कुछ ध्यान रखना पड़ता है, सब्जी के जो छिलके होते हैं उसके माध्यम से।

0: अभी तो नहीं है, बहुत पहले
1: हुआ
0: होता था जब
1: करता था।
0: दादी लोग, हाँ हुआ करता था दादी लोग के समय में। ओखली वगैरह का तो नहीं पता दीदी, लेकिन वो ढेकी वगैरह बोलते हैं ना, उस टाइप का था
1: चक्की जात वगैरह,
0: उसमें।
1: चक्री है ना।
0: जी,
1: अब बताइए कौन सा गाना आप सुनना चाहती हैं।
0: दीदी मैं खुद गर्ज फिल्म का दिल बहलता है मेरा आप क्या जाने से।
1: बहुत बहुत धन्यवाद, सुनते हैं आपकी पसंद का यही गाना। मैं

0: दोस्तों, ये था आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। जिन श्रोताओं की कॉल आज लगी है, उनसे हमारा करबद्ध अनुरोध है कि आगामी 2 माह तक हमें फोन ना करें, ताकि अन्य श्रोताओं को इसमें सहभाग का अवसर प्राप्त हो सके। हेलो फरमाइश के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं प्रत्येक सोमवार दिन में 11 बजे से। इसके लिए हमारे फोन नंबर्स नोट कर लीजिए। हमारे टेलीफोन नंबर है 2867-0288, मुंबई का STD कोड 022। एक टेलीफोन नंबर और है जिस पर आप कॉल कर सकते हैं 400-24662, मुंबई का STD कोड वही 022। टेलीफोन नंबर आपको एक बार फिर से बता देते हैं 28670288, और दूसरा टेलीफोन नंबर 400-24662, मुंबई का STD कोड 022। और हाँ, चलने से पहले आपको ये भी बता दें, आज के इस कार्यक्रम में हमारे रिकॉर्डिंग इंजीनियर HR पाटले, संपादन सहयोग सुशीला बेंगुर लेकर का, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह ने की। तो अब अपनी रेडियो सखी ममता सिंह को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: हेलो फरमाइश।

प्रस्तुत है छाया गीत। सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। सामिन, प्यार की पहली मुलाकात और उसका पहला एहसास जिंदगी के सबसे खूबसूरत और जादुई अनुभवों में से एक होता है। वो पहली नजर, किसी को चुपके से देखने की वो आदत, नजरें चुराकर बार बार देखने का वो मीठा सा एहसास, न जाने कैसा जादू होता है उस पहली नजर में, है ना?

पहले प्यार की यादें और इसका खुमार जिंदगी भर जहन में ताजा रहता है। पहला प्यार सिर्फ किसी को पसंद करने का नाम नहीं, बल्कि महबूब की मौजूदगी में सुकून और गैर मौजूदगी में एक मीठा सा खालीपन महसूस करने जैसा होता है। पहला प्यार प्रेम की गहराई और मासूमियत का वो जादुई दौर है जो हमें भीतर तक बदल देता है।

ये प्यार, पहली नजर में प्यार का वो जादुई एहसास, क्या कहने। प्यार में एक अलग ही दुनिया जीने लगता है मन। खुद से बातें करना, बार बार खुद को आईने में देखना, सजना संवरना, हर बात पे दिल की धड़कन का बढ़ जाना, सुर्ख चेहरा और एक अनजानी सी घबराहट लिए मन इधर उधर भटकता है। बस महबूब के ख्यालों में खोया रहता है ये मन।

इस अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एक भावनात्मक सफर है प्यार, खुमारी, बेचैनी, उम्मीद और रोमांस का अद्भुत मिश्रण। मन बेताबी से अपने प्यार को थामे रखना चाहता है, प्रेम को पकड़ना चाहता है, छूना चाहता है, उसे महसूस करना चाहता है। और यही प्यार धीरे धीरे मन के भीतर एक पूरा ब्रह्मांड रच लेता है।

प्रेम के सावन में पहली बार भीगा हुआ मन का कोना जीवन में कभी नहीं सूखता। किसी के होने से भीतर एक ऐसा स्पंदन होता है जो खामोशियों में भी शब्द ढूंढ लेता है। कितना तेज, कितना सुंदर, कितना गहरा होता है ये प्यार। और जब दो टूटे बिखरे उजड़े हुए लोग आ मिलते हों अपने खोए हुए टुकड़ों को, बिखरे हुए वजूद को और उजड़े हुए चमन को खोजते खोजते, तो यही प्यार और तीव्र हो जाता है।

वो पहला प्यार जो अब आपका संसार बन चुका होता है, इस शोर और भाग दौड़ भरी दुनिया में अब कोई तुम्हें बाहों का सहारा दे रहा है, अपने दिल में जगह दे रहा है, तो तुम बिना किसी डर के समा जाओ उसकी बाहों में, बैठ जाओ उसके दिल के आंगन में, दुनिया का सारा बोझ उतार दो, खिलखिलाकर हंस पड़ो, निश्चिंत हो जाओ उसके आगोश में। कभी कभी एक गहरा आलिंगन वो कह जाता है जो शायद हजार शब्द नहीं कह

0: और अब छाया गीत से मंदाकिनी जोशी को दें इजाजत। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती सेवा के कार्यक्रम, जिन्हें हमने मुंबई केंद्र से रिले किया। FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी छिंदवाड़ा से। आइए सुने युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युवाणी।

नमस्कार मित्रों, आज के दौर में जब फास्ट फूड और पैक्ड खाद्य पदार्थों का चलन बढ़ रहा है, तब स्थानीय और पारंपरिक भोजन की महत्ता को समझना पहले से कहीं अधिक आवश्यक हो गया है। इसी बात के साथ स्वागत है आपका कार्यक्रम युववाणी में। और कार्यक्रम में आज मैं आपके साथ हूँ, आपकी दोस्त साक्षी दुबे। तो श्रोताओं, स्वीकार करें मेरा प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, आज की बात में हम चर्चा करेंगे एक ऐसे विषय पर जो हमारे स्वास्थ्य, पर्यावरण और स्थानीय संस्कृति तीनों से जुड़ा हुआ है। हमारा विषय है स्थानीय भोजन से सतत खान पान की ओर, जो विश्व सतत पाक कला दिवस के अवसर पर विशेष रूप से प्रासंगिक है। दोस्तों, आज के दौर में जब फास्ट फूड और पैक्ड खाद्य पदार्थ का चलन है, उसी में सतत खान पान का अर्थ भी समझना ज़रूरी है। इसका मतलब ऐसा भोजन अपनाना जो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभकारी हो, पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचाए और स्थानीय किसानों का उत्पादकों को भी लाभ पहुंचाए। स्थानीय भोजन से तात्पर्य उन खाद्य पदार्थों से है जो हमारे आसपास के क्षेत्र में उगाए या उत्पादित किए जाते हैं। जैसे मध्य प्रदेश में ज्वार, बाजरा, कोदो, कुटकी, दालें और मौसमी सब्जियां लंबे समय से लोगों के भोजन का हिस्सा रही हैं। आज विज्ञान और पोषण विशेषज्ञ भी इस बात पर जोर देते हैं कि स्थानीय और मौसमी भोजन हमारे शरीर के लिए अधिक लाभदायक होता है, क्योंकि यह ताज़ा होता है, इसमें पोषक तत्व अधिक होते हैं और इसे दूर दराज से लाने में कम ऊर्जा खर्च होती है। जब हम स्थानीय भोजन चुनते हैं तो केवल अपने स्वास्थ्य का ही ध्यान नहीं रखते, बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी योगदान देते हैं। दूर देशों या राज्यों से आने वाले खाद्य पदार्थ के परिवहन में ईंधन की खपत होती है, जिससे कार्बन उत्सर्जन बढ़ता है। इसके विपरीत स्थानीय भोजन कम दूरी तय करके हमारे पास पहुंचता है, जिससे पर्यावरण पर कम प्रभाव पड़ता है। भारत की खाद्य संस्कृति हमेशा से विविधता से भरपूर रही है। हर क्षेत्र के अपने विशेष व्यंजन हैं। राजस्थान का बाजरा, पंजाब का मक्के की रोटी और सरसों का साग, दक्षिण भारत के रागी आधारित व्यंजन और मध्य प्रदेश के मोटे अनाज सभी हमारी समृद्धि खाद्य विरासत के उदाहरण हैं। मित्रों, आज संयुक्त राष्ट्र द्वारा भी मोटे अनाज यानी मिलेट्स के महत्व को वैश्विक स्तर पर स्वीकार किया जा रहा है। ये अनाज पोषक होने के साथ साथ कम पानी में भी उगाए जा सकते हैं, इसलिए इन्हें सतत कृषि और सतत खान पान का महत्व हिस्सा माना जाता है। स्थानीय भोजन को अपनाने का एक और लाभ यह है कि इससे स्थानीय किसानों की आय बढ़ती है। जब हम अपने क्षेत्र के उत्पाद खरीदते हैं तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होती है और किसानों को बेहतर अवसर मिलते हैं। सतत खानपान केवल एक आदत नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी है। यह जिम्मेदारी हमारे स्वास्थ्य, समाज और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य से जुड़ी हुई है। तो मित्रों,

इसी के साथ हमारी आज की बात समाप्त होती है। अब बढ़ेंगे अगले क्रम सात सवाल की ओर। उससे पहले सुनते हैं प्यारा सा गीत फिल्म लगान से, जिसे सुरों से सजाया है उदित नारायण, अलका याग्निक, सुखविंदर सिंह, शंकर महादेवन और शान ने। गीतकार हैं AR रहमान, संगीतकार है जावेद अख्तर। तो आइए सुनते हैं यह प्यारा सा गीत।

0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 20 जून को हुगली पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी करेंगे। इसके तहत 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि सीधे हस्तांतरित की जाएगी। पीएम किसान की इस किश्त के साथ ही किसानों को हस्तांतरित कुल राशि 4,46,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी, जो करोड़ों किसान परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान कर रही है। अन्नदाता का बढ़ता मान पीएम
1: किसान। वात रोग, उदर रोग, मूत्र रोग, चर्म रोग, मानसिक रोग, श्वास रोग, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, स्त्री रोग के इलाज हेतु विभिन्न पंचकर्म विधियों व आयुर्वेदिक दवा का प्रयोग आज ही संपर्क करें डॉक्टर निधि जैन, आदिवासी संग्रहालय के सामने छिंदवाड़ा। कॉल करें 9794543985।
2: सेलिब्रेशन कोई भी हो, पर डेस्टिनेशन सिर्फ

0: जी सुनो, कल चौपाल में सरपंच की बहू बता रही थी उनका तेल 15 दिन में खत्म हो गया।
1: अरे भाग्यवान, हमारी रसोई में शिखर गोल्ड सोयाबीन तेल है। ये कम खर्च होता है इसलिए ज्यादा चलता है, पूरा महीना आराम से निकल जाएगा।
0: मतलब महंगाई में भी बचत
1: और स्वाद भी बढ़िया, सेहत का भी ध्यान।
0: वाह, इतनी खूबी।
1: शिखर गोल्ड सोयाबीन तेल अब आपके नगर की सभी किराना दुकानों पर उपलब्ध।

0: विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: मित्रों, अब बढ़ते हैं क्रम सात सवाल में और जानते हैं पिछले हफ्ते के क्रम सात सवाल के सही जवाब।

मित्रों, जान लेते हैं क्रम सात सवाल में पिछले हफ्ते के सही जवाब। हमारा पिछले हफ्ते का पहला प्रश्न था, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, जिसका सही जवाब है हॉकी। हमारा दूसरा प्रश्न था, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, जिसका सही उत्तर है प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशन। मित्रों, हमारा तीसरा प्रश्न था, पंचतंत्र के रचयिता कौन है, जिसका

उत्तर है विष्णु शर्मा। हमारा चौथा प्रश्न था, भारतीय रुपए का प्रतीक किसने डिजाइन किया था, जिसका सही उत्तर है डी उदय कुमार। हमारा पांचवा प्रश्न था, गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन है, जिसका सही उत्तर था रविंद्रनाथ टैगोर। हमारा छठा प्रश्न था, किस धातु को क्विक सिल्वर कहा जाता है, जिसका सही उत्तर है पारा मर्क्यूरी। हमारा सातवां व अंतिम प्रश्न था, फ्लाइंग सिख अर्थात उड़ान सिख के नाम से कौन प्रसिद्ध है, जिसका सही उत्तर है मिल्खा सिंह। मित्रों, अब जान लेते हैं इस हफ्ते के क्रम सात सवाल के प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है। फिर से सुने, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है। हमारा दूसरा प्रश्न है, हमारा संविधान दिवस कब मनाया जाता है। फिर से सुने, हमारा संविधान दिवस कब मनाया जाता है। हमारा तीसरा प्रश्न है, कौशल विकास की प्रमुख योजना कौन सी है। फिर से सुने, कौशल विकास की प्रमुख योजना कौन सी है। हमारा चौथा प्रश्न है, हॉकी के जादूगर कौन है। फिर से सुने, हॉकी के जादूगर कौन है। हमारा पांचवा प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण के खोजकर्ता कौन है। फिर से सुने, गुरुत्वाकर्षण के खोजकर्ता कौन है। हमारा छठा प्रश्न है, हरित गैस का प्रमुख उदाहरण क्या है। फिर से सुने, हरित गैस का प्रमुख उदाहरण क्या है। साथियों, हमारा अंतिम व सातवां प्रश्न है, G20 की मेजबानी भारत ने किस वर्ष में की थी। फिर से सुने, G20 की मेजबानी भारत ने किस वर्ष में की थी। मित्रों, इसी के साथ क्रम सात सवाल समाप्त होता है।

मित्रों, आप हमें अपने जवाब खतों के माध्यम से भेज सकते हैं। हमारा पता है क्रम 7 सवाल द्वारा केंद्र निर्देशक आकाशवाणी केंद्र कुकड़ा हिल्स छिंदवाड़ा, पिन कोड 480001 480001, या फिर हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। हमारा नंबर है 860226223 8602262263। मित्रों, इसी के साथ कार्यक्रम की अगली श्रृंखला की ओर बढ़ेंगे, आज के इतिहास की ओर। उससे पहले सुनते हैं यह गीत फिल्म मिलन से, जिसे गाया है मुकेश और लता मंगेशकर ने। संगीतकार है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, गीतकार है आनंद बख्शी।

0: रे शोर,
1: पवन करे शोर।
0: अरे बाबा शोर नहीं, शोर शोर शोर।

मित्रों, अब जानते हैं आज का इतिहास। मित्रों, आज ही के दिन 1857 की क्रांति की नायिका रानी लक्ष्मीबाई ग्वालियर के युद्ध में अंग्रेजों से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुई थी। अब कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत, जिसमें आवाज है सोनू निगम और श्रेया घोषाल की। संगीतकार हैं सलीम सुलेमान, गीतकार हैं जयदीप साहनी।

साथियों, कार्यक्रम की अगली और अंतिम श्रृंखला में जानते हैं कल के आकर्षण। मित्रों, कल की आज की बात का विषय होगा अंतर्राष्ट्रीय कानून और यौन अपराध, और होगी रोजगार सूचना, साथ ही फिल्म संगीत, आज का इतिहास, कल के आकर्षण और मधुर गीतों के साथ अमृतवाणी। मित्रों, आज के अमृतवाणी में जानते हैं स्वस्थ भोजन केवल शरीर को नहीं बल्कि समाज और पर्यावरण को भी स्वस्थ बनाता है। इसी के साथ वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपकी रेडियो दोस्त साक्षी दुबे का आपको प्यार भरा नमस्कार। शुभ संध्या।

अभी युवा श्रोता सुन रहे थे अपना कार्यक्रम युववाणी। ये आकाशवाणी छिंदवाड़ा है। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम संझवाती।

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम की पहली रचना अनूप जलोटा के स्वर में।
1: आया खुशियों का पैगाम पीएम किसान।
2: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 20 जून को हुगली पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी करेंगे। इसके तहत 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि सीधे हस्तांतरित की जाएगी। पीएम किसान की इस किश्त के साथ ही किसानों को हस्तांतरित कुल राशि 4,46,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी, जो करोड़ों किसान परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान कर रही है।

0: free drive with a Grand Vitara. Visit a near Nexa showroom today.
1: Nexa.
2: वात रोग, उदर रोग, मूत्र रोग, चर्म रोग, मानसिक रोग, श्वास रोग, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, स्त्री रोग के इलाज हेतु विभिन्न पंचकर्म विधियों व आयुर्वेदिक दवा का प्रयोग आज ही संपर्क करें डॉक्टर निधि जैन, आदिवासी संग्रहालय के सामने छिंदवाड़ा। कॉल करें 9794543985।
3: लीजिए, आप सुनिए लता मंगेशकर की गायी रचना।

0: जी सुनो, कल चौपाल में सरपंच की बहू बता रही थी उनका तेल 15 दिन में खत्म हो गया।
1: अरे भाग्यवान, हमारी रसोई में शिखर गोल्ड सोयाबीन तेल है। ये कम खर्च होता है इसलिए ज्यादा चलता है, पूरा महीना आराम से निकल जाएगा।
0: मतलब महंगाई में भी बचत
1: और स्वाद भी बढ़िया, सेहत का भी ध्यान।
0: वाह, इतनी खूबी।
1: शिखर गोल्ड सोयाबीन तेल अब आपके नगर की सभी किराना दुकानों पर उपलब्ध।
2: बूंद बूंद में शुद्धता, शिखर गोल्ड तेल।
3: कार्यक्रम की अंतिम रचना लीजिए, सुनिए सोनू निगम के स्वर में।

सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम संजीवाती। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के छिंदवाड़ा केंद्र से। आइए सुनते हैं माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बैतूल प्रवास पर आधारित कार्यक्रमों की रेडियो रिपोर्ट, जिसे हम भोपाल केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के बैतूल प्रवास पर आयोजित कार्यक्रमों की रेडियो रिपोर्ट। ये कार्यक्रम आकाशवाणी बैतूल का योगदान है और आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रसारित किया जा रहा है।

0: श्रोताओं, आज बैतूल नगर के लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम में जिला प्रशासन और ब्रह्मा कुमारीज के संयुक्त प्रयासों से आध्यात्मिक जागृति से आदिवासी समाज का सशक्तिकरण इस विषय पर महासम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल, केंद्रीय राज्य मंत्री श्री दुर्गादास उइके, जिले के प्रभारी मंत्री श्री नरेंद्र शिवाजी पटेल तथा विधायक बैतूल श्री हेमंत खंडेलवाल प्रमुख रूप से उपस्थित थे। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग और बैतूल जिले के प्रभारी मंत्री श्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की हेलीपैड पर अगवानी की। तत्पश्चात कड़ी सुरक्षा के बीच राष्ट्रपति का काफिला समारोह स्थल पर पहुंचा। आयोजन स्थल पर श्वेत भव्य वर्षारोधी मजबूत पंडाल लगाया गया था, जिसमें लगभग 4000 लोगों के बैठने की समुचित व्यवस्था की गई थी। सभी के प्रवेश हेतु अलग अलग प्रवेश द्वार निर्धारित किए गए थे। सुरक्षा कर्मी सघन जाँच और एंट्री पास देखकर ही लोगों का प्रवेश सुनिश्चित कर रहे थे। मंच पर विशेष अतिथियों के बैठने की सुरुचिपूर्ण व्यवस्था की गई थी। यहां पहुंचकर महामहिम द्वारा कार्यक्रम स्थल पर वृक्षारोपण एवं ब्रह्मा कुमारीज के वरिष्ठ सदस्यों के साथ फोटो सत्र भी पूरा किया गया। कार्यक्रम में आध्यात्मिक जागृति के साथ साथ स्थानीय संस्कृति और विकास की झलक भी देखने को मिली। यहाँ बैतूल की अनूठी स्थानीय कला, हस्तशिल्प और जनजातीय विरासत को प्रदर्शित करती हुई विशेष प्रदर्शनी भी लगाई गई थी। साथ ही वन विभाग द्वारा भी पर्यावरण संरक्षण, वनोपज और जनजातीय समाज के आर्थिक सशक्तिकरण से जुड़े कार्यों को जीवंत रूप से दिखाया गया था। कार्यक्रम का आरंभ राष्ट्रगीत एवं राष्ट्रगान के गायन से हुआ। फिर मंच पर विधिवत दीप प्रज्वलन किया गया तथा मंच पर उपस्थित सदस्यों द्वारा महामहिम राष्ट्रपति जी का शॉल और स्मृति चिन्ह देकर स्वागत और अभिनंदन किया गया। इसके बाद पीके मंजू दीदी, संचालक बैतूल मध्य प्रदेश, द्वारा स्वागत उद्बोधन दिया गया।
1: आज हम सभी के लिए, विशेष बैतूल वासियों के लिए बड़े सौभाग्य का दिन है, बहुत खुशियों का दिन है। मैं बताना चाहती हूँ, आज से 2 साल पहले मैंने एक छोटा सा सपना देखा था। सपना तो बहुत बड़ा था, दिल और दिमाग की जंग शुरू हो गई थी। दिमाग ने कहा था असंभव, लेकिन दिल ने कहा था संभव। और इतनी इन खुली आँखों से मैंने जो सपना देखा था, आज वो सपना हम सब के सामने साकार हो रहा है।
0: इसके बाद प्रस्तुत स्वागत नृत्य ने सभी का मन मोह लिया।

0: इस अवसर पर
1: जोनल संचालक मध्य प्रदेश बी के शैलजा दीदी ने कहा,
2: आज हम सभी बहुत सुंदर विषय पर चर्चा कर रहे हैं, आध्यात्मिक जागृति द्वारा आदिवासी समाज का सशक्तिकरण। आदिवासी समाज सदैव से ही प्रकृति का रक्षक रहा है। आप में एकता और सेवा की भावना कूट कूट कर भरी हुई है। आपकी जड़ी बूटियां जीवन दान देने वाली हैं। जड़ी में दवा और श्रद्धा में दुआ, ये कहावत

0: भारतीय संस्कृति की आस्था और ईश्वर में विश्वास का परिचायक है। हमारे आदिवासी भाई बहनों की ये परंपरा कि हर शुभ अवसर पर नीम, महुआ, पीपल, बरगद जैसे वृक्षों को रोपने की, इन्होंने ही जंगलों को जीवित रखा हुआ है। जलाशयों को प्रदूषण से मुक्त रखना और उनके गहरीकरण के प्रति जागरूक रहना, ये आपका दिव्य कर्तव्य रहा है। ऐसे आदिवासी समाज के जागृति क्या केवल भौतिक विकास द्वारा संभव है या इसके लिए आध्यात्मिक जागृति आवश्यक है? आध्यात्मिकता हमें स्वयं के अर्थात इस शरीर को चलाने वाली चैतन्य शक्ति आत्मा के मूल गुणों से परिचित कराती है। मूल गुणों में शक्ति है।
1: कार्यक्रम में उपस्थित माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार श्री दुर्गादास विके ने अपने उद्बोधन में जनजातीय समुदाय हेतु सरकार द्वारा लागू की गई जन कल्याणकारी योजनाओं की चर्चा की।
2: आज बैतूल की पुण्य धरा पर हम सभी एक ऐतिहासिक और गौरवपूर्ण क्षण के साक्षी बन रहे हैं। यह केवल एक कार्यक्रम नहीं भाइयों बहनों, बल्कि आध्यात्मिक चेतना, सामाजिक जागरण और जनजातीय अस्मिता के सम्मान का एक विराट महोत्सव है। सबसे पहले मैं अपने संसदीय क्षेत्र बैतूल की ओर से भारत की प्रथम जनजातीय महिला महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। ओडिशा के एक छोटे से जनजाति गांव में जन्मी एक साधारण बालिका का भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर पहुंचना केवल व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, बल्कि यह भारतीय लोकतंत्र की शक्ति, संविधान की महानता और सामाजिक समरसता की अद्भुत मिसाल है। महामहिम राष्ट्रपति जी, आपका जीवन संघर्ष, समर्पण और सेवा की अद्वितीय मिसाल है। आपने अपनी कर्मठता, धैर्य और सामाजिक उत्थान के प्रति अटूट संकल्प के बल पर न केवल उच्चतम संवैधानिक पद को सुशोभित किया है, बल्कि देश की हर बेटी, हर वंचित वर्ग और समाज के हर नागरिक के लिए आप प्रेरणा स्रोत है, आदर्श है। आपका जीवन से कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। आज जब आप बैतूल की इस जनजाति बहुल भूमि पर पधारी हैं, तब यहाँ का प्रत्येक जनजाति परिवार स्वयं को गौरवान्वित अनुभव कर रहा है। महोदया, आपकी अंतर्वेदना और देश की जनजातियों के प्रति अथाह संवेदनाओं के फलस्वरूप धरती आबा ग्राम उत्कर्ष अभियान, प्रधानमंत्री जनमन आदि कर्मयोगी, संसदीय संकुल विकास परियोजना, सिकल सेल एनीमिया, टीबी जैसी अनुवांशिक बीमारियों के प्रति ठोस कार्य योजनाएं बन सकी हैं।
1: मध्य प्रदेश के माननीय राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल ने अपने संबोधन में कहा,
3: राजयोग और मेडिटेशन से जो शांति मिलती है वो अब मैंने खुद ने अनुभव किया है। मैं समझता हूँ, यहाँ नीचे में सेल्फ हेल्प ग्रुप की भी बहनें देखी, यहाँ भी बहुत से आदिवासी समाज के भाई बहन बैठे हैं। मैं सभी को आग्रह करूँगा कि जीवन में हमको शांति चाहिए। पहले पैसा की बात करो, मगर मन को शांति मिलेगा तो सब कुछ अच्छा होगा। मन को शांति मिलेगी, धार्मिक भावना होगी तो हम नीति से चलेंगे और भगवान को भी वो पसंद है। इसलिए मैं समझता हूँ आदिवासी सशक्तिकरण में आध्यात्मिकता भी ध्यान होना चाहिए और ऐसी संस्था से जुड़कर हमको जो हमारे जीवन में प्रगति करना है वो अच्छी तरह कर सकेंगे।
1: राष्ट्रपति जी द्वारा कलश एवं ध्वज स्थापना द्वारा महासम्मेलन के शुभारंभ की घोषणा की गई।

आध्यात्मिक जागृति आदिवासी समाज के सशक्तिकरण का मूल आधार है। अपनी समृद्ध संस्कृति और प्राकृतिक जीवन शैली इन्हें अपनी अलग पहचान बनाने का एक अवसर देती है। इस बात को रेखांकित

0: करते हुए महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने कहा,
1: उपभोग की संस्कृति और संस्कृति पर आधारित आज की तेज भागती दुनिया में समाज के हर वर्ग की आध्यात्मिक शुचिता बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। इसी के बल पर दीर्घकालीन रूप से समतापरक आचरण पद्धति और प्राकृतिक संपदाओं के प्रति संवेदनशीलता जीवन शैली विकसित की जा रही है। आज के तनाव और युद्धों से त्रस्त विश्व में इसकी आवश्यकता अतीत के किसी भी कालखंड की तुलना में और अधिक हो गई है। इसीलिए इस सम्मेलन तथा ऐसे प्रयासों का महत्व और भी बढ़ जाती है।
0: आध्यात्मिकता आदिवासियों की जीवन शैली में नैसर्गिक रूप से बसी है, इस बात पर बल देते हुए राष्ट्रपति महोदया ने कहा,
1: जनजातीय समुदाय की जीवन शैली सहज रूप से ही आध्यात्मों की मूलभूत प्रेरणाओं के निकट होती है। हम जनजाति को आदिवासी कहते हैं, कोई कोई उनको वनवासी कहते हैं। ये आदिवासी है, आदिम और आदिवासी जो सृष्टि के आरंभ से ही ये धरा पे रहते हैं और उनके जीवन शैली ये केवल कोई वो आध्यात्मिकता ही भरा हुआ है और सुख शांति आनंद प्रेम में जीना जानते हैं, हिंसा से दूर रहते हैं। हम जानते हैं ये आदिम काल में जैसे थे आज भी ऐसे ही है, जैसे कि गीली मिट्टी उसको जैसे बनाओ ऐसे बनते हैं और प्रकृति के पूजा करते हैं, लेकिन केवल प्रकृति नहीं पंचतत्व को पूजा करते हैं। ये धरती, ये आकाश, वायु, जल, सूर्य, चंद्र, इसको पूजा करते हैं। कोई कंस्ट्रक्शन बनाने के, कोई मंदिर, कोई पूजाशाला बनाते नहीं।
0: राष्ट्रपति जी आगे कहते हैं, हमारे आदिवासी भाई बहन प्रकृति को कोई क्षति नहीं पहुंचाते, यह उनकी सकारात्मक सोच को दर्शाता है।
1: धरती को क्षति पहुंचाते नहीं, जल कभी दूषित नहीं करते, तालाबों में नहाते, नदियों में नहाते, नदी में कोई कूड़ा फेंकता नहीं, तालाबों को कोई अपरिष्कार नहीं करते। धरती को जरूरत के मुताबिक कभी चोट पहुंचाते तो उसके पहले उसको नमन करते हैं, पेड़ पौधा पूजा करते हैं, वो सही है। आज तो गैस आ गया है, लेकिन एक दिन था पेड़ से ही हम खाना बनाते थे, लेकिन सूखे पेड़ को चुनते हैं। किसी भी कारण कोई पेड़ को चोट पहुंचाते कहने के लिए मजबूर हो जाते हैं तो उसके पहले उनको नमन करते हैं, सूर्य को पूजा करते हैं। आप सोचिए, सूर्य नहीं होता तो क्या होता, पेड़ पौधा नहीं होता तो ये जितने हवा परमपिता परमात्मा ने धरती पे दिए हैं वो खत्म हो जाता। आज पेड़ पौधा है इसीलिए वो रोटेट होता है। आज समुन्द्र नदी है इसीलिए बारिश हो रहा है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं। इसीलिए इसी दृष्टि से ये आध्यात्मिकता से आदिवासी समाज भरपूर है, फुट फुट का उनके मन में आध्यात्मिकता भरे हुए है। पेड़ पौधा में वो रहते हैं क्योंकि कभी कभी किसी आदिवासी उनको उनके वंशज, पेड़ पौधों के वंशज कहते हैं।
0: अपने उद्बोधन के अंत में बैतूल जिले और उनके निवासियों के स्वभावगत विशेषताओं का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा,
1: मध्य प्रदेश का ये बैतूल जिला अपनी समृद्ध जनजातीय संस्कृति, प्राकृतिक सौंदर्य और आध्यात्मिक विरासत के लिए पूरे देश में जाना जाता है। मुझे बताया गया है कि यहाँ के जनजातीय समुदाय ने अपने विशिष्ट परंपराओं, लोक ज्ञान और सांस्कृतिक मूल्यों को पीढ़ी दर पीढ़ी संरक्षित रखे हैं। बैतूल की जनजातीय संस्कृति में सामूहिकता, सहयोग, सरलता, ईमानदारी और आध्यात्मिकता जैसे उच्च जीवन मूल्य सहज रूप से विद्यमान है। जब आध्यात्मिक और सेवा का संगम होता है तब समाज में स्थायी परिवर्तन आता है। मुझे विश्वास है कि ये महासम्मेलन सेवा और आध्यात्मों के इस संगम की ओर लोगों को आकृष्ट करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। आइए हम सब मिलकर 2047 तक एक ऐसे विकसित भारत का निर्माण

0: करें और अधिक से अधिक प्रतिबद्धता के साथ कार्य करें, जहां अध्यात्म, सामाजिक समरसता, पर्यावरण संरक्षण और मानव कल्याण हमारी समावेश की विकास की आधारशिला बने। मैं एक बार फिर इस आयोजन के लिए अपनी हार्दिक बधाई देती हूँ तथा सभी प्रतिभागियों को उनके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
1: आज के कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगीत और राष्ट्रगायन के सामूहिक गायन से संपन्न हुआ। इसके बाद महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को हेलीपैड पर गरिमामयी विदाई दी गई। अन्य अतिथिगण भी अपने अपने गंतव्य स्थलों की ओर चल पड़े। श्रोताओं, ये थी महामहिम राष्ट्रपति के एक दिवसीय बैतूल प्रवास की रेडियो रिपोर्ट। वाचक योगेश्वर, संकलन प्रवीण चौरे, तकनीकी सहयोग कांता प्रसाद टिकारे और अशोक सोनारे, और प्रस्तुतकर्ता सचिन भागवत।

0: अभी आप सुन रहे थे माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बैतूल प्रवास पर आधारित कार्यक्रमों की रेडियो रिपोर्ट, जिसे हमने भोपाल केंद्र से रिले किया। ये आकाशवाणी छिंदवाड़ा है। पेश है फिल्म संगीत।
1: Most TVs keep you tied to the city, but you deserve the freedom to explore. Introducing the Maruti Suzuki e-Vitara. With its massive 61 kilowatt-hour battery and a range of 543 kilometer, the horizon is finally yours. Own it for rupees 10.99 lakh with a battery EMI of just rupees 3.99 per kilometer. Backed by India's largest charging network, India Goes Electric.
2: Nexa.
3: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 20 जून को हुगली पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी करेंगे। इसके तहत 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि सीधे हस्तांतरित की जाएगी। पीएम किसान की इस किश्त के साथ ही किसानों को हस्तांतरित कुल राशि 4,46,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी, जो करोड़ों किसान परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान कर रही है।

आप सुन रहे थे बागवान फिल्म का गीत सुदेश भोसले और अलका याग्निक की आवाज़ों में। समीर के लिखे इस गीत की तर्ज बनाई थी आतिश श्रीवास्तव ने। और लीजिए आप सुनिए गदर, एक प्रेम कथा फिल्म।

0: सीमित साबित होते हैं, वहां नवाचार प्रभावी समाधान प्रदान कर सकता है। फ्रांस के पेरिस में विवाटेक 2026 सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने भारत में डिजिटल भुगतान, वित्तीय समावेशन, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और कृषि क्षेत्रों में तेजी से हो रहे प्रौद्योगिकी आधारित परिवर्तन का उल्लेख किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में उपलब्धियों के माध्यम से मानव क्षमता की नई सीमाओं का विस्तार कर रहा है। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सभी के लिए सुलभ होनी चाहिए। श्री मोदी ने वैश्विक नवोन्मेषकों से भारत के साथ मिलकर काम करने का आह्वान किया। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर प्रधानमंत्री ने कहा कि यह समझौता व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी आदान प्रदान और पर्यटन को बढ़ावा देगा।
1: 2026 इज अ स्पेशल ईयर फॉर इंडिया एंड यूरोप। एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर वी कंक्लूडेड द हिस्टोरिक इंडिया ईयू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। दिस एग्रीमेंट विल एक्सपेंड अवर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एंड इट विल ओपन अप मेनी पाथवेज फॉर द एक्सचेंज ऑफ टैलेंट, टेक्नोलॉजी एंड टूरिज्म।
0: इससे पहले श्री मोदी ने पेरिस में कई प्रमुख उद्योगपतियों से मुलाकात की। इस दौरान विनिर्माण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और समुद्री अवसंरचना पर चर्चा हुई। एक रिपोर्ट।
2: सेंट कोबा के चेयरमैन और सीईओ बेनवा बेजा ने कहा कि भारत एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए एक बड़े विनिर्माण और निर्यात केंद्र के रूप में उभर रहा है। मिस्त्राल एआई के सीईओ आर्थर मेंश ने कहा कि कंपनी भारतीय भाषाओं के लिए सहयोग बढ़ाने, एआई अनुसंधान साझेदारी का विस्तार करने और संप्रभु एआई पर गहरा सहयोग तलाशने की इच्छुक है। सीएमए सीजीएम के चेयरमैन और सीईओ रडाल्फ सादे ने कहा कि भारत हरित जहाज निर्माण के केंद्र के रूप में तेजी से विकसित हो रहा है। महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस, फ्रांस।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की। श्री शाह ने बताया कि इस दौरान आतंकवाद और मादक पदार्थों के खिलाफ दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने पर विस्तृत चर्चा हुई। गृह मंत्री ने कहा कि भारत वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प है। सरकार ने कहा कि सभी तेल शोधन संयंत्र पर्याप्त कच्चे तेल के भंडार के साथ उच्च क्षमता पर काम कर रहे हैं। पश्चिम एशिया संघर्ष पर आज नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय प्रेसवार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त स्टॉक बनाया जा रहा है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि 62,370 मीट्रिक टन LNG से लदा मालवाहक जहाज दिशा के कल सुबह गुजरात के दाहेज बंदरगाह पर पहुंचने की उम्मीद है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा की तैयारियों के आकलन के लिए आज उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने पर बल दिया। उन्होंने अधिकारियों को स्वतंत्र और निष्पक्ष पुनः परीक्षा आयोजित करने के लिए सभी आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित करने और सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। उपराष्ट्रपति और दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति सीपी राधाकृष्णन ने नशा मुक्त परिसर अभियान के अंतर्गत दिल्ली विश्वविद्यालय की महत्वपूर्ण प्रगति की सराहना की। विश्वविद्यालय के 53,000 से अधिक छात्रों ने देश को नशा मुक्त बनाने की प्रतिज्ञा ली। बम्बई शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज लगातार पांचवें दिन बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 254 अंक बढ़कर 77,410 पर और निफ्टी 82 अंक बढ़कर 24,168 पर दर्ज हुआ। मीनाक्षी हुडा विश्व मुक्केबाजी कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। कल क्वार्टर फाइनल में चार भारतीय मुक्केबाज अपने मुकाबले खेलेंगे। वहीं ज्योति और जुगनू सेमीफाइनल में पहुंचकर पदक पक्का कर चुकी हैं। मकाऊ ओपन बैडमिंटन में अनमोल खरब और अस्मिता चलिहा महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: ये आकाशवाणी छिंदवाड़ा है, आइए सुने संदेश।
4: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 20 जून को हुगली, पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी

0: इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब खत्म होता है। ये आकाशवाणी छिंदवाड़ा है, 7 बजने वाले हैं। कुछ ही देर में सुनिएगा दिल्ली से प्रसारित हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जहां पारंपरिक तरीके

0: करेंगे। इसके तहत 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि सीधे हस्तांतरित की जाएगी। पीएम किसान की इस किश्त के साथ ही किसानों को हस्तांतरित कुल राशि 4,46,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी, जो करोड़ों किसान परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान कर रही है।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424242।
1: ओ 8700001424242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424242 पर।
2: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
1: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
2: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
1: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
2: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001424242 पर।
1: 8700001424242।
3: मुझे अपनी मम्मी के जन्मदिन पर आकाशवाणी से बधाई देना है, क्या करूं?
4: नो टेंशन, इसके लिए कुकड़ा हिल्स आकाशवाणी कार्यालय छिंदवाड़ा में संपर्क करो। और हाँ, अगर शादी या शादी की सालगिरह, त्योहारों की शुभकामना या किसी विशेष अवसरों पर किसी को बधाई देना चाहते हो तो भी आप आकाशवाणी कार्यालय छिंदवाड़ा में संपर्क कर सकते हैं।
3: अच्छा, मेरे चाचा बर्तनों की दुकान खोल रहे हैं, उसके लिए भी?
4: हाँ हाँ, अपने प्रतिष्ठान के शुभारंभ पर भी आप बधाई दे सकते हैं या जानकारी दे सकते हैं। तो विज्ञापन के लिए संपर्क करें
3: कुकड़ा हिल्स आकाशवाणी कार्यालय छिंदवाड़ा।
4: हाँ,
5: नए जमाने की नई तस्वीर। अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें। ले आएं आज ही दूरदर्शन का डीडी फ्री डिश। इसमें हैं आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स। इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और, सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका डीडी फ्री डिश।
6: प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल है शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, याद रहे www.prasarbharatiarchives.co.in।
7: ये आकाशवाणी छिंदवाड़ा है, 7:10 होने वाले हैं। कुछ ही देर में सुनिएगा प्रादेशिक समाचार जिन्हें हम भोपाल केंद्र से रिले करेंगे।

0: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
1: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो।

0: करने का भी है।
1: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: यार कोई ऐसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बताओ जिसमें कम प्रीमियम हो, बोनस भी अच्छा मिले और भरोसे वाला भी हो।
4: PLI है ना?
5: सरकारी कर्मचारी के साथ साथ सभी प्रोफेशनल, ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर्स ले सकते हैं PLI पॉलिसी का फायदा और साथ में पोस्टल डिपार्टमेंट का भरोसा भी। अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से आज ही संपर्क करें या लॉग इन करें indiapost.gov.in पर।
6: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बैतूल में आध्यात्मिक जागृति द्वारा आदिवासी समाज का सशक्तिकरण कार्यक्रम को किया संबोधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस दौरे में AI, रेलवे और निर्माण क्षेत्र की शीर्ष कंपनियों के CEO से की मुलाकात। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर में शासकीय कन्या विद्यालय की खगोलीय प्रयोगशाला का निरीक्षण किया। IT Park 3 का भी लिया जायजा। और 20 जून को PM किसान उत्सव दिवस। 9.5 करोड़ किसानों को मिलेगी सम्मान निधि की 23वीं किस्त। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और ओडिशा के 5 दिवसीय दौरे पर हैं। दौरे के पहले दिन इंदौर पहुंचने पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति ने बैतूल में प्रजापिता ब्रह्म कुमारी द्वारा आयोजित आध्यात्मिक जागृति द्वारा आदिवासी समाज का सशक्तिकरण कार्यक्रम को संबोधित किया और कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य के लिए देश का कोई भी समुदाय विकास की यात्रा में पीछे नहीं रहना चाहिए।
7: 2047 विकसित भारत बनाने के लिए हम सोचे हैं। पूर्वतन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी कहते थे, ये देश एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। राष्ट्र पुरुष का प्रत्येक अंग हिमालय से लेकर के कन्याकुमारी तक अक्षत होना चाहिए, क्षति नहीं होना चाहिए। ऐसे ही ये भारत में रहने वाले जनता, कोई भी समाज पीछे ना रह जाए।
6: राष्ट्रपति कल ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया दिवस के राष्ट्रीय कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। राष्ट्रपति के दौरे को देखते हुए ओंकारेश्वर क्षेत्र को 19 जून तक नो ड्रोन जोन घोषित किया गया है और विशेष यातायात व्यवस्था लागू की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस दौरे के दौरान आज कई शीर्ष वैश्विक कंपनियों के CEO से मुलाकात की। उन्होंने मिस्ट्रल AI के CEO आर्थर मेंट्स से भारत के बढ़ते AI इकोसिस्टम पर, एलस्टॉम के CEO मार्टिन सीएन से रेलवे आधुनिकीकरण पर और सेंट गोबेन के चेयरमैन बेनोइट बाजिन से निर्माण सामग्री क्षेत्र में निवेश के अवसरों पर चर्चा की। तीनों कंपनियों ने भारत में और अधिक निवेश तथा विस्तार की इच्छा जताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल शक्ति मंत्री चंद्रकांत पाटिल के एक लेख को साझा करते हुए कहा कि सरकार ने पेयजल, स्वच्छता, नदी संरक्षण, सिंचाई, भूजल पुनर्भरण और अपशिष्ट जल के पुनः उपयोग जैसी चुनौतियों का समाधान समग्र दृष्टिकोण से किया है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री मनसुख मांडविया के एक लेख को साझा करते हुए कहा कि पिछले 12 वर्षों में भारत की परिवर्तन गाथा देश के युवाओं की भी गाथा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर प्रवास के दौरान स्कूल चले हम अभियान के तहत बड़ा गणपति स्थित शासकीय शारदा कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का दौरा किया। उन्होंने विद्यालय में स्थापित अत्याधुनिक खगोलीय प्रयोगशाला का निरीक्षण किया, जहां छात्राओं ने दूरबीन, रॉकेट मॉडल और नक्षत्र ट्रैकिंग प्रणाली के बारे में जानकारी दी। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने इंदौर में निर्माणाधीन IT Park 3 का निरीक्षण करते हुए कहा कि प्रदेश को देश का अग्रणी IT और सेवा क्षेत्र का केंद्र बनाना उनकी सरकार का संकल्प है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज भोपाल में आयोजित एक प्रेसवार्ता में बताया कि 20 जून को देशभर में PM किसान उत्सव दिवस मनाया जाएगा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के तारकेश्वर से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी करेंगे।
8: 20 जून PM किसान उत्सव दिवस, इस दिन 3:45 पर प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी पश्चिम बंगाल में हुगली जिले के तारकेश्वर से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी करेंगे। अब तक 22 किस्तों के माध्यम से 4,28,000 करोड़ रुपए, लगभग 9.5 करोड़ किसानों के खाते में अंतरित किए गए हैं और अभी 20 तारीख को फिर 18,800 करोड़ रुपए से अधिक का लाभ हमारे देश भर के किसानों के खाते में ये निधि अंतरित करके दिया जाएगा।
6: अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
9: ये समाचार आप आकाशवाणी मत

0: प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
1: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया संघर्ष के बावजूद देश के सभी तेल शोधन संयंत्र पर्याप्त कच्चे तेल के भंडार के साथ उच्च क्षमता पर काम कर रहे हैं। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयीय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि पिछले 3 दिनों में 1,47,00,000 LPG सिलेंडर उपलब्ध कराए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर एक विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में नक्सलवाद उन्मूलन और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास के लिए सरकार द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण कदमों पर एक रिपोर्ट।
2: नरेंद्र मोदी सरकार की सुरक्षा अभियान, नक्सलियों की फंडिंग पर रोक और प्रभावित इलाकों में तेज विकास कार्यों की संयुक्त रणनीति के चलते देश को नक्सलवाद और माओवादी आतंक से मुक्त करने में सफलता मिली है। पिछले कुछ वर्षों में कई बड़े सुरक्षा अभियानों ने माओवादी नेटवर्क को कमजोर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वर्ष 2024 में 217 माओवादी मारे गए, जबकि 2025 में यह संख्या बढ़कर 256 हो गई। सुरक्षा अभियानों के साथ साथ नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों को भी तेजी से आगे बढ़ाया गया। नक्सलियों की फंडिंग रोकने में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने भी अहम भूमिका निभाई। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार।
1: केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि यानी EPF पर 8.25% ब्याज दर को मंजूरी दे दी है। इस फैसले से EPFO के 7 करोड़ से अधिक अंशधारकों को लाभ मिलेगा और इस महीने के अंत तक खातों में ब्याज राशि जमा होने की संभावना है। प्रदेश का खेल एवं युवा कल्याण विभाग प्रदेश की उभरती खेल प्रतिभाओं को तलाशने के लिए टैलेंट सर्च महाअभियान चला रहा है। इस अभियान के तहत 8 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के युवा खिलाड़ियों का चयन कर उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लिए तैयार किया जाएगा। ऑनलाइन पंजीयन 17 जून से शुरू हो चुका है और चयन प्रक्रिया 27 जून से आरंभ होगी। इस अभियान में एथलेटिक्स, हॉकी, कुश्ती, बॉक्सिंग और तीरंदाजी समेत कुल 21 खेल विधाओं के ट्रायल आयोजित किए जाएंगे। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग 26 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के उपलक्ष्य में 17 से 26 जून तक देश भर में नशा मुक्त भारत सप्ताह मना रहा है। इस अभियान की थीम नशा मुक्त भारत अभियान, विकसित भारत की पहचान है। सप्ताह भर चलने वाले इस अभियान में जागरूकता रैलियां, युवा अभियान, नुक्कड़ नाटक, निबंध और पोस्टर प्रतियोगिताएं तथा सोशल मीडिया अभियान आयोजित किए जा रहे हैं। अब रुख करते हैं खेलों की खबर का। ICC महिला T20 विश्व कप में आज इंग्लैंड में वेस्टइंडीज और स्कॉटलैंड के बीच मुकाबला होगा, जो भारतीय समय के अनुसार रात 11 बजे से खेला जाएगा। इससे पहले कल ग्रुप ए के मैच में भारत ने नीदरलैंड्स को 95 रनों से हराया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट पर 209 रन बनाए, जिसके जवाब में नीदरलैंड्स की टीम 114 रन ही बना पाई। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शिवपुरी ITI में प्रवेश के इच्छुक विद्यार्थी विभाग के DSD पोर्टल पर 30 जून तक ऑनलाइन पंजीयन कर सकते हैं। सीहोर के बिल्किसगंज सांदीपनी विद्यालय में नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत पर विद्यार्थियों को पाठ्यपुस्तकें वितरित की गईं। अशोकनगर जनपद पंचायत ईसागढ़ में 3 दिवसीय जन कल्याण शिविर का आयोजन किया गया। गुना में पॉली हाउस एवं गुलाब की उन्नत खेती पर विशेष प्रशिक्षण कल आयोजित किया जाएगा। शाहजहांपुर जिले के राजीव गांधी महाविद्यालय काला पीपल के सभागृह में आज सरपंच, सचिव एवं रोजगार सहायक की कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। जबलपुर जिला सैनिक कल्याण कार्यालय के द्वारा आज राज्य स्तरीय पूर्व सैनिक रैली का आयोजन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर 21 जून को नूतन खेल परिसर स्टेडियम मंदसौर में जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। धार जिले के बदनावर में 3 दिवसीय जन कल्याण शिविर का समापन हुआ और नीमच डाक संभाग के द्वारा 20 जून को डाकघरों में आधार एनरोलमेंट और अपडेशन का विशेष अभियान चलाया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बैतूल में आध्यात्मिक जागृति द्वारा आदिवासी समाज का सशक्तिकरण कार्यक्रम को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस दौरे में AI, रेलवे और निर्माण क्षेत्र की शीर्ष कंपनियों के CEO से की मुलाकात। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इंदौर में शासकीय कन्या विद्यालय की खगोलीय प्रयोगशाला का निरीक्षण किया। IT Park 3 का भी लिया जायजा और 20 जून को PM किसान उत्सव दिवस। 9.5 करोड़ किसानों को मिलेगी सम्मान निधि की 23वीं किस्त। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी छिंदवाड़ा से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है किसान भाइयों का कार्यक्रम किसान वाणी।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय एवं कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग।
1: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, कार्यक्रम किसान वाणी सुन रहे हमारे सभी श्रोताओं का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। मैं हूं आपका अपना रेडियो मित्र मनीष गडकरी
2: और मैं हूं हेमा विश्वकर्मा।
1: तो स्वीकार करें हम दोनों की राम राम।
2: किसान भाइयों, आज के इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं खेती किसानी से जुड़ी उपयोगी जानकारियां, विशेषज्ञों के सुझाव और ग्रामीण जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण विषय। किसान भाइयों, अब मानसून का समय लगभग आ चुका है। हमारे अंचल सहित देश के कई हिस्सों में प्री मानसून की बारिश का दौर भी शुरू हो गया है। ऐसे में खेतों में तैयारियां तेज हो गई हैं।
1: बिल्कुल हेमा बहन, कहीं कहीं तो खेतों की जुताई पूरी हो चुकी है।
2: बिल्कुल भैया,
1: तो कहीं अंतिम चरण में है। किसान भाई बीज, खाद, कृषि यंत्र और अन्य आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था में जुटे हुए हैं। साथ ही यह भी तय कर लिया गया है कि इस वर्ष किस खेत में किस फसल को बोना है और किस प्रकार बोना है, कौन सा फसल चक्र अपनाना है।
2: जी हाँ भैया, और दरअसल खरीफ सीजन की बुआई किसी उत्सव से कम नहीं होती है।
1: हाँ।
2: यही वह समय होता है जब पूरे कृषि वर्ष की दिशा और दशा तय होती है।
1: बिल्कुल।
2: किसान की मेहनत, उसकी योजना और सही समय पर लिए गए निर्णय आने वाले महीनों की सफलता का आधार बनते हैं। इसलिए खरीफ की बुआई को कृषि का महापर्व भी कहा जाता है।
1: बिल्कुल किसान भाइयों, हम सभी यही कामना करते हैं कि इस वर्ष मानसून समय पर आए, पर्याप्त वर्षा हो और आपकी मेहनत रंग लाए, खेतों में हरियाली छाए, फसलें लहलहाए और आपके आंगन में खुशियां आए। आज के किसान वाणी कार्यक्रम में हमने एक ऐसे विषय को चुना है जो हमारे जिले ही नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र के किसानों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। हमारे जिले में खरीफ मौसम में सबसे अधिक क्षेत्रफल में बोई जाने वाली जो फसल है वह है मक्का।
2: हाँ भैया, यही कारण है कि आज की हमारी आज की बात पर मक्का की फसल उन्नतशील खेती कार्यक्रम में हम जानेंगे कि मक्का की अच्छी पैदावार के लिए किस प्रकार के बीजों का चयन किया जाए, बुआई का उचित समय क्या है, इन सब की जानकारियाँ हम अपने किसान भाइयों को देंगे।
1: बिल्कुल हेमा बहन, और इसके साथ ही कार्यक्रम के अगले हिस्से में होगी हमारी विशेष चर्चा।
2: बिल्कुल,
1: जिसमें हम आज चर्चा करेंगे गोखरू औषधीय पौधे की खेती की। किसान भाइयों, गोखरू एक महत्वपूर्ण औषधि फसल है जिसकी बाजार में अच्छी मांग रहती है। कम लागत में इसकी खेती किसानों के लिए अतिरिक्त आय का अच्छा स्रोत बन सकती है। हम आपको इसकी खेती, प्रबंधन और विपणन से जुड़ी आवश्यक जानकारियां प्रदान करेंगे।
2: बिल्कुल श्रोताओं, बरसात के दिनों में पौधारोपण कर किसान भाई अतिरिक्त आय का स्रोत बना सकते हैं। पर्यावरणीय संतुलन के लिए फलदार वृक्षों का रोपण कर अपनी अनुपयोगी जमीन का सदुपयोग भी कर सकते हैं। इसी बात के महत्व को बताने के लिए हमारे बीच मेहमान क्रम में पर्यावरणविद मनीषा परिहार से किसानों द्वारा लगाए जाने वाले पौधों की उपयोगिता और तकनीक पर आधारित मनीष गडकरी की होगी भेंटवार्ता।
1: किसान भाइयों, इसके साथ ही आपके मनोरंजन के लिए हम आपको सुनवाएंगे लोकगीत, लोक संगीत, साथ में ही होंगे कुछ जरूरी संदेश और नसीहत भी। तो आइए करते हैं कार्यक्रम का आगाज इस सुंदर से लोकगीत के साथ। इस गीत को, इस बुंदेली गीत को स्वरबद्ध किया है चंद्रकांता पाठक ने।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे चंद्रकांता पाठक की आवाज़ में ये लोकगीत। आइए अब जुड़ते हैं हमारी आज की बात से, जिसमें आज हम बात करेंगे मक्का फसल की उन्नत खेती के बारे में। किसान भाइयों, खरीफ सीजन की शुरुआत हो चुकी है और ऐसे समय में किसान भाई अपनी फसलों का चयन और खेतियों की तैयारियों में जुटे हुए हैं, इसलिए आज का विषय किसानों के लिए बेहद उपयोगी रहने वाला है। और हेमा बहन, आज की बात में हम आज बात करेंगे मक्का फसल की उन्नत खेती के बारे में। मक्का एक ऐसी फसल है जो कम समय में अच्छा उत्पादन देने के साथ साथ किसानों को बेहतर आर्थिक लाभ भी दिला सकती है। यदि इसकी खेती वैज्ञानिक तरीके से की जाए तो उत्पादन और मुनाफा दोनों ही बढ़ाए जा सकते हैं।
1: बिल्कुल मनीष भैया, आजकल मक्का का उपयोग केवल खाने तक सीमित नहीं रह गया है
0: जी।
1: पशु आहार, पोल्ट्री उद्योग, स्टार्च उद्योग, कॉर्नफ्लेक्स और कई खाद्य उत्पादों में इसकी मांग लगातार बढ़ रही है। और भैया, यही कारण है कि किसान भी इसकी खेती की ओर तेजी से आकर्षित हो रहे हैं। सबसे पहले अगर हम जलवायु और भूमि की बात करें तो मक्का की खेती लगभग सभी प्रकार की मिट्टियों में की जा सकती है, लेकिन अच्छी जल निकासी वाली दोमट या बलुई दोमट मिट्टी इसके लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। साथ ही खेत में पानी का रुकना फसल के लिए नुकसानदायक हो सकता है।
0: बिल्कुल हेमा बहन, यानी किसान भाइयों को यह विशेष ध्यान रखना चाहिए कि खेत में अतिरिक्त पानी जमा ना हो।
1: बिल्कुल भैया।
0: साथ ही

0: खेत की तैयारी भी अच्छी तरह से करनी जरूरी है ताकि बीजों का अंकुरण बेहतर हो सके। और साथ ही खेत की गहरी जुताई करने के बाद 2 से 3 बार हैरो या कल्टीवेटर चलाकर मिट्टी को भुरभुरी बना लेना चाहिए और अंतिम जुताई के समय अच्छी तरह से सड़ी हुई गोबर खाद को मिट्टी में मिलाकर ही इसका बोनी करना चाहिए।
1: हाँ भैया, इससे क्या होता है, मिट्टी की उर्वरता भी बढ़ती है,
0: हाँ,
1: है ना,
0: हाँ।
1: और पौधों की शुरुआती वृद्धि भी अच्छी होती है।
0: बिल्कुल।
1: और मनीष भैया, क्षेत्र और मौसम के अनुसार कई उन्नत किस्में भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं।
0: बिल्कुल।
1: ये संकर किस्मों में हम बात करें, गंगा 5, गंगा 11, संकर 101 और अन्य उन्नत प्रजातियाँ किसानों के बीच काफ़ी लोकप्रिय हैं।
0: बिल्कुल।
1: और भैया, इन किस्मों में रोगों का प्रकोप अपेक्षाकृत कम होता है और उत्पादन क्षमता भी अधिक रहती है।
0: बिल्कुल।
1: बीज का चुनाव जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही जरूरी है किसान भाइयों बीजों का उपचार। कई बार किसान भाई इस प्रक्रिया को नज़रअंदाज कर देते हैं।
0: बिल्कुल।
1: जी
0: और हेमा बहन, अगर यदि हम बुवाई की बात करें तो खरीफ के में मक्का बोने का जो सही समय कौन सा माना जाता है? मानसून की अच्छी शुरू वर्षा शुरू होते ही जून के अंतिम सप्ताह में या जुलाई के मध्य तक बुवाई करना सबसे उपयुक्त होता है। समय पर बुवाई करने से पौधों का विकास अच्छा होता है और उत्पादन पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
1: बिल्कुल भैया।
0: हेमा बहन, कई बार हमने देखा है कि कई बार किसानों को यह कहते सुना है कि खाद और उर्वरक का खर्च बढ़ रहा है, ऐसे में उसका सही उपयोग कैसे किया जाए?
1: बिल्कुल मनीष भैया, लेकिन किसान भाइयों, केवल खाद डालना ही ये सही समाधान नहीं है।
0: हाँ।
1: संतुलित मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश, इसका उपयोग किया जाना चाहिए। विशेष रूप से जो नाइट्रोजन है,
0: हाँ।
1: नाइट्रोजन को एक साथ ना देकर अलग अलग चरणों में देना ज्यादा लाभकारी होता
0: बिल्कुल
1: है।
0: हेमा बहन, इससे
1: हाँ
0: क्या है, जो पौधे हैं ना, पौधों को लगातार पोषण मिलता है,
1: बिल्कुल भैया।
0: यानी वैज्ञानिक तरीके से उर्वरक प्रबंधन करने पर लागत भी नियंत्रित रहती है और उत्पादन भी बेहतर मिलता है।
1: हाँ
0: इसके साथ ही सिंचाई प्रबंधन भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मक्का में घुटनावस्था, फूल आने की अवस्था और दाना भरने की अवस्था सबसे अधिक संवेदनशील मानी जाती है। इन अवस्थाओं में नमी की कमी होने पर उत्पादन पर सीधा असर पड़ता
1: जी
0: है।
1: हाँ, और किसान भाइयों, खरपतवारों का भी काफ़ी प्रभाव पड़ता है हमारी किसान खेती में।
0: बिल्कुल।
1: कई बार हम किसान भाई समय पर निराई गुड़ाई नहीं कर पाते हैं, जिससे पौधों की वृद्धि भी प्रभावित होती है। और बुवाई के लगभग 15 से 20 दिन बाद पहली निराई गुड़ाई कर लेना चाहिए। 30 से 40 दिन के बाद दूसरी निराई गुड़ाई जो है लाभदायक रहती है। इससे खरपतवार नियंत्रण के साथ साथ मिट्टी में वायु का संचार भी बहुत बेहतर होता है।
0: और हेमा बहन, अब बात करते हैं रोग और कीटों की,
1: जी
0: क्योंकि
1: हाँ
0: यदि समय पर इसकी पहचान ना हो तो हमारी फसल को काफ़ी नुकसान हो सकता
1: बिल्कुल हो
0: है।
1: सकता है भैया।
0: किसान भाइयों, मक्का में तना छेदक, फॉल अर्मी वर्म, पत्ती झुलसा रोग, तुलासिता रोग और तना सरण रोग जैसी समस्याएं देखने को मिलती है। इसलिए किसानों को नियमित रूप से खेत का निरीक्षण करते रहना चाहिए। शुरुआती लक्षण दिखाई देते ही नियंत्रण उपाय अपनाना चाहिए। कई बार किसान भाई तब तक इंतजार करते रहते हैं जब तक रोग पूरे खेत में नहीं फैल जाता, जबकि शुरुआती अवस्था में नियंत्रण करना ज़्यादा आसान और कम खर्चीला होता
1: बिल्कुल
0: है।
1: भैया, और समय पर निगरानी, कृषि विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार दवाओं का उपयोग करने से नुकसान से काफ़ी हद तक बचा जा सकता है ना मनीष जी। अब कार्यक्रम के अंत में हम किसान भाइयों को कटाई और भंडारण के बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहते हैं
0: बिल्कुल।
1: कि जब भुट्टो के दाने पूरी तरह पक जाएं और उनमें नमी कम हो जाए, तब हमें इनकी कटाई कर लेना चाहिए। कटाई के बाद दानों को अच्छी तरह सुखाना बहुत ज़रूरी है। अधिक नमी वाले दानों में जो भंडारण किया जाता है, तो उनमें फफूंद और कीटों का प्रकोप बढ़ जाता है।
0: तो किसान भाइयों बहनों, आज हमने मक्का की उन्नतशील खेती से जुड़ी लगभग सभी महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त की और जानकारियां साझा की। हमें विश्वास है कि यह जानकारियां आपके लिए उपयोगी साबित होगी। इसी उम्मीद के साथ आप वैज्ञानिक तकनीकों को अपनाकर अपनी फसल का उत्पादन करेंगे और अपनी आय को बढ़ाएंगे।
1: बिल्कुल।
0: हमारी आज की बात को देते हम यही विराम और आपको पुनः लिए चलते हैं मनोरंजन की ओर और सुनवाते हैं यह लोकगीत।

0: मैंने 2015-16 से ऑयल पाम की खेती की है और इससे पर्यावरण को कुछ नुकसान है ही नहीं। और इनका जो पेड़ पौधा होता है, इनसे हम मल्चिंग भी यूज करते हैं और इनका यूज से हम काफ़ी सारा ज़मीन में नमी लेते हैं। और इनके अंदर इंटरक्रॉप जो है, जो कपास वगैरह लगाते हैं, तो हम डबल गुण आय लेते हैं और अच्छा रहता है।
1: ऑयल पाम का खेती में धान और गन्ने से कम पानी लगता है। इसमें गवर्नमेंट का तरफ से ड्रिप सिंचाई के लिए पैसा भी दिया जाता है।
2: ऑयल पाम का खेती के लिए मुझे सरकार ने पौधे सीडलिंग देते हैं, वो जब बड़ा हो जाता है, जो फल जो देता है, हर महीने सरकार उसी फल खरीदने के लिए एक रेट बना कर देते हैं, वहीं रेट पे कंपनी खरीद लेते हैं। मैं काट के खट्टा कर देता हूँ, कंपनी उठा के लिए जाते हैं।

0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 20 जून को हुगली पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी करेंगे। इसके तहत 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि सीधे हस्तांतरित की जाएगी। पीएम किसान की इस किश्त के साथ ही किसानों को हस्तांतरित कुल राशि 4,46,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी, जो करोड़ों किसान परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान कर रही है। अन्नदाता का बढ़ता मान,
1: पीएम किसान। श्रोताओं, संदेश से पहले आपने सुना रामकिशोर सूर्यवंशी की आवाज में लोकगीत, और आइए अब हम जुड़ते हैं हमारे आज के मेहमान क्रम से। आज के मेहमान क्रम में पर्यावरणविद मनीषा परिहार से किसानों द्वारा वर्षा काल में लगाए जाने वाले पौधों की उपयोगिता और तकनीक पर आधारित मनीष गडकरी की भेंट वार्ता।
2: किसान भाइयों, आज के मेहमान क्रम में आज हमारे साथ हैं जानी मानी पर्यावरणविद मनीषा परिहार जी, जिनसे आज हम किसानों को पौधरोपण के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, इसकी उपयोगिता के बारे में जानेंगे। मनीषा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे सभी किसान भाइयों की ओर से आपको हमारी राम राम।
3: राम राम मनीष भैया, और मुझे प्रोग्राम में बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद
2: जी। मनीषा जी, सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि भाई किसानों को ही पौधे लगाने की आवश्यकता क्यों है?
3: बहुत सिंपल सा आंसर है इस बात का कि 70% आबादी भारत की जो कृषि आधारित लाभ पर चल रही है, उनका जीवन यापन होता है। तो हम फोकस कर रहे हैं कि मेड़ पर जो पेड़ लगाए जाते हैं वो क्यों जरूरी है और कितने जरूरी हैं, इसमें कौन से पेड़ लगाए जाएं, उनकी देखभाल कैसे की जाए।
2: बिल्कुल मनीषा जी, जो हमारे किसान भाई हैं वो पौधे लगाकर नवाचार करना चाहते हैं
3: जी,
2: ताकि उनके आय के स्रोत बढ़े
3: जी।
2: तो अपनी आय के स्रोत तो बढ़ेंगे ही, साथ ही पर्यावरणीय संतुलन भी इससे बिल्कुल बढ़ेगा
3: जी। बिल्कुल,
2: तो
3: बिल्कुल सही बात है।
2: तो हम जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि हमारे किसान भाई ऐसे कौन से पौधे हैं जिनको वे लगा सकते हैं, जो आसानी से लगाए जा सकते हैं और जिसमें उन्हें लाभ भी प्राप्त हो
3: जी। तो पौधों का चुनाव करते समय हमें मुख्य रूप से किसान भाइयों ये बातें ध्यान में रखनी है कि हमारा पेड़ लगाने का उद्देश्य क्या है। मेड़ पर जो पेड़ लगाए जा सकते हैं उसको हम चार भागों में बांट सकते हैं। पहला है फलदार, दूसरा इमारती या अन्य लकड़ियां, तीसरा औषधि और चौथा है घास या अन्य। तो फलदार पेड़ों में बहुत साधारण तरीके से यदि हम बोले तो आम, अमरूद, आंवला, नींबू, मौसम्बी, जामुन, कटहल, सीताफल, बेर, करौंदा और सहजन, इसके साथ ही तेंदू, चार चिरौंजी, शहतूत और अंजीर लगाए जा सकते हैं। इमारती लकड़ियां यदि हम चाहें तो सागौन, शीशम, करंज, बांस और अर्जुन और नीम के पेड़ लगा सकते हैं। साथ ही साथ औषधीय पेड़ों में से यदि कोई हमें चुनना हो तो हम तुलसी, सहजन, आंवला, करंज, रीठा, शिकाकाई और मीठी नीम चुन सकते हैं।
2: बिल्कुल, ये आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी। अच्छा मैडम, ये बताइए कि ये जो पौधे लगाए जाते हैं इनके लगाने के लिए पहले हमको क्या तैयारी करनी होगी, खेतों की क्या तैयारी करनी होगी?
3: जी, खेतों में सबसे पहले जो ध्यान रखने योग्य बात है, सबसे पहले तो आप जगह को चुन लीजिए। अब जगह कैसे चुनेंगे, जैसे कि कोई परती भूमि पड़ी है, कोई खाली जमीन पड़ी है, एक ऐसी जमीन आपके पास है जिसमें खेती तो हो रही है लेकिन उसका अन्य हिस्सा बंजर है,
2: बंजर पड़ा,
3: या कोई ढलान वाली जमीन है
2: जी,
3: या फिर आपके पास में कोई पानी का स्रोत है उसके आसपास की कुछ जमीनें हैं जो खाली पड़ी हैं
2: जी,
3: या फिर दो खेतों के बीच में सरकारी जमीनें जिन्हें घास की भूमि कहा जाता है वो पड़ी। देखभाल करने के लिए सबसे पहले जगह चुने जिस जो मैंने पॉइंट्स बताए उनके हिसाब से, फिर गड्ढा तैयार करें, उसमें पौधा रोपें, पौधे रोपते समय खाद जरूर डालें, सुरक्षा के लिए ट्री गार्ड लगाएं। आपके पास यदि ट्री गार्ड लगाने के लिए पैसे नहीं है तो कांटेदार झाड़ियों से उनको रूंद दें
2: जी।
3: 2 से 3 वर्षों तक शिशु की तरह उसकी देखभाल करें और प्रारंभिक दिनों में निराई, गुड़ाई और रोग के नियंत्रण।
2: बिल्कुल मनीषा जी, हमारे किसान भाइयों के पास एक समस्या होती है कि उन्हें ये पौधे कहाँ से उपलब्ध हो, क्योंकि कई बार उन्हें पौधे उपलब्ध नहीं हो पाते हैं
3: जी। हम लोग दो बातें करेंगे, एक तो सहायता कहाँ से मिलेगी, कैसे मिलेगी, और दूसरा पौधे कहाँ से प्राप्त करें। तो सरकारी विभाग में उद्यानिकी

0: विभाग, कृषि विभाग और वन विभाग, इस तरह के लोग आपकी सहायता करेंगे और आपको सलाह देंगे। पौधे प्राप्त करने के लिए छिंदवाड़ा जिले में 3-4 सरकारी नर्सरियां हैं, जैसे पुआमा की नर्सरी है, अनखावाड़ी की नर्सरी है, जमुनिया की नर्सरी है।
1: जी
0: यहां से आप इमारती और फलदार पेड़ प्राप्त कर सकते हैं।
1: मनीषा जी, आपने ये तो बता दिया कि कौन कौन से पौधे लगाना है और ये पौधे कहाँ से प्राप्त होंगे। हमारे किसान भाई ये भी जानना चाहते हैं कि आखिर इन पौधों को लगाने से उन्हें क्या लाभ मिलेगा।
0: जी, तो सबसे पहली और फॉरमोस्ट जो इम्पोर्टेंट बात है वो
1: हाँ
0: ये है कि पौधे लगाने से आपका ग्रीन FD, मतलब आप फ्यूचर के लिए, बच्चों के लिए एक FD बनाकर जा रहे हो।
1: जी,
0: ये पौधे आपके परिवार के लिए
1: हमारे
0: एक
1: आने वाली
0: बुजुर्ग की
1: पीढ़ी के
0: तरह
1: लिए,
0: है। हाँ
1: आने वाली पीढ़ी
0: हाँ
1: के
0: कि
1: लिए बहुत
0: बच्चों,
1: लाभदायक रहेगी। जी
0: मिट्टी का संरक्षण तो बहुत कॉमन सी चीज है
1: बिल्कुल
0: जो सभी
1: बिल्कुल
0: को पता है,
1: जी।
0: नमी बनाए रखना, विंड ब्रेकर का काम करना कि बहुत तेज आंधी या तूफान आ रहे हैं तो आपकी
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: फसलें
1: बिल्कुल
0: फटाने से बचता है, वो जैव विविधता या बायोडायवर्सिटी को बढ़ाता है और पॉलिनेशन में सहायता करता है,
1: बिल्कुल
0: माइक्रो क्लाइमेट में सुधार करता है, बफर जोन तथा पशुओं के लिए चारा और छाया प्रदान करता है।
1: जी
0: धार्मिक महत्व में इसके जड़, तने और पत्तियों में ब्रह्मा, विष्णु और महेश का निवास माना जाता है,
1: जी
0: जैसे कि पीपल, बरगद, बेल, आंवला और तुलसी के पेड़ों की पूजा की जाती है। पर्यावरण संरक्षण में यह ग्रीन कवच या कवर को बढ़ाता है। 3 तरह के कवच होते हैं, ग्रीन, ब्लू और ग्रे। तो ग्रीन कवर को ये बढ़ाता है और ग्लोबल वार्मिंग के टाइम पर इसमें छाया और तापमान नियंत्रण में
1: बिल्कुल।
0: सहायता
1: और
0: मिलती है।
1: किसान भाइयों, यदि आपके दृष्टिकोण से, किसान भाइयों के दृष्टिकोण से देखें तो सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये है कि आय का अतिरिक्त स्रोत हो
0: हाँ,
1: सकता है।
0: मैं सबसे ज्यादा स्ट्रेस आय पर ही दूंगी
1: जी
0: क्योंकि कृषि में आय का थोड़ा सा हो जाता है क्योंकि हम लोग सब ऋतुओं पर निर्भर करते हैं।
1: बिल्कुल
0: तो यदि अतिरिक्त लाभ लेना है या अतिरिक्त कमाना है पैसा आपको, तो आप मेड़ों पर फलदार, इमारती और छायादार पेड़ लगाइए, जरूर जरूर इससे आपको फायदा मिलेगा।
1: बिल्कुल मनीषा जी, आज आपने हमारे किसान भाइयों को बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी और बहुत महत्वपूर्ण बातों से अवगत कराया। हम एक बार आपसे ये जानना चाहते हैं कि ऐसी कौन सी बात है जो छूट गई है हमारी बातों में और आप हमारे किसान भाइयों को बताना चाहती हैं।
0: सीमा की सजेरी फसल भी हंसेगी, मतलब सीमाएं भी आपकी सुंदर दिखेंगी और आपकी फसलें भी हंसेंगी। मेड़ पर हरियाली, खेतों में खुशहाली, मतलब यदि मेड़ पर हरियाली आप बनाएंगे तो आपके खेतों में भी खुशहाली रहेगी, घर में भी खुशहाली रहेगी।
1: बिल्कुल
0: इसके अलावा आपके परिवार को पोषण और अतिरिक्त आय भी मिलेगी।
1: बिल्कुल। तो मनीषा जी, आज आप हमारे इस कार्यक्रम में आई और आपने हमारे किसान भाइयों को बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियों से अवगत कराया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सभी किसान भाइयों की ओर से आपको हमारी राम राम।
0: जी, जय जवान, जय किसान, जय हिंद।
2: श्रोताओं, अभी आपने मेहमान क्रम में सुना पर्यावरणविद मनीषा परिहार से किसानों द्वारा वर्षा काल में लगाए जाने वाले पौधों की उपयोगिता और तकनीक पर आधारित मनीष गडकरी से भेंट वार्ता। और आइए अब हम जुड़ते हैं हमारे आज की चर्चा से। हमारी आज की चर्चा का विषय है गोखरू औषधि पौधों की वैज्ञानिक खेती। किसान भाइयों, औषधि पौधों की मांग जो है दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आयुर्वेद और हर्बल उद्योगों में लगातार इसका उपयोग बढ़ रहा है। और आज हम बात कर रहे हैं गोखरू पौधे की। यह पौधा जो कम लागत और कम देखभाल में किसानों को अतिरिक्त आय देने की क्षमता रखता है।
1: बिल्कुल हेमा बहन, किसान भाइयों, वर्तमान समय में औषधीय फसलों की खेती तेजी से लोकप्रिय हो रही है। आयुर्वेदिक दवाओं के बढ़ते उपयोग के कारण कई कंपनियां जड़ी बूटियां की खरीदी कर रही है। कोकरू भी ऐसी ही महत्वपूर्ण औषधीय फसल है जिसका उपयोग अनेक आयुर्वेदिक दवाओं के निर्माण के लिए किया जाता है।
2: बिल्कुल मनीष भैया, और ये जो पौधा है जमीन में फैलने वाला है, जिसकी शाखाएं चारों ओर फैलती हैं, पत्तियां छोटी और चने की पत्तियों जैसी दिखाई देती हैं। पौधों में पीले रंग के फूल आते हैं, बाद में कांटेदार फल बनते हैं जिन्हें गोखरू कहा जाता है।
1: किसान भाइयों, आयुर्वेद में गोखरू का उपयोग मूत्र रोगों, कमजोरी, जोड़ों के दर्द एवं अन्य बीमारियों के उपचार में किया जाता है। इसके फल, बीज और पूरे पौधे का औषधीय महत्व है। यही कारण है कि बाजार में इसकी मांग लगातार बनी रहती
2: जी
1: है।
2: हाँ श्रोताओ, अब हम बात करते हैं इसके उपयुक्त भूमि और जलवायु की। गोखरू लगभग सभी प्रकार की मिट्टियों में इसे उगाया जा सकता है, लेकिन अच्छी जल निकास वाली दोमट भूमि होती है इसकी खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। खेत में पानी का ठहराव नहीं होना चाहिए क्योंकि इससे पौधों का जो विकास है वह प्रभावित हो सकता है। जहाँ तक जलवायु की हम बात करें

0: तो भैया गोखरू गर्म और शुष्क जलवायु में अच्छा विकास करता है। इसके लिए 20 से 40 डिग्री सेल्सियस तापमान वृद्धि के लिए अच्छा माना जाता है। यही कारण है कि राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश सहित कई देश के कई राज्यों में इसकी खेती सफलतापूर्वक की जा रही है।
1: किसान भाइयों, किसी भी फसल की अच्छी पैदावार के लिए खेत की तैयारी बहुत ज़रूरी होती है। गोखरू की खेती के लिए सबसे पहले खेत की गहरी जुताई करनी चाहिए। इससे मिट्टी भुरभुरी हो जाती है और खरपतवार भी नष्ट हो जाते हैं। किसान भाइयों, पहली जुताई के बाद खेत को कुछ दिनों तक खुला छोड़ देना चाहिए, ताकि धूप के प्रभाव से मिट्टी में मौजूद हानिकारक कीट और रोगजनक नष्ट हो सकें। इसके बाद 2 से 3 बार कल्टीवेटर या देशी हल से जुताई करके मिट्टी को अच्छी तरह से तैयार कर लेना चाहिए।
0: बिल्कुल भाइयों, किसान भाइयों खेत की तैयारी के दौरान अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर खाद, कंपोस्ट खाद का उपयोग अवश्य करें। जैविक खाद पौधों को आवश्यक पोषण तत्व उपलब्ध कराती है और मिट्टी की उर्वरक क्षमता भी बढ़ाती है। नीम की खली तथा टाइकोडर्मा जैसे जैविक उत्पादों का उपयोग भी लाभदायक माना जाता है। इसकी अंतिम जुताई के बाद खेत को समतल कर लेना चाहिए और आवश्यकता के अनुसार क्यारियां मेढ़े बना लेना चाहिए।
1: किसान भाइयों, आप जानते हैं कि बुवाई के समय और विधि के बारे में। किसान भाइयों, गोखरू की बुवाई सामान्यतः जून और जुलाई के महीने में की जाती है। मानसून की शुरुआत का समय इसके लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। वर्षा होने के बाद मिट्टी में पर्याप्त नमी उपलब्ध रहती है, जिससे बीजों का अंकुरण अच्छा होता है। एक एकड़ क्षेत्र में लगभग 5 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। किसान भाइयों, हमेशा प्रमाणित और अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों का ही चयन करना चाहिए, ताकि पौधों की संख्या और उत्पादन दोनों ही अच्छा मिल
0: बिल्कुल
1: सके।
0: भैया, बुवाई सामान्यतः हल के पीछे कुंड बनाकर की जाती है। बीजों को लगभग 1 इंच की गहराई पर बोया जाता है। पौधे से पौधों की दूरी 4 से 5 इंच रखी जाती है। कतारों में बुवाई करने से फसल की देखभाल और खरपतवार नियंत्रण आसान हो जाता है। यदि बुवाई के समय पर्याप्त वर्षा ना हो तो हल्की सिंचाई की जा सकती है।
1: किसान भाइयों, यह फसल अधिक पानी की मांग नहीं करती। अब बात करते हैं फसल की देखभाल की। तो यह एक ऐसी फसल है जिसमें अधिक देखरेख की आवश्यकता नहीं होती है। प्रारंभिक अवस्था में खेत को खरपतवार से मुक्त रखना जरूरी होता है। खरपतवार पौधों से नमी और पोषक तत्वों से प्रतिस्पर्धा करते हैं, जिससे उत्पादन प्रभावित होता है।
0: जी हाँ किसान भाइयों, इसलिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए। सामान्य परिस्थितियों में एक बार निराई गुड़ाई पर्याप्त रहती है, लेकिन यदि खरपतवार अधिक हो तो दूसरी बार भी इस कार्य को किया जा सकता है।
1: किसान भाइयों, अब बात करते हैं कटाई और उत्पादन की। जब पौधों की पत्तियां सूखने लगें और फल भी पूरी तरह से पक जाएं, तब कटाई करना चाहिए। पौधों को जड़ से उखाड़ कर 1 से 2 दिन तक खेत में ही सुखाया जाता है। सूखने के बाद फलों को अलग कर लिया जाता है। कई बार औषधि उपयोग के लिए पूरे पौधे का भी संग्रह किया जाता है। इसलिए कटाई के समय सावधानी बरतना अत्यंत आवश्यक है। उत्पादन की दृष्टि से देखा जाए तो 1 एकड़ क्षेत्र में लगभग 10 से 15 क्विंटल सूखे फलों की प्राप्ति होती है। उत्पादन भूमि की उर्वरता, मौसम और फसल प्रबंधन पर निर्भर करता है।
0: बिल्कुल
1: तो हेमा बहन, ये तो थी हमारी चर्चा। आइए हमारे किसान भाइयों को पुनः लिए चलते हैं मनोरंजन की ओर और सुनवाते हैं ये लोकगीत।

0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 20 जून को हुगली पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी करेंगे। इसके तहत 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि सीधे हस्तांतरित की जाएगी। पीएम किसान की इस किश्त के साथ ही किसानों को हस्तांतरित कुल राशि 4,46,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी, जो करोड़ों किसान परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान कर रही है।
1: श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर मिलेंगे इसी वादे के साथ। दीजिए इजाजत। मैं हेमा विश्वकर्मा
2: और मैं मनीष भैया
1: कहते हैं राम राम, राम जय जवान जय किसान।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय एवं कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग।
1: अभी किसान भाई सुन रहे थे अपना कार्यक्रम, प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी छिंदवाड़ा से। अगला कार्यक्रम कुछ ही देर में।

FM 102.2 MHz पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के छिंदवाड़ा केंद्र से। पेश है शीर्षक संगीत।

दोस्तों कहते हैं चांद सिर्फ आसमान में नहीं होता, किसी की दुआओं में होता है, किसी की यादों में, किसी की मुस्कान में। आज हम उसी चांद के बारे में बातें कर रहे हैं, उसकी चमक, उसका जादू, उसकी खामोशी, और उन गीतों का सिलसिला चला रहे हैं जो चांद की तरह दिल को रोशन कर दे। और इसी चांदनी एहसास के साथ पेश है ये गीत।

दोस्तों, चांद एक अजीब सा साथी है, कभी पूरा गोल, कभी आधा, कभी एक पतली सी कली। लेकिन चाहे जैसा भी हो, चांद हमें अच्छा लगता है क्योंकि वो बदलते वक्त का सबूत है और उम्मीद का भी। चांद की यही खूबसूरती हमारे फिल्मी संगीत में भी झलकती है। आइए सुनते हैं चांद की खूबसूरती इस गीत में।

चांद का रिश्ता सिर्फ आसमान से नहीं, हमारी यादों से भी है। कभी हम चांद को देखकर खुश होते हैं, कभी वही चांद किसी की याद दिला देता है। कभी नींद नहीं आती तो चांद को देखते देखते दिल हल्का हो जाता है। यही वजह है कि चांद पर बने गीत हमें फौरन छू जाते हैं, क्योंकि हर किसी का अपना एक चांद होता है।

तो दोस्तों, चांद की इस रोशनी से भरी शाम में कभी कभी चांद के पार जाने की तमन्ना भी संगीत में सुनाई देती है।

दोस्तों, आज की ये जान भरी बातों में वक्त कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। आप जहाँ भी हों, आपका आसमान हमेशा रोशनी से भरा रहे और आपके सपनों का चांद हमेशा पूरा निकले। चलो

दोस्तों, उम्मीद है कि चांदनी से सजा यह सफर आपके दिल को छू गया होगा। मैं आपकी रेडियो दो से बाबारी आपसे लेती हूँ इजाजत, लेकिन चांद वो हर रात आपकी खिड़की पर दस्तक देता रहेगा। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे शीर्षक संगीत, ये आकाशवाणी छिंदवाड़ा है। प्रस्तुत है सबरस, कार्यक्रम की पहली रचना अनुराधा पौडवाल के स्वर में।

0: इसी के साथ सबरस कार्यक्रम अब समाप्त होता है। एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के छिंदवाड़ा केंद्र से। 8:45 होने वाले हैं, कुछ ही देर में सुनिएगा दिल्ली से प्रसारित समाचार संध्या।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रौद्योगिकी में प्रगति तभी हो सकती है जब उसका लाभ सब तक पहुंचे। उन्होंने पेरिस में विवटेक शिखर सम्मेलन में भारत के तेजी से हो रहे डिजिटल परिवर्तन में प्रौद्योगिकी के उपयोग का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने भारत में निवेश के अवसरों और विस्तार योजनाओं पर फ्रांस के प्रमुख उद्योगपतियों के साथ चर्चा की। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों का आकलन करने के लिए उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने ईरान और अमेरिका के बीच नए समझौतों का एक ऐतिहासिक दस्तावेज बताया। यूक्रेन ने एक सप्ताह के अंदर दूसरी बार रूस के मॉस्को में तेल रिफाइनरी पर हमला किया और चीन में विश्व मुक्केबाजी कप में मीनाक्षी हुडा क्वार्टर फाइनल में पहुंची। कल क्वार्टर फाइनल में चार भारतीय

0: के बाद खेलेंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को नवाचार और प्रौद्योगिकी का वैश्विक केंद्र बताया है। फ्रांस के पेरिस में विवाटेक 2026 सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पिछले एक दशक में तेजी से परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ रहा है जो प्रौद्योगिकी से संचालित है। उन्होंने कहा कि भारत वित्तीय समावेशन, शिक्षा, कृषि और अन्य क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि भारत ने विश्व की सबसे बड़ी डिजिटल पहचान प्रणाली और विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म विकसित किया है।
1: द मैसेज आई शेयर देन एट विवाटेक 2021 वेयर कन्वेंशन फेल्स इनोवेशन कैन हेल्प। इंडिया हैज बीन गोइंग थ्रू अ रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन दैट इज पावर्ड बाय टेक्नोलॉजी फ्रॉम क्रिएटिंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डिजिटल आइडेंटिटी सिस्टम टू द वर्ल्ड लार्जेस्ट डिजिटल पेमेंट platforms. We are using technology at a massive scale for financial inclusion, education, telemedicine, agriculture and more.
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रौद्योगिकी से तभी प्रगति हो सकती है जब उसका लाभ सभी तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि भारत का मानना है कि उथल पुथल भरे इस दौर में प्रौद्योगिकी का लाभ सभी को मिलना चाहिए।
1: AI must improve lives, widen access, drive growth and also help us sustain a healthy planet. Our participation as the AI country partner at VivaTech 2026 reflects this very vision. For India, AI means all inclusive.
0: प्रधानमंत्री ने वैश्विक नवोन्मेषकों से भारत के साथ मिलकर काम करने और ऐसी नई तकनीक विकसित करने का आह्वान किया जो सबके लिए लाभकारी हो। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर प्रधानमंत्री ने कहा कि यह समझौता व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी आदान प्रदान और पर्यटन को बढ़ावा देगा।
1: 2026 इज अ स्पेशल ईयर फॉर इंडिया एंड यूरोप। एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर We concluded the historic India-EU Free Trade Agreement. This agreement will expand our trade and investment, and it will open up many pathways for the exchange of talent, technology and tourism.
0: इससे पहले श्री मोदी ने पेरिस में कई प्रमुख उद्योगपतियों से मुलाकात की। इस दौरान विनिर्माण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और समुद्री अवसंरचना पर चर्चा हुई। बैठक के बाद आकाशवाणी से बात करते हुए इन उद्यमियों ने भारत में बढ़ते अवसरों का उल्लेख किया। एक रिपोर्ट।
2: सेंट गोबा के चेयरमैन और सीईओ बेनवा बेजा ने कहा कि भारत एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए एक बड़े विनिर्माण और निर्यात केंद्र के रूप में उभर रहा है। मिस्त्राल एआई के सीईओ आर्थर मेंश ने कहा कि कंपनी भारतीय भाषाओं के लिए सहयोग बढ़ाने, एआई अनुसंधान साझेदारी का विस्तार करने और संप्रभु एआई पर गहरा सहयोग तलाशने की इच्छुक है। सीएमए सीजीएम के चेयरमैन और सीईओ रडाल्फ सादे ने कहा कि भारत हरित जहाज निर्माण के केंद्र के रूप में तेजी से विकसित हो रहा है। महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस, फ्रांस।
0: प्रधानमंत्री आज भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। इसके बाद श्री मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना होंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा की तैयारियों के आकलन के लिए आज उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने परीक्षा

0: प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने पर बल दिया। उन्होंने अधिकारियों को स्वतंत्र और निष्पक्ष पुनर्परीक्षा आयोजित करने के लिए सभी आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित करने और सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि 52 भारतीय संस्थान QS विश्वविद्यालय रैंकिंग 2027 में शामिल हुए हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली वैश्विक स्तर पर 118वें नंबर पर है। ये भारत का सर्वोच्च रैंक वाला संस्थान बना हुआ है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली, बम्बई और मद्रास विश्व के शीर्ष 200 विश्वविद्यालयों में शामिल हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रैंकिंग में 52 भारतीय संस्थानों के शामिल होने पर प्रसन्नता व्यक्त की। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में कई समीक्षा बैठकों की अध्यक्षता की। इन बैठकों में सहकारी बैंकिंग, जैविक उत्पादों और सहकारी निर्यात को मजबूत करने के राष्ट्रीय प्रारूप की समीक्षा की गई। सहकारी बैंकिंग से संबंधित पहलुओं की समीक्षा के दौरान श्री शाह ने प्रौद्योगिकी अपनाने, साइबर सुरक्षा, डिजिटल भुगतान और बेहतर सेवा वितरण के माध्यम से सहकारी बैंकिंग क्षेत्र की प्रगति की समीक्षा की। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गुर से मुलाकात की। इस दौरान आतंकवाद और मादक पदार्थों के खिलाफ दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने पर विस्तृत चर्चा हुई। गृह मंत्री ने कहा कि भारत वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस अवसर पर आकाशवाणी समाचार विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के प्रसारित कर रहा है। आज बात नक्सलवाद के उन्मूलन और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास के लिए सरकार के महत्वपूर्ण प्रयासों की।
1: नरेंद्र मोदी सरकार की सुरक्षा अभियान, नक्सलियों की फंडिंग पर रोक और प्रभावित इलाकों में तेज विकास कार्यों की संयुक्त रणनीति के चलते देश को नक्सलवाद और माओवादी आतंक से मुक्त करने में सफलता मिली है। पिछले कुछ वर्षों में कई बड़े सुरक्षा अभियानों ने माओवादी नेटवर्क को कमजोर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वर्ष 2022 में झारखंड के बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र में ऑपरेशन ऑक्टोपस चलाया गया। इसी वर्ष फरवरी में ऑपरेशन डबल बुल के तहत झारखंड के गुमला, लोहरदगा और लातेहार जिलों को नक्सली प्रभाव से मुक्त कराया गया। ऑपरेशन के तहत झारखंड के सरायकेला, पश्चिम सिंहभूम और खूंटी जिलों में नक्सलियों के ठिकानों को निशाना बनाया गया। वर्ष 2025 में तेलंगाना छत्तीसगढ़ सीमा पर चलाए गए ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट ने बचे हुए नक्सली कैडर को बड़ा झटका दिया। बस्तर के निवासी ने सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि सरकार ने देश को नक्सलवाद से मुक्त करने का अपना वादा पूरा किया है।
2: तो उन्होंने जो प्रॉमिस वो पूरा करके दिखाया, तो मोदी सरकार को, अमित शाह जी को, विजय शर्मा जी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ।
3: यहाँ पर आजकल कोई डर का माहौल नहीं है, कोई भी बच्चे यहाँ पे फ्रीली अपना काम कर पाते हैं।
1: इन अभियानों के परिणाम भी स्पष्ट रूप से दिखाई दिए हैं। वर्ष 2024 में 217 माओवादी मारे गए, जबकि 2025 में यह संख्या बढ़कर 256 हो गई। इस दौरान कई बड़े नक्सली नेताओं का भी खात्मा हुआ, जिनमें हिड़मा, कादरी सत्यनारायण रेड्डी, गणेश उइके और नक्सली महासचिव बसवराजू शामिल हैं। सुरक्षा अभियानों के साथ साथ नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों को भी तेजी से आगे बढ़ाया गया। झारखंड के गुमला जिले के रहने वाले टेम्बू उराव ने कहा कि जब से मोदी सरकार बनी है तब से नक्सलवाद धीरे धीरे खत्म हो गया और लोग शांति और सद्भाव के साथ रह रहे हैं।
4: हमारा क्षेत्र पूरी तरह से उग्रवाद के गिरफ्त में था, तो वहाँ अमन चैन एकदम नहीं था। हम लोग को दिन में भी निकलने के लिए डर लगता था। 2014 के बाद जब से मोदी सरकार बना है तब से धीरे धीरे करके अब उग्रवाद समाप्त हो गया है और आज हम लोग अमन चैन और बढ़िया से जीवन यापन कर रहे हैं।
1: नक्सलियों की फंडिंग रोकने में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने भी अहम भूमिका निभाई। इससे नक्सली संगठनों के संसाधनों और गतिविधियों पर बड़ा असर पड़ा। विशेष अवसंरचना योजना के तहत स्पेशल फोर्स, राज्य खुफिया शाखाओं और जिला पुलिस को मजबूत बनाने के लिए 1761 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। इसके अलावा नक्सलवाद के खात्मे के लिए प्रभावित क्षेत्रों में 596 सुदृढ़ पुलिस थानों का निर्माण भी किया गया। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए AFCAT 2 of 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें afcat.edcil.co.in पर।
2: ये आकाशवाणी है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियान ने ईरान और अमेरिका के बीच नए समझौते को ऐतिहासिक दस्तावेज और सशक्त ईरान का संदेश बताया है। उन्होंने कहा कि शांति केवल आपसी सम्मान के माध्यम से ही प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने वैश्विक शांति के प्रति ईरान की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए गरिमा, स्वतंत्रता और क्षेत्रीय सहयोग को बनाए रखने का भी आश्वासन दिया। यूक्रेन ने रूस के एक तेल शोधन संयंत्र पर हमला किया। एक सप्ताह के अंदर दूसरी बार ऐसा हमला हुआ है। रूस के रोस्तोव क्षेत्र में भी अन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। रूस ने 550 से अधिक यूक्रेनी ड्रोन नष्ट किए। हमले के बाद मॉस्को के 4 हवाई अड्डों से उड़ानें रोक दी गईं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

0: बार 21 जून को कोलकाता में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मुख्य कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि कार्यक्रम के लिए 38,000 लोगों ने पंजीकरण करा लिया है। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने आज आकाशवाणी चेन्नई में पद्मश्री से अलंकृत डॉक्टर आर श्रीधर को सम्मानित किया। डॉक्टर मुरुगन ने कहा कि डॉक्टर श्रीधर ने अपने करियर के दौरान रेडियो प्रोग्रामिंग में असाधारण नवाचार किए। आकाशवाणी और दूरदर्शन के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने भी डॉक्टर श्रीधर को भारतीय प्रसारण में क्रांतिकारी व्यक्ति बताते हुए उनकी सराहना की। बम्बई शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज लगातार पांचवें दिन बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 254 अंक बढ़कर 77,410 पर और निफ्टी 82 अंक बढ़कर 24,168 पर दर्ज हुआ। मिजोरम की सत्तारूढ़ जोरम पीपल्स मूवमेंट ने आज राज्यसभा में अपना पहला प्रतिनिधित्व हासिल कर लिया। पार्टी नेता के लालत लुआर गकीमा ने राज्य की एकमात्र सीट पर जीत हासिल की। मीनाक्षी हुड्डा चीन में विश्व मुक्केबाजी कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। मीनाक्षी ने पोलैंड की नतालिया कुचेवेस्का को 5-0 से हराया। कल क्वार्टर फाइनल में चार भारतीय मुक्केबाज खेलेंगे। वहीं ज्योति और जुगनू सेमीफाइनल में पहुंचकर भारत के लिए पदक पक्का कर चुकी हैं। उधर मकाऊ ओपन बैडमिंटन में अनमोल खारब और अस्मिता चलिहा महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। मौसम विभाग ने इस सप्ताह पूर्वोत्तर भारत और पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्र तथा सिक्किम के कई स्थानों पर मूसलाधार बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। बिहार, तमिलनाडु, पुदुचेरी और काराईकल में कल तक ऐसी ही स्थिति बने रहने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, प्रौद्योगिकी में प्रगति तभी हो सकती है जब उसका लाभ सब तक पहुंचे। उन्होंने पेरिस में विवाटेक शिखर सम्मेलन में भारत के तेजी से हो रहे डिजिटल परिवर्तन में प्रौद्योगिकी के उपयोग का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने भारत में निवेश के अवसर और विस्तार योजनाओं पर फ्रांस के प्रमुख उद्योगपतियों के साथ चर्चा की। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों का आकलन करने के लिए उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान ने ईरान और अमेरिका के बीच नए समझौते को ऐतिहासिक बताया। और चीन में विश्व मुक्केबाजी कप में मीनाक्षी हुड्डा क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। कल क्वार्टर फाइनल में चार भारतीय मुक्केबाज खेलेंगे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी का छिंदवाड़ा केंद्र है, एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है केंद्र सरकार के 12 साल पूरे होने पर विशेष द्विभाषीय कार्यक्रम।
2: ये आकाशवाणी है, 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनिए पूर्वोत्तर भारत के तेज विकास और नई संभावनाओं पर पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्रालय के सचिव संजय जाजू के साथ आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति की विशेष बातचीत।
3: नमस्कार श्रोताओं, पूर्वोत्तर भारत में बीते 12 वर्षों में जो विकास यात्रा का हमने एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण दौर देखा है, नए कीर्तिमान हमने देखे हैं, इस संबंध में आज हम कार्यक्रम में एक खास बातचीत आपके लिए लाए हैं। हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े हैं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के सचिव श्री संजय जाजू। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका कार्यक्रम में।
4: धन्यवाद।
3: सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि बीते 12 वर्षों में जो पूर्वोत्तर भारत की बदलती हुई तस्वीर को हमने देखा है, इस बदलती पिक्चर को आप कैसे देखते हैं और किस तरह से ये संभव हो पाया है, किन कदमों की बदौलत ही हो पाया है?
4: तो पूर्वोत्तर भारत में जो विकास हुआ है उसके मुख्यतः जो कारण है वो सस्टेन्ड फाइनेंशियल कमिटमेंट, दूसरा टारगेटेड प्रोग्राम डिलीवरी और तीसरा स्ट्रांग इंस्टीट्यूशनल कोऑर्डिनेशन। और ये सब जो कार्य हुआ है इसमें कोई एक सिंगल स्कीम जो पूरी कहानी को नहीं बताती है, ये मल्टीपल इनिशिएटिव्स का एक साथ समावेश होना, उनका कॉन्वर्जेंस होना जो ये चेंज दिखाई पड़ता है उसको दर्शित करता है। 10% ग्रॉस बजटरी सपोर्ट मैकेनिज्म जो 55 भारत सरकार के मंत्रालय और विभाग इम्प्लीमेंट करते हैं उसमें भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस वर्ष लगभग 1,00,000 करोड़ नॉर्थ ईस्ट में इन मिनिस्ट्रीज ने अपना व्यय किया है। साथ ही साथ ऐसे कई फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हैं, खासतौर पे नेशनल हाईवेज जहां पर 50,000 करोड़ SARDP नॉर्थ ईस्ट के तहत लगभग 4,800 किलोमीटर के कार्य पूरे हुए। साथ ही साथ भारतमाला परियोजना में 3,000 किलोमीटर के काम लगभग 70,000 करोड़ से

0: की लागत में पूरे हुए। इन सभी कार्यक्रमों से रेल, रोड्स, एयरवेज, इनमें उल्लेखनीय इम्प्रूवमेंट आया है। आज नॉर्थ ईस्ट में जहाँ तक हमारी कनेक्टिविटी का सवाल है, कई कैपिटल्स अब कनेक्ट हो गई हैं, साथ ही साथ 17 एयरपोर्ट्स नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट जब मैं कहता हूँ तो मैं सिक्किम को भी उसमें जोड़ रहा हूँ। अष्टलक्ष्मी में राज्यों में 17 एयरपोर्ट्स फंक्शनल हैं, उड़ान के तहत 90 रूट्स ऑपरेशनल हैं, और कृषि उड़ान स्कीम के तहत एयर फ्रेट चैनल को भी इम्प्लीमेंट किया गया है, जिसके द्वारा पेरिशेबल एग्री प्रोड्यूस को फार्मर्स की इनकम्स बढ़ाने में उपयोग में लिया जा रहा है।
1: एक बहुत महत्वपूर्ण योजना रही है जो पूर्वोत्तर भारत के विकास में एक बहुत बड़ा रोल निभा रही है, उसकी होलिस्टिक डेवलपमेंट में, पीएम डिवाइन। तो इस योजना के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे, कैसे इस योजना ने पूर्वोत्तर भारत के विकास को एक नई दिशा दिखाई है और कैसे ये योजना काम कर रही है?
0: पीएम डिवाइन स्कीम जो है ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है और ये हाल ही में लॉन्च की गई है पिछली फाइनेंस कमीशन साइकिल में। बड़े प्रोजेक्ट्स जिनकी लागत समझ लीजिए एक इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स की 50 करोड़ से ज्यादा, 50 करोड़ से 500 करोड़ तक के बीच के बड़े प्रोजेक्ट्स, ताकि जो बड़ी गैप्स हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की उनको पूरी की जा सके, उस पर्पस से पीएम डिवाइन को लॉन्च किया गया। और इस योजना के अंतर्गत प्रोजेक्ट्स जो हैं वो राज्य सरकार के साथ में कंसल्टेशन करके लॉन्च किए जाते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे उनकी बहुत डिटेल्ड मॉनिटरिंग करते हैं। ये कोशिश करते हैं कि ये प्रोजेक्ट्स जो हैं विभिन्न सेक्टर्स में रहें, जैसे हेल्थ केयर, टूरिज्म, एजुकेशन, आईटी पार्क्स, रूरल लाइवलीहुड, वैल्यू चेन प्रोजेक्ट्स। और इसमें ये कोशिश की जाती है कि सारे प्रोजेक्ट्स का साइट सिलेक्शन, एनवायरमेंटल सेफगार्ड्स और टाइमली मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जा सके, ताकि ये प्रोजेक्ट्स अपने डिजाइंड ऑब्जेक्टिव्स को हासिल कर सकें।
1: आपने हाल ही में अभी जून की शुरुआत में ही पूर्वोत्तर भारत ने पीएम डिवाइन योजना के तहत सिक्किम का एक दौरा किया था और इसमें एक स्काईवॉक प्रोजेक्ट का निरीक्षण भी किया था। थोड़ा हमें बताएं हमारे श्रोताओं को कि कैसे ये परियोजना धरातल पर, जमीन पर उतरकर काम कर रही है और कैसे एक नए तरह से इस योजना से विकास को देखा जा रहा है और कैसे इससे और भी चीजों को, जैसे पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है।
0: कई राज्यों में, इनफैक्ट ऑल दी 8 अष्टलक्ष्मी राज्यों का टूरिज्म पोटेंशियल बहुत व्यापक है और उस पोटेंशियल को यूटिलाइज करने के लिए भारत सरकार की टूरिज्म मिनिस्ट्री, कल्चर मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ डोनर भी अपने फंड्स को इस्तेमाल करती है और ऐसे कई प्रोजेक्ट्स नॉर्थ ईस्ट में इम्प्लीमेंट किए गए हैं। बालेडुंगा में जो ये स्काई वॉक की आप जो बात कर रहे हैं, अपने आप में एक बहुत ही यूनिक और अनूठा ये एक प्रोजेक्ट है। हाल ही में वहाँ मैं जब गया था तो मैं आश्चर्यचकित था कि जो ना केवल जो स्काई वॉक वहाँ पे तैयार हो रहा है, पर जो ऑलरेडी वहाँ पर एग्जिस्टिंग जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है रोपवे का, वो भी अपने आप में एक बहुत ही अनूठा है। ऑलमोस्ट 45 डिग्रीज का वहाँ पर एक क्लिफ के ऊपर वो स्काई वॉक जा रहा है। मुझे लगता है कि विश्व में इतनी ज़्यादा लीनियर लेंथ और इतना ज़्यादा ऑल्टीट्यूड क्रॉस करने वाली ये रोपवे शायद ही कहीं विश्व में हो। डेफिनेटली ये टॉप 1-2-3 में कहीं ना कहीं इसका उल्लेख होगा। और ये सब स्कीम्स इसलिए हैं ताकि वहाँ पर लोकल जॉब क्रिएशन हो सके, फुटफॉल बढ़ सके, टूरिज्म का बहुत एडवांटेज मिलता है लोकल एम्प्लॉयमेंट और लोकल जॉब क्रिएशन में। तो ऐसे कई प्रोजेक्ट्स हर जगह पर इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ डोनर के द्वारा सिग्नेचर टूरिज्म सर्किट्स भी इम्प्लीमेंट की जा रही है। 2 प्रोजेक्ट्स मेघालय में, सोरा सर्किट और माताबारी सर्किट त्रिपुरा में ऑलरेडी सैंक्शन की गई है, उसके प्रोजेक्ट्स अंडर इम्प्लीमेंटेशन है। और उन सब प्रोजेक्ट्स से ये कोशिश की जा रही है जो हमारे माननीय मंत्री जी मिनिस्ट्री ऑफ डोनर में कहते हैं कि एक्सपीरियंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर अकेले नहीं बन रहा है, जब वो एक पर्यटक अपने फ्लाइट से या ट्रेन से उतरता है तो उसका जो पहला कदम पड़ता है, चाहे एक लोकल टैक्सी हो या लोकल टैक्सी ड्राइवर के साथ में उसका इंटरेक्शन हो, या बाद में होटल में उसकी, चाहे वो 5-स्टार हो या 3-स्टार हो, चाहे वो एक छोटी सी लॉज हो या होम स्टे हो, वहाँ जो उसका इंटरेक्शन होता है, उस इंटरेक्शन में एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है फैक्टर, साथ ही साथ गाइड्स। और इसीलिए ऐसे कई प्रोजेक्ट्स को वहाँ पर इम्प्लीमेंट किया जा रहा है ताकि हमारे सारे अष्टलक्ष्मी राज्यों में कम्युनिटी लेड लाइवलीहुड को हम प्रमोशन दे सकें, खासतौर पे सस्टेनेबल टूरिज्म को प्रमोट कर सकें। और हाल ही में इस बजट में बुद्धिस्ट सर्किट के लिए भी एक घोषणा हुई है, उसके तहत भी आने वाले समय में एक वृहद कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है जिसका इम्प्लीमेंट अष्टलक्ष्मी राज्यों में होगा।
1: आपने जैसे कि बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हो रहे विकास के बारे में बताया, लेकिन पूर्वोत्तर भारत एक और बीड़ा उठा रहा है, वो है पर्यावरण और सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे हो, इस दिशा में वो काम कर रहा है। ग्रीन हब के तौर पर बहुत सारे स्टेट्स उभर रहे हैं, सिक्किम के उदाहरण को हमने देखा। कैसे पूर्वोत्तर भारत के राज्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट की एक मिसाल छोड़ रहे हैं और ग्रीन हब के तौर पर

0: ऑर्गेनिक फार्मिंग के तौर पर कैसे सामने आ रहे हैं?
1: हमारे अष्टलक्ष्मी राज्यों का बहुत योगदान है, ना केवल भारत के लिए, मैं तो कहूंगा पूरे विश्व के लिए, कि जो यहाँ पर ट्रेडिशनल सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस हैं, जो यहाँ की बायोडायवर्सिटी है, जो यहाँ की ऑर्गेनिक फार्मिंग की टेक्निक्स हैं, यहाँ पर जो कम्युनिटी बेस्ड फॉरेस्ट मैनेजमेंट है, यहाँ पर जो ओवरऑल एक इको टूरिज्म का जो कॉन्सेप्ट है, ये सब मॉडल्स हमारे सारे ग्रीन मॉडल्स हैं। और इसीलिए कोशिश की जा रही है कि जब जो यूएसपी डेवलपमेंट का हमारा प्रोजेक्ट है, उसमें जो यहाँ की प्रीमियम वेराइटीज़ हैं, चाहे वो लेकाडोंग टर्मेरिक हो मेघालय में, या क्वीन पाइनएप्पल हो त्रिपुरा का, या मिजोरम की जिंजर हो, या ऑर्गेनिक स्टेट सिक्किम हो, ये सारी कार्यक्रम जो है, इनका जो मूलभूत आधार है वो सस्टेनेबल एंड डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन है। तो ये सारे कार्यक्रम ये डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं कि ग्रीन ग्रोथ हमारे अष्टलक्ष्मी राज्यों के लिए नहीं, विश्व के लिए ही बहुत बड़ी महत्वपूर्ण है, ताकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक स्टूवर्डशिप को कंबाइन किया जा सके।
0: आपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात की और अष्टलक्ष्मी शब्द से हमारे श्रोताओं को बताया, तो हम ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि सरकार का फोकस है कि पूर्वोत्तर भारत पर्यटन और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ इंडस्ट्री और इन्वेस्टमेंट का भी एक बड़ा हब बने। इस दिशा में बहुत सारे कार्यक्रम हो रहे हैं और पूर्वोत्तर भारत में इस दिशा में काम हो रहा है, तो कैसे आप बताना चाहेंगे कि इन्वेस्टमेंट और इंडस्ट्रीज कितना अहम रोल अदा कर रही है पूर्वोत्तर भारत के डेवलपमेंट में, और सरकार इसे कैसे देख रही है?
1: जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा नॉर्थ ईस्ट में तैयार हो रहा है, उसी के अनुपात में अब बहुत ज़रूरी है कि प्राइवेट सेक्टर और बड़ी कंपनीज और छोटी एमएसएमईज भी जाएं और अपना इन्वेस्टमेंट्स करें। बहुत पोटेंशियल है, ना केवल एग्रीकल्चरल वैल्यू एडिशन में, बट टूरिज्म में, साथ ही साथ चाहे सीमेंट इंडस्ट्री हो, चाहे हाइड्रो पावर हो, हर सेगमेंट में बहुत पोटेंशियल है। तो उसके लिए एक नॉर्थ ईस्ट का इन्वेस्टर समिट लास्ट ईयर हुआ था, लगभग 4.5 लाख करोड़ के कमिटमेंट्स, एमओयूज और लेटर ऑफ इंटेंट उसमें हासिल हुए थे। उन सभी के इम्प्लीमेंटेशन को भी बड़ी बारीकी से राज्यों के साथ में मॉनिटर किया जा रहा है, ताकि ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स आएं और इकोनॉमिक और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ सकें। कुछ स्टेट्स अपने स्तर पर भी सिंगल विंडो पोर्टल्स इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए, जो भी परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए अपना कार्य कर रहे हैं, उससे भी आने वाले समय में अष्टलक्ष्मी राज्यों को बहुत फायदा होगा।
0: एक बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है पूर्वोत्तर भारत के विकास में, वो है जो बीते सालों में शांति स्थापित हुई है, प्रॉस्परस एक हमने पूर्वोत्तर भारत को होते हुए देखा है। इसमें सबसे बड़ी भूमिका रही है कि पूर्वोत्तर भारत में जो पहले अशांति और हिंसा थी, वो अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। कैसे गृह मंत्रालय के साथ मिलकर आपके मंत्रालय ने इस पर काम किया है, और कैसे जो विवाद थे, जो हिंसा थी, अशांति थी, उसको सुलझाने में बीते सालों में मदद मिली है, और कैसे इससे और विकास को तेजी मिल रही है?
1: गृह मंत्रालय ने कोऑर्डिनेट किया है समस्त राज्यों के साथ में, सेंट्रल एजेंसीज के साथ में, और उसी का परिणाम है कि आज शांति है। और उस शांति का जो बेसिस है वो एक सस्टेन्ड पॉलिटिकल एंगेजमेंट है, डायलॉग्स हैं, और खास तौर पे एग्रीमेंट्स हैं। उन एग्रीमेंट्स के टाइमली इम्प्लीमेंटेशन के लिए डोनर मिनिस्ट्री का बहुत मेजर रोल है। उन डेवलपमेंट पैकेजेस को इम्प्लीमेंट करना जो एग्रीमेंट का पार्ट है, खासतौर पर लाइवलीहुड से रिलेटेड, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, और ये इंश्योर किया जाए कि सोशो इकोनॉमिक बेनिफिट्स उन कम्युनिटीज तक पहुंचे जिन्होंने इस एग्रीमेंट में अपने योगदान दिए हैं। और ये सारे इनिशिएटिव्स हमें हेल्प करेंगे आने वाले समय में वहां पर शांति को बरकरार रखने के लिए, और लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेरिटी नॉर्थ ईस्ट की इन एग्रीमेंट्स के का एक मेजर आउटकम के तौर पर निकलेगा।
0: पहले कभी जो लुक ईस्ट का नजरिया था पूर्वोत्तर भारत का, वो एक्ट ईस्ट में सरकार ने बदला है, तो कैसे स्ट्रेटेजिक तौर पर इसको आप देखते हैं, इस रणनीति को कैसे सरकार पूर्वोत्तर भारत को इस नजरिए से देख रही है?
1: तो इस सिग्नल का जो अर्थ है वो ये है कि इट इज अ मूवमेंट फ्रॉम पैसिव डिप्लोमेटिक ओरिएंटेशन टू अ प्रोएक्टिव इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट विद द ईस्ट, एंड हियर नॉर्थ ईस्ट इज लाइंग एट द हार्ट ऑफ द एक्ट ईस्ट पॉलिसी। And it means that by strengthening the physical connectivity, promoting cross-border trade, people-to-people links, and integrating the region into a regional value chain with the Southeast Asia. And I think all the state-specific initiatives actually take us to that particular paradigm. And it's also essential that this approach recognizes Northeast as both a national asset as well as a gateway to external markets. And it also helps us balance the strategic and development priorities.
0: So, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय का आप आने वाले समय में किस तरह का कुछ विजन के बारे में बताना चाहेंगे, और कैसे जो आज हमारे जो 8 राज्य हैं वो आने वाले समय में विकसित भारत में अपना एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करने वाले हैं?
1: हाल ही में नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल का बैठक हुआ।

0: था शिलोंग में, माननीय होम मिनिस्टर, गृहमंत्री जी, हमारे डोनर मिनिस्टर, साथ ही साथ समस्त राज्यों के गवर्नर्स एंड चीफ मिनिस्टर्स ने उस बैठक में हमें शामिल हुए थे। और उसका एक सबसे मेजर जिस बार जो योगदान रहा है वो 8 राज्यों में को मिलाकर 8 हाई लेवल टास्क फोर्सेस बनाई गई थी जो चीफ मिनिस्टर्स के द्वारा हेडेड थी और उनमें दूसरे स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स को भी शामिल किया गया था। पहली बार ये प्रयत्न किया गया था कि हर राज्य अपने खुद के राज्य को ही ना देखे, वो पूरे रीजन को देखे और उस रीजन से रिलेटेड रिकमेंडेशंस इन हाई लेवल टास्क फोर्सेज में आई है। साथ ही साथ एक विजनिंग एक्सरसाइज हुई है जो 2043 का विकसित भारत का जो लक्ष्य है उसमें विकसित नॉर्थ ईस्ट का क्या योगदान रहेगा वो भी इस लक्ष्य का पार्ट है। अब ये सारी हाई लेवल टास्क फोर्सेज जो बनी है इनका इम्प्लीमेंटेशन आने वाले समय में समस्त राज्यों को मिलाकर, यूनियन मिनिस्ट्रीज को मिलाकर स्टीयरिंग ग्रुप्स के द्वारा होगा और जिससे हमारे अष्टलक्ष्मी राज्यों में आने वाले समय में ऑलरेडी विकास की जो गति है वो बहुत तेज है। हर स्टेट डबल डिजिट GDP ग्रोथ हासिल कर रहा है, हर स्टेट 5-5, 6-6 साल में अपने आप को डबल कर रहा है इकोनॉमिक साइज में। तो ये सब और आने वाले समय में आगे बढ़ सके और नॉर्थ ईस्ट का जो कंट्रीब्यूशन ओवरऑल नेशनल GDP के कंट्रीब्यूशन में और आगे जा सके, इस सब का इसमें प्रयत्न पूरा शामिल है। तो आने वाले समय में हमें पूरी उम्मीद है कि हमारा फोकस जो है इट विल रिमेन ऑन कॉन्वर्जेंस, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड ग्रीन डेवलपमेंट सो दैट द नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स आर इंटीग्रेटेड इन टू इंडियाज़ ग्रोथ स्टोरी एंड व्हेन दे डू दैट they also retain their unique identity.
1: Thank you so much, sir.
0: Bahut bahut dhanyawad.
2: बारह साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे पूर्वोत्तर भारत के तेज विकास और नई संभावनाओं पर पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के सचिव संजय जाजू के साथ आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति की विशेष बातचीत। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।
3: दिस इज आकाशवाणी। इन द स्पेशल सीरीज 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के, नाउ वी ब्रिंग यू एन इंटरव्यू विद आर मुकुंदन, प्रेसिडेंट कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII। Interviewer is Shishir Sinha, journalist.
4: Namaskar. Modi government is completing 12 years. During those 12 years, we have seen various ups and downs in the Indian economy. We have seen challenges like COVID. We have seen challenges like Russia-Ukraine war and now the current West Asia crisis. Despite all those things, Indian economy has grown more than 7% during those 12 years. And now the expectation is it will grow at much faster rate. So what kind of role India Inc. has to play in this entire growth journey? To talk about all those things, we have with us Mr. R. Mukundan, President, Confederation of Indian Industry. Mr. Mukundan, thank you very much for joining us from Morocco. And it's a pleasure to have you on the show.
5: Thank you very much.
4: Mr. Mukundan, my first question to you, how do you assess the Indian economy of last 12 years?
5: So I think a lot of positives happened. And if I were to say what are the way I would put sort of contextualize what has happened, you've already given the environment. There were challenges like COVID. External environment is very volatile. There's a challenge of AI coming in. What I think we have achieved is to have a more frictionless economy. There is less friction. And I'll explain what I mean by that. The whole digital payment, Jan Dhan, Jam Trinity, if you really look at it, it has reduced the friction in the economy. Also, the GST, for example, it's a landmark reform. It has ensured that, again, the friction in transaction of goods. If you recall, in the past, trucks would be waiting at state borders for hours. Today, actually, you can reach any part of India and has reduced logistic costs. I think the first F which they have achieved is to get to more frictionless economy. Second, I think what India has done is to use force multiplier, multiple force multiplier. And I'll give you examples. One is, for example, if you look at the way we have handled the PLI scheme, the defense exports, for example, 33 times from what it was at the beginning. So it's not a small feat to start from where we are and we are 33 times. People don't talk about it. And from a net importer, I think we are also now a good exporter of the defense equipment. Mobile phone, for example, has grown 6 times mobile assembly. Again, of course, aided by PLI scheme. But these schemes were important. They were thought of at various times. And various other elements of reforms were carried through, in my view. For example, the

0: आपको ये जानकर हैरत हो सकती है कि डांसिंग ने अपना करियर संगीत की दुनिया में आकाशवाणी जयपुर से शुरू किया था। बाद में जब उन्हें ये लगने लगा कि उन्हें ऊंचे आकाश की जरूरत है, अपने आयाम फैलाने की जरूरत है, तो वो मुंबई आ गए थे। थोड़े दिन तक वो खेमचंद प्रकाश के सहायक भी रहे और उन्हें इस समय में कुछ फिल्मों के ऑफर भी मिले, जैसे रेत की गंगा नाम की एक फिल्म उन्हें ऑफर की गई। ये अलग बात है कि ये फिल्म बन नहीं पाई। सन 1965 में डांसिंग को जेपी शर्मा की फिल्म मिली भूल न जाना।
1: गोरा गोरा मुख

0: गाया है।
1: यहाँ आपको बता दें कि असल में B.N. शर्मा जिन्होंने भूल न जाना का निर्माण किया था, वो फ्लैट में दान सिंह के साथ ही रहा करते थे। दिलचस्प बात यह है कि फिल्म भूल न जाना भारत और चीन युद्ध पर बनी थी। दान सिंह ने बड़े मन से इस फिल्म के गाने तैयार किए थे और बहुत ही कमाल का संगीत था फिल्म भूल न जाना का।

फिल्म भूल न जाना, ये फिल्म रिलीज नहीं हो पाई, इसलिए दान सिंह की उड़ान को वो आकाश नहीं मिल पाया जिसके दान सिंह हकदार थे। पर इस फिल्म के गाने की रिकॉर्डिंग से जुड़ी एक घटना आपको बताते हैं। सन 1964, मुंबई में ताड़देव का एक स्टूडियो, गीता दत्त दान सिंह का एक गाना गा रही हैं। ये वो समय है जब गीता दत्त की जिंदगी में, उनकी निजी जिंदगी में तूफान आया हुआ है, रिश्तों में दरार आ रही है और गीता दत्त ये गाना गा रही हैं।

लाइनें गाते गाते अचानक गीता दत्त की रुलाई फूट पड़ती है। रिकॉर्डिंग के बीच में वो सुबकने लगती हैं। एकदम स्टूडियो के माहौल तनाव से भर जाता है। दरअसल डांसिंग का ये गीत गीता दत्त के दिल पर बहुत भारी पड़ा है। जरा सोचिए, इतना गहरा था डांसिंग के संगीत का असर। भूल ना जाना के अलावा डांसिंग ने फिल्म माय लव में संगीत दिया। शर्मिला टैगोर और शशि कपूर के अभिनय वाली ये फिल्म असल में डांसिंग के गानों के लिए ही याद की जाती है। बहुत कम लोग जानते हैं कि इस फिल्म में डांसिंग के सहायक के रूप में लक्ष्मीकांत ने मैंडोलिन और प्यारे लाल ने वायलिन बजाई। पंडित शिव कुमार शर्मा ने संतूर बजाया इस फिल्म के गानों में और पंडित हरि प्रसाद चौरसिया ने बांसुरी बजाई। यही नहीं, मनोहरी सिंह का सेक्सोफोन भी फिल्म माय लव के गानों की शान है। जरा सोचिए, इतने बड़े नाम जुड़े थे इन गानों की रिकॉर्डिंग में। आगे चलकर शिव हरी की जोड़ी फिल्म संगीत के संगीतकारों की सरताज तो बनी ही। पंडित शिव कुमार शर्मा और पंडित हरि प्रसाद चौरसिया ने संतूर और बांसुरी की स्वर लहरियों को आकाश की ऊंचाइयों तक पहुंचाया, देश और दुनिया में नाम कमाया। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी तो हिट फिल्में देने वाली एक बेमिसाल संगीतकार जोड़ी बनी। और सेक्सोफोन के सरताज मनोहारी सिंह को भला कौन नहीं जानता। फिल्म माय लव के गानों की बात चल रही है, तो चलिए अब ये गाना सुनते हैं।

जैसा कि हमने कहा कि डांसिंग फिल्म संगीत की दुनिया में जब बहुत ज्यादा नाम नहीं कमा पाए तो वो रेडियो से जुड़ गए थे। युवावस्था में उन्होंने सुमित्रा नंदन पंत की कविता को संगीतबद्ध किया था और मशहूर कवि सुमित्रा नंदन पंत ने उन्हें गले लगा लिया था। डांसिंग बहुत ही गुणी संगीतकार थे, पर उन्होंने केवल 4 फिल्मों में संगीत दिया, माय लव, तूफान, बवंडर और भोभर। कुछ ऐसे संगीतकार होते हैं जिनको उनका हक नहीं मिल पाता। हम संगीत के प्रेमी बस इसी विकलता में रह जाते हैं कि आखिर ऐसी प्रतिभाओं को और मौके क्यों नहीं मिले, ताकि हमें मिल सकते थे कुछ और बेमिसाल गाने। फिल्म भूल न जाना का मुकेश का गाया ये गाना सुनिए और दान सिंह की प्रतिभा की वानगी देखिए।

अफसोस, 18 जून 2018 को 78 बरस की उम्र में दान सिंह ने इस फानी दुनिया को अलविदा कह दिया। रह गए तो बस उनकी कहानी और उनकी याद।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था बेमिसाल संगीतकार दान सिंह पर। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान, प्रस्तुति रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

छाया गीत के सुनने वालों को नेहा अगरकर देसाई का नमस्कार। जिंदगी की भीड़ में बहुत से चेहरे मिले, मगर सुकून कहीं नहीं मिला। फिर तुम मिले और लगा जैसे भटकते हुए दिल को अपना किनारा मिल गया हो। अब हर मुश्किल आसान सी लगती है, क्योंकि तुम्हारा साथ मेरे साथ है। तुम मिल गए हो, बस अब और किसी सहारे की जरूरत रही ही नहीं।

तुम चाहे जितनी दूर चले जाओ, चाहे दुनिया की हर राह आजमा लो, दिल को सुकून आखिर मेरे पास आकर ही मिलेगा। क्योंकि कुछ रिश्ते दूरी से नहीं टूटते, वो हर मोड़ पर एक दूसरे को पुकारते रहते हैं। तुम्हारे कदम कहीं भी ठहर जाएं, मगर लौट कर आना तुम्हें मेरे पास ही है।

वो खफा क्या हुए? जैसे मेरी दुनिया ही खामोश हो गई। न बातों में पहले जैसी रौनक रही, न मुस्कुराने का कोई बहाना मिला। हर वक्त बस यही डर दिल में रहा कि कहीं उनकी नाराजगी उन्हें मुझसे दूर ना कर दे। अब तो हालत ये है कि उनकी एक मुस्कान के लिए दिल हर पल दुआएं मांगा करता है।

0: अंतराल के बाद एक बार फिर आप सभी का छाया गीत कार्यक्रम में स्वागत है। वो बड़ी मनचली और चुलबुली सी है, हर बात में कोई ना कोई शरारत छुपाए रखती है। कभी यूं ही बिना बात मुस्कुरा देती है, तो कभी छोटी छोटी बातों को लेकर अजीब सी बातें करने लगती है। उसकी आदतें कई बार समझ से बाहर लगती हैं, मगर वही अनोखापन उसे सबसे खास बना देता है। सच कहूं, उसकी ये नटखट अदाएं दिल को बार बार उसी का बना देती है।
1: अरे यार मेरी तुम भी हो गजब, घूंघट तो जरा ओढ़ो, आह मानो का।

0: लो कहा अब तुम हो जवां, मेरी जान लड़कपन छोड़ो।
1: सावन की आहट क्या आई है, दिल फिर से पुराने ख्वाबों की बारिश में भीगने लगा है। हवाओं में जैसे तेरी यादों की खुशबू घुल गई हो और मन उसी एहसास में चुपके चुपके झूम रहा हो। तेरा ख्याल आते ही ये बेचैन दिल अब कहीं ठहरता ही नहीं, कभी इस राह पर निकल पड़ता है, कभी उस दिशा में खो जाता है। सच तो ये है कि मोहब्बत में पड़ा ये दिल अब एक दीवाने बादल की तरह घूम रहा है।

0: चुपके चुपके कोई ख्वाबों में आने लगा है, बिना आवाज दिए दिल के दरवाजे पर दस्तक होने लगी है। न जाने कौन है, मगर उसका एहसास हर पल साथ रहता है। कभी यूं ही मुस्कान बनकर होठों पर ठहर जाता है, तो कभी बेचैनी बनकर दिल को मचलाने लगता है। लगता है जैसे कोई धीरे धीरे मेरी दुनिया में उतर रहा हो, और दिल उसके आने की आहट से ही धड़कने लगता है।
1: कौन है जो सपना

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को नवाचार और प्रौद्योगिकी का वैश्विक केंद्र बताया है। फ्रांस के पेरिस में वीवाटेक 2026 सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पिछले एक दशक में तेजी से परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ रहा है जो प्रौद्योगिकी से संचालित है। उन्होंने कहा कि भारत ने विश्व की सबसे बड़ी डिजिटल पहचान प्रणाली और विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म विकसित किया है।
1: The message I shared then at VivaTech 2021, where convention fails, innovation can help. India has been going through a rapid transformation that is powered by technology. From creating the world's largest digital identity system to the world's largest digital payment platforms. We are using technology at a massive scale for financial inclusion, education, telemedicine, agriculture and more.
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रौद्योगिकी से तभी प्रगति हो सकती है जब उसका लाभ सभी तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि भारत का मानना है कि उथल पुथल भरे इस दौर में प्रौद्योगिकी का लाभ सभी को मिलना चाहिए। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर प्रधानमंत्री ने कहा कि ये समझौता व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी आदान प्रदान और पर्यटन को बढ़ावा देगा। इससे पहले श्री मोदी ने पेरिस में कई प्रमुख उद्योगपतियों से मुलाकात की। इस दौरान विनिर्माण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और समुद्री अवसंरचना पर चर्चा हुई। बैठक के बाद आकाशवाणी से बात करते हुए इन उद्यमियों ने भारत में बढ़ते अवसरों का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पेरिस में भारतीय समुदाय के लोगों को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत के प्रति भारतीय समुदाय का गहरा लगाव और भारत फ्रांस के मजबूत संबंधों में उनका योगदान प्रशंसनीय है। श्री मोदी ने कहा कि हर देश ऐसे सहयोगी तलाश रहा है जिस पर दीर्घकाल तक भरोसा किया जा सके। उन्होंने कहा कि ऐसे समय में भारत विश्व में एक विश्वसनीय साझेदार के तौर पर उभर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सफल फ्रांस यात्रा के मुख्य नतीजों की जानकारी दी है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने पेरिस में मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा तीन मुख्य स्तंभों, व्यापार, प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर केंद्रित रही। उन्होंने बताया कि भारत और फ्रांस ने मिलकर नीस में भारत इनोवेट्स पहल शुरू की है जो भारतीय डीप टेक स्टार्टअप्स के लिए वैश्विक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा की तैयारियों के आकलन के लिए आज उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने पर बल दिया। इस बीच दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोशल मीडिया मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम की उस याचिका पर आज अपना फैसला सुरक्षित रख लिया जिसमें नीट परीक्षा से पहले टेलीग्राम की सेवा फिलहाल रोकने के सरकार के फैसलों को चुनौती दी गई है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने ईरान और अमरीका के बीच नए समझौते को ऐतिहासिक दस्तावेज और सशक्त ईरान का संदेश बताया है। उन्होंने कहा कि शांति केवल आपसी सम्मान के माध्यम से ही प्राप्त की जा सकती है। यूक्रेन

ने रूस के एक तेल शोधन संयंत्र पर हमला किया है। एक सप्ताह के अंदर दूसरी बार ऐसा हमला हुआ है। रूस के रोस्तोव क्षेत्र में भी अन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। रूस ने 550 से अधिक यूक्रेनी ड्रोन नष्ट कर दिए। हमले के बाद मॉस्को के 4 हवाई अड्डों से उड़ानें रोक दी गईं। मीनाक्षी हुड्डा चीन में विश्व मुक्केबाजी कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। मीनाक्षी ने पोलैंड की नतालिया कुचेवस्का को 5-0 से हराया। कल क्वार्टर फाइनल में 4 भारतीय मुक्केबाज खेलेंगे। वहीं ज्योति और जुगनू सेमीफाइनल में पहुंचकर भारत के लिए पदक पक्का कर चुकी हैं। उधर मकाऊ ओपन बैडमिंटन में अनमोल खरब और अस्मिता चलीहा महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।